शरीर स्वस्थ खेण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सत संग जीओ, गुरमत विचारा, गुरबाणी विचार आप सेवा पंथी रतन भूषण महंत तीरथ सिंह जी पासों गुनियाना मंडी वाले उन्हां पासों आप सरवण कर रहे से। इस माहौल विच, इस सत्संग विच धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने जो ख्याल बख्शिश कीते ने वो मैं सेवा दे रूप विच आप जी दी झोली च पाण दी निमाणी कोशिश कर रहे। सानू साड़ी होंद नूं अज तक ते विचारकां ने चार हिस्सों दे च वंडिया। प्रथम ते परमात्मा, क्योंकि उस दे च असी हैगे आ, वो साड़े विच है तो वो है। फिर इसनू इस तरह वो व्याख्या दे रूप च लैंदे ने सूरज। सूरज दी किरण है, किरण दा प्रकाश है, फिर जिथे प्रकाश है वो है। मैं फिर दोहरावा, सूरज है एक, फिर किरण है दो, फिर किरण दा प्रकाश है तीन, फिर जिथे प्रकाश है जो कुछ प्रकाशित तो हो रहे वो है। परमात्मा है, जीव आत्मा है, मन है, और ये सब कुछ जिथे घटित तो हो रहे है, प्रगट हो रहे है, वो ये तन, वो ये शरीर, वो ये तन। हुण मैं फिर दोहरावा, सूरज है, किरण है, किरण दा प्रकाश है, ते प्रकाश जिथे पै रहा है, जिथे है, जिस तों जिहड़ी चीज प्रकाशित हो रही है वो है। परमात्मा है, आप सत्संगी हो, ते धन गुरु ग्रंथ साहिब ने इस तरह ही ख्याल मैनू दित्ते ने, क्योंकि सब कुछ गुरबाणी विच है और पातशाह ने छुपाया कुछ भी नहीं है। सिर्फ खोलण दी गल है, प्यो दा देखा खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन पया निदाना। अपने कोल अपनी गल ते कुछ भी नहीं, ये खजाना है। और गजब दी गल है, इहदे दरवाजे खुले ही ने। जितना कीमती खजाना होंदा छुपा के रखा जाता, बड़े बड़े लॉकर, बड़े बड़े ताले, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी, बड़ी बड़ी हिफाजत। कबीर कहंदे ने, रब ते एक ऐसा खजाना है जितना लुटना है इन्हें लुट लो, रब ते लुटा के ही राजी है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। धन नूं कोई लुटे तो कानून है, समाज है, तरह तरह दे खतरे ने, ते लुटन वाले नूं लुटेरा कहिंदे, लुटेरा कहिंदे। राम नाम दा जिहड़ा खजाना है, कोई खतरा नहीं, किसे प्रकार दा खतरा नहीं। कोई इस खजाने नूं लुट लै, उसे नूं संत कहिंदे।
ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਧਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਧਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਆਪ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਲੁੱਟ ਲਓ, ਲੁੱਟ ਲਓ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੋਟ, ਲੁੱਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੋਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਗੇ ਛੁੱਟ। ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਟਣਾ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਚੇ ਜ਼ੂਦ ਬਰਾਇਤ ਦੇਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸੂਰਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ। ਇਸੇ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਟਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਮਨ ਤੇ ਤਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ। ਸੂਰਜ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਮੈਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਰਨ ਮੈਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ, ਫਿਰ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਜ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪੁੱਛਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਚੁਣੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੋਂ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੋਆ ਰਾਮ,
ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थियारा। किरण सूरज दे चलीन हो जाए तो सूरज है, सूरज तो अलग दिखाई देवे तो किरण है। जीव आत्मा परमात्मा दे चलीन हो जाए तो परमात्मा है, परमात्मा। और जिन्ने चिर तक न्यारी दिखाई दे रही उन्ने चिर तक जीव आत्मा, जीव आत्मा है। प्रकाश है ए सूरज दी किरण है परमात्मा दी अंश। मैं फिर दोहरावा, कहो कबीर ए राम की अंश। प्रकृति एक दिन तन नो मन नो इदे जेर असर तन आउंदा पहले प्रकृति दे और प्रकृति तन नू मिटा देंदी। रोज रोज असी मिट रहे, रोज रोज असी घट रहे। जे रोज रोज असी जी रहे हैं ते रोज रोज असी मर रहे हैं। तुसी आखोगे ए की कहंदे रोज रोज जी रहे हैं, जी रहे हैं, पर रोज रोज मर रहे हैं क्योंकि घट रहे हैं। घटना मिटना ही है और की है। एक मनुख ने चलो 100 साल जीवना है, अज दा एक दिन लंघ गया, घट गया, एक दिन घट गया। छिन छिन औद बेहात है, फूटे घट ज्यो पानी। शरीर दोवां दिशावां दे जा रहा है, रोज रोज वध रहा है, रोज रोज घट रहा है। वधना घटना कट्ठा ही चल रहा है, कट्ठा ही चल रहा है। दिस रहा है तन वड्डा हो रहा है, हकीकत विच उम्र घट रही है, घट रही है, घट रहा है। चूंकि घट रहा है तो एक दिन प्रकृति इसनू मिटा देती। ये जड़ा मन है ना, ये नहीं मिटता। जीव आत्मा ते परमात्मा दी अंश मिटन दा मतलब ही नहीं। मन दे अंदर जड़े विचार चलते हैं तो विचारां नूं कौन देखता है? जीव आत्मा। बंदा कह देंदा ना मेरे विचार ने, ते जे विचार नूं मन मन लईए ते मन नूं कौन देख रहा जो कह रहा है मेरे विचार। रात नू जब तन सो जांदा ते मन भी गूढ़ी निंद्रा दे सो जांदा, जिन्हों सुखोपति कहंदे न, सुषुप्ति कहंदे न, ते सवेरे उठ के बंदा कहंदा बड़ी गूढ़ी नींद आई, बड़ी गहरी नींद आई। तो तन ते सुन हो गया सी, मन भी सुन हो गया सी। ये बोध किसनों हो रहा है? बड़ी गूढ़ी नींद आई। ये जीव आत्मा नू बोध। मन ते विश्राम दे चला, मन ते सो गए। तार्किक एक इस तरह की तर्क खड़ी करते ने, जीव आत्मा परमात्मा की अंश है, ये सूरज की किरण है, फिर अंदर इतना अंधेरा क्यों है? क्यों अंधेरा? ये परमात्मा की अंश है, परमात्मा परम आनंद है, ए उसकी अंश है, पर अंदर इतना दुख क्यों है? मैं ए मूल सिद्धांतिक नुक्ते थोड़े सामने रख रहे हैं। सारी जिंदगी में कर्म कांड च ना लग जाए। परमात्मा महारस है, आत्मा उसकी अंश है, महारस है, पर जीवन दे इतनी बेरसी कितों आ गई? ये बेरसी क्यों? परमात्मा निर्वैर है, जीव आत्मा उसकी अंश है, फिर अंदर इतना वैर विरोध कितों आ गया?
क्यों आ गया? परमात्मा भय तो रहत है, जीव आत्मा उसकी अंश है, पर अंदर इतना भय, इतना डर, ये कितों आ गया, ये क्यों आ गया? तो पता है, वाम मार्गियां दे एक तपे तबके ने कह देता, अगर आत्मा है तो ये भी लिपाए मानो दी, वरना किरण दे होंदे हों इतना अंधेरा क्यों? किरण दे होंदे हों इतना वैर विरोध क्यों है? अगर किरण सूरज दी है, जीव आत्मा परमात्मा दी है, जेड़ा परमात्मा महारस है, तो इतनी बेरसी क्यों? आप सारे सूझवान बैठे, तर्क बिल्कुल सही है, एवें कोरे जज्बे दे तहत असी नहीं कह सकते, तुसी मुंह रखो मन मुख। गुरमुखताई ते ए आउंदी है, दलील दा जवाब दलील नाल दे, विचार दा जवाब विचार नाल दे, तर्क दा जवाब तर्क नाल दे। उन्हां दी तर्क है जीव आत्मा नूं निर्लेप कहना बनदा नहीं, फिर पता है वो की कहंदे ने कि जीव आत्मा भी लिपाए मान हो सकती है, तो फिर परमात्मा नूं भी बेदाग कहना बनदा नहीं, वो इंज कहंदे ने, वाम मार वो ये कहंदे। जिन्हों का एक तबका कोरा नास्तिक हो गया सी, साड़ा कोई भरोसा नहीं। भरोसा है जिवें तन मैला होंदा है, मन मैला होंदा है, जीव आत्मा मैली होंदी है, परमात्मा भी बेदाग नहीं, वह भी बेदाग नहीं। दलील उन्हां दी बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है। मैं एक दफा फिर दोहराऊं, सूरज है, उसकी किरण है, उस तो जो प्रकाश हो रहा है वो है, प्रकाश जिथे पै रहा है वो है, जिस तो प्रकाशित हो रही है वस्तुआं वो ने, उसी प्रकाश नाल वस्तुआं हो रही ने, सारी हलचल है। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के कहते वैस सारा पलटा, तिक सूरज करके उदी किरणा करके उदे प्रकाश करके उदे तेज करके। सूरज परमात्मा, किरण जीव आत्मा, प्रकाश मन, जिथे प्रकाश हो रहा है, जिथे पै रहा है, जिस तो वस्तु प्रकाशित हो रही है, वो ए तन, वो ए तन। तार्किक कहंदे ने तन दी मैल नूं देख के गल ते स्पष्ट हो गई, मन भी मैल है, और मन मैल है ऐसा भगत लोग मनदे ने, संत भी मनदे। ते जे मन मैल है तो फिर किरण भी मैली है, ते जे किरण मैली है तो सूरज भी बेदाग नहीं है, ग्रहण उसनों भी लगे, क्योंकि जिन्हा जिन्हा ने सूरज नो उदाहरण बनाया, उन्हां तार्किक लोगां ने कह दिता, फिर ए भी कबूल कर लो सूरज नो ग्रहण लगता है, सूरज नूं ग्रहण लगता है। विषय में थोड़े सामने छेड़ना नहीं सी, पता नहीं थे बैठे हैं, धन गुरु ग्रंथ साहब ने ख्याल दे दिता है। ये सूरज भी बेदाग नहीं है, इनू ग्रहण लगता है, लगता है, निर्लेप है परमात्मा, निर्लेप है जीवात्मा,
कपोल कल्पना है। तो फिर माह वाम मार गया उना मंदरा नू उन्होंने जन्म दिता जिथे शराब आम चलती सी, मास आम चलता सी, देवदासियां दी भरमार हो गई, दुराचार आम चलता सी। कहिंदा है जो कुछ मन मंदा है मंगदा है करो, मंदिर देच करो ताकि आखो ऐलानिया प्रगट कर सको जीवन दे मंदिर देच यही कुछ है, यही कुछ है। और कुछ भी नहीं। जो जीवन दे मंदिर देच है असी बार मंदरां देच पर प्रगट करके दस रहे हैं, यही कुछ है, यही कुछ है। खजुराहे दे मंदिर, कोनारक दे मंदिर, काम दे मंदिर, थोड़े विचों कोई गए वंश है। खजुराहा एक छोटा जिहा कस्बा है मध्य भारत का, झांसी तो कोई 100 मील की दूरी ते होवे। खजुराहे दे नेड़े महोबा है, मैनू साल विच एक दफा या कई दफा, 2 साल च एक दफा उत्थे जाना होंदा। उत्थे 50-60 घर सिंघां दे रहिंदे ने, गुरमत समागम करदे ने, 2-4 जथिआं नू नाल लेके दस जांदे। तो मैं इत्थों खजुराहा एयरपोर्ट ते उतर जांदा, मैनू लै जांदे ने उत्थों 20 मील। 3000 आबादी का एक कस्बा है खजुराहा, बड़ी सुंदर एयरपोर्ट है, जबकि वड्डे वड्डे शहरां च भी नहीं है। 5 स्टार होटल ने उत्थे, छोटे छोटे दर्जना ने बेशुमार। 3-4 प्लेन रोज बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली तो भरे हुए अप डाउन कर दें, डेली डेली सर्विस। 100-125 बसा टूरिस्ट बसा रोज पहुंच दिया, सैकड़े टैक्सिया रोज पहुंच दिया ने। की देखण खजुराहे दे मंदिर, खजुराहे दे मंदिर। कोई 300-400 एकड़ देच 18 मंदिर बने हुए ने, काम दे मंदिर, काम दे चित्र, काम दिया मूर्तियां। राम दे मंदिर नहीं ने, काम दे मंदिर, पर उनानु मंदिर आख्या जाता है। वाम मार्गियां कोल तर्क सी, अगर जीवन मंदिर है, हरि मंदिर है, इस मंदिर दे काम तो बिना और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसी बार काम दे मंदिर बनाए बनाए। देवदासियां दी प्रथा इत्थों चली, भैरव काल दा मंदिर उज्जैन दा सारा दिन प्रसाद पता है किस दा मिलता है, शराब दा। सारा दिन चढ़दी की उत्थे शराब, जिवें दरबार साहब सीजगंज सारा दिन कड़ा प्रसाद चढ़दा है, उत्थे शराब चढ़दी, शराब की बोतल लेके जाना पैंदा है। मैं कोई 1000 साल पुरानी गल नहीं कर रहा, अज दी कर रहा, हुण भी यही कुछ। काली दा मंदिर कलकत्ते दा, कुमुखिया देवी दा मंदिर गुवाहाटी दा, मास दा प्रसाद मिलता है, मास। सवेरे संडे बकरे कटे जांदे ने, खून दा तिलक लगदा है, दरवाजे नू मंदिर दा दरवाजा खुलदा है, मूर्तियां नू तिलक लगदा है, आए हुए श्रद्धालुओं नू भी खून दा ही तिलक लांदे। ए अजे कुछ थोड़े जिहा अस्थान मौजूद ने। किसे वक्त महात्मा गांधी ने कह दिता सी, खजुराहे दे मंदिर इन्हां नूं मिट्टी नाल दब दे, इह साडी अश्लीलता नूं प्रगट कर देण, साडी असभ्यता नूं प्रगट कर देण,
ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਦੱਬ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦਾ 80% ਫੋਰਨਰ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੀ ਕੋਨਾਰਕ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਦਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚ ਵੀ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਬਦ ਸਾਡੀ ਅਸਭਿਅਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਾਰਕਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਬਾਨ ਰਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਰਸ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਰਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਨਾਸਕਾ ਰਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਖਲੜੀ ਰਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਰਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਬਣਾਏ ਨੇ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀਵਨ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਰਸ, ਰਸਨਾ ਦਾ ਰਸ, ਹਲੜੀ ਦਾ ਰਸ, ਕੋਈ ਰਸ ਮੁੱਕਦੇ ਮਹਾਰਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਸਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਚੰਗਿਆਂ ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਤੀਕਸ਼ਣ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਤਨਾ ਜੋ ਰਸ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਹੈ, ਖਲੜੀ ਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ? ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਮ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਕਾਮ ਰਸ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਭਾਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਰਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ, ਕਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਨਾਰਕ, ਖਜੂਰਾਹਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਨਾਰਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਕਟਕ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਨਾਰਕ ਨੇੜੇ ਹੈ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਮੰਦਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਮਾਸ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸ਼ਤਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਨਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸ਼ੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਐਨ ਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮਰਹੂਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਮਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ
प्रगट कर रहे हैं वो प्रकाश फिर वो परमात्मा है, जीव आत्मा है, मन है, एतन है, एतन। वाम मार्गी कहते ने अगर तन मैला है तो फिर मन भी मैला है, मन मैला है तो फिर जीव आत्मा भी मैली है, जीव आत्मा मैली है तो परमात्मा भी बेदाग नहीं, ग्रहण सूरज नु भी लगता है, सूरज नु भी ग्रहण लगता है, परमात्मा नु भी ग्रहण लगता है। और परमात्मा ने अगर इसनु मंदिर बनाया तो फिर एक काम ना, इदी उन्होंने लंबी चौड़ी अपने ढंग नाल व्याख्या कीती है। आप सुन के हैरान होवोगे, एक ग्रंथ है जो ऋषि वात्स्यायन ने लिखे है, ऋषि ने लिखे है, किसे आम साहित्यकार ने, नावल लिखण वाले ने नहीं, एक ऋषि ने, एक संत ने लिखे है, कामसूत्र, ऋषि वात्स्यायन, ऋषि संत, उन्हें अपने ढंग दी जो है व्याख्या की थी। चलो उसनु भी मैं ना लवा, क्यों? कुछ कच्चे दिल दे बंदे भी होंदे ने। पंजाब दे एक पिंड दी गल, ते बांदरों दी संगरांद नू मैं किधरे उत्थे ही सी, फिरोजपुर दे नेड़े, ते मैनू कहन लग गए ने जी अज ते फिर संगरांद दा दिहाड़ा है, तुसी फिर बादरों दे महीने की कथा करो। चंगा, ते बादरों दे बारह माह दे च उस महीने दे च एक पंक्ति है, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होवा से, भरम दी फिर व्याख्या कर दिन बादों है, भरम भुलाणिया दूजे लगा है, लख सिंगार बनाया कारज नाई के, मेरी बिरती फिर इस पंक्ति ते रुक गई, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ सेत, प्राण निकलन लगते ने, मुठियां बंद होंदियां ने, तन नू कंबड़ी छिड़दी है, दंदियां वजदियां ने, नाभी खुल जाती है, आखिरी प्राण निकल जाता है। ये तन कुमला जाता है, स्याओ हो आसे। पंद्रह मिनट में बाकी अर्थ ते लाए, पौना घंटा में एदी व्याख्या ते लाया। बाहर आए ते मैनू चार सज्जन कहन लगे, पवित्र संगरान दा दयाड़ा सी, तुसी सारी संगरान दी खराब करके रख दी थी, मौत दी गल सुना के। मैनू अजे तक याद है, कहिंदे तुसी ते साडी संगरान खराब कर दित्ती, बड़ा पवित्र दयाड़ा सी, बड़ा पवित्र दयाड़ा सी, मौत दी गल और नहीं लब्बी थानू कोई। मैं कह की आखा हूं मैं, धन गुरु नानक देव जी कहते ने रब नू बाद देच कबूल करें पहला मरण कबूल, परमात्मा नू बाद देच कबूल करें पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास। इतनी जोर नाल ऐसा सतगुरु ने क्यों कह देता है? कहिंदे ने जिस काम विच सावधानी ना होवे, एकाग्रता ना होवे, उस काम नूं सिरे चाड़ना बड़ा औख। सावधानी नहीं, एकाग्रता नहीं, कम सिरे की चढ़ना है, कम बिगड़े। महाराज दी वाणी कहिंदी है, प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। बड़ी सावधानी, बड़ी एकाग्रता। ते मैं इसनु अपने ढंग नाल देखे,
ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਠਹਿਰਾਓ ਰੱਖਣਾ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ? ਕੁਝ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁੱਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਡੇਂਜਰਸ, ਸਾਵਧਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੋ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ, ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਕੇਅਰਫੁੱਲ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਪੂਰਨ ਸਾਵਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਵਧਾਨ, ਬੜਾ ਇਕਾਗਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿਰਜ ਗਿਆ, ਅੱਡੀ ਬਜਲੀ ਟੁੱਟੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਚਲਾਉਣਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਅਰਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਠੱਠਾ ਮਸ਼ਕਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਕਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਪੂਰਾ ਕੇਅਰਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਵਧਾਨ, ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਗਈ, ਖਤਰਾ ਖਤਰਾ। ਪਰ ਜਦ ਚਲਾਉਣਾ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲਾਉਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੇਅਰਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ, ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਤਰੇ ਦੇ ਹਟਦਿਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ, ਖਤਰੇ ਦੇ ਹਟਦਿਆਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੇਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੇਤ। ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਤਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਲਟਾ ਲੋਕ ਉਪਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਈ ਬੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕੀ ਸਤਸੰਗੀ ਆਖਣਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਖਣਗੇ। ਖਤਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮਨੁੱਖ ਕੇਅਰਫੁੱਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਾ ਜਪ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਉਂਗਦੇ ਹੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ। ਹੈਰਾਨਗੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੌ ਬੰਦਾ।

ਕੰਨਾਂ ਚ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਵਾ ਦੇ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੀ, ਦਰਗੋਸ਼ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਪਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। ਕੇਵਲ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ? ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੱਕਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੱਕਾ ਹੱਕਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਬੜਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਬੇਐਬ ਪਰਵਰਦੇਗਾਰ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਔਗੁਣ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਚ ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇ? ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਫਰਿਆਦ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਭਨਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸ, ਉਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਮ ਸਰ ਮੂਹੇ ਅਜਰਾ ਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤੇ ਕਸ ਹੇ ਚਲਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰਾ ਈਲ ਨੇ ਪਕੜੇ। ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚ ਸਮਾ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੌਤ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹੇ ਬੇਅੰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾ। ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਨਸੀਬ ਨਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂ, ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਜਪ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਪ ਮੰਡਲ ਆ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਡੰਗ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੈਨੇ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਜਪਦੇ ਤਿਆਂ ਮਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਚ ਮਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਾਸ। ਮੌਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਕੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਕ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਕੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਸੁਕੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਫੈਲਾਵ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇਗੀ, ਜਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਖਾਵਾਂ ਖਾ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਪ ਦੇ ਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਮੌਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚਲੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚ।
परमात्मा मिलता है तो परमात्मा का ज्ञान मिलता है, उस तो पहले नहीं मिलता, नहीं मिलता। होवेगा ज्ञानी होवेगा, बड़ा ज्ञान होवेगा, सब अक्षरी ज्ञान, इहदे नाल जिंदगी चलती है, समा बतीत हो सकता है, जिंदगी सफल नहीं हो, नहीं। बड़े बड़े पंडित मौजूद, बड़े बड़े आलम फाजल मौजूद, मौलवी मौजूद, सिख जगत विच बड़े बड़े व्याकरण दे पंडित मौजूद, गुरबाणी दे अर्थ अर्थकार मौजूद, कुछ भी नहीं दे। मैं किसी ते अटैक नहीं कर रहा। इकबाल कहिंदा है, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन ना सका। जमीन ते ते तू मस्जिद बना ली, एक रात देच बना ली, पर 40 साल तो नमाज पढ़ रहे, जिंदगी नू तो तू खुदा दा रूप दे नहीं सके। जीवन ते तेरा खुदा दा घर बनया नहीं, जमीन दे उते तू खुदा दा घर बना लिया, जिंदगी तेरी खुदा दा घर बनी नहीं। जमीन दे उते मंदिर ते तू 2 दिन च बना लिया, जिंदगी ते हरी मंदिर बन ना सके। जिन्हां दी बन जांदी उन्होंने कहा भी है, नाम देव कह रहे ने, देही महजिद मन मौलाना, सहज नमाज गुजारे, मेरी देही मस्जिद बन गई, मेरा मन मौलवी बन गया। ऐ मौलवी तू 5 टाइम मस्जिद दे जांदा होवेगा, मैं हर वक्त मस्जिद दे रहना। तू 5 वक्त नमाज पढ़दा होवेगा, मैं 24 घंटे हर वक्त नमाज पढ़दा। तू जमीन दे उत्ते इट्टां दी मस्जिद खड़ी कीती है, मैं जिंदगी नू ही मस्जिद बना लिया, खुदा दा घर बना लिया। देही महजिद, इस तरह का क्रांतिकारी एक बोल भगत पीपा का ही है, भावे इको ही है, पर बड़ा क्रांतिकारी है। कायो देवा कायो देवन कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो बूजो पाती, काया ही मेरी मंदिर बन गई है, हरी मंदिर बन गई है। हरी निर्वैर है तो मैं भी निर्वैर हो गया, हरी निर्भय है तो मैं भी निर्भय, हरी प्रेम दा सागर है मैं भी प्रेम दा सागर। जमीन ते ते हरी मंदिर बन गया, मस्जिद बन गई, जिंदगी दे च दुर्गंध वैर विरोध दी है, अहंकार दी है, वासना दी है। गुरुद्वारे ते तू जा रहे हैं ते बना भी लिया, पर तू गुरु दा रूप नहीं बन सकया। तेनू वेख के गुरु मान नाल आग सके, खालसा मेरो रूप है खास, ये ते मेरे अपना ही रूप, इहदे दर्शन मेरे ही दर्शन। गुरुद्वारे क्यों जानदे आ? ताकि गुरु दे दर्शन हो सकन, पर जिन्हें अपने आप नू गुरु वर्गा बना लिया, ओदे दर्शन प्रभु दे दर्शन ने। संत राम में भेद किछ नाही, एक जन कई मैं लाख करो री, हर का भगत सो हर ही जे, हरी दा भगत ते हरी जैसा, परमात्मा जैसा है। और ताई ते साहब कहिंदे ने सिख मेरा ही रूप है, असी ताई अरदास दे च शब्द ऐड कीते ने, सही संत गुरुमुख प्यारे मेल, जिन्हा मिलिया तेरा नाम चेते। हुण मैं अपने मूल विषय ते आवा, मैं देखदा पिया मैं पूरा नहीं कर सकिया, कोशिश करांगा कल। सूरज है, उदी किरण है, प्रकाश है, प्रकाश जिथे पै रहा है, ओ जिस तो चीज प्रकाशित हो रही है और जो बनी भी उसे ही प्रकाश तो है, ओ है। देखो सूरज ना होवे तो फिर कुछ भी नहीं होवेगा। सूरज ठंडा पै जाए असी पहले ठंडे पै, कहिंदे ना हाथ पैर ठंडे हो गए, गल खत्म। पानी ते पिया शरीर दे च, मुर्दे च भी होंदा, मिट्टी दी ढेरी ते पई है, अग ठंडी हो गई शरीर दे च, अग ठंडी हो गई, शरीर मुर्दा हो गया। ब्रह्मण दे सूरज ठंडा हो जाए, सब कुछ मुर्दा हो जाए। सूरज एको
रुत अने नानक करते के केते वेस। तो सब कुछ सूरज करके, सब कुछ परमात्मा करके, परमात्मा फिर जीव आत्मा ए किरण, फिर मन प्रकाश, फिर ए तन जिथे प्रकाश पैर तैर। तो मैं अर्ज कर रहा सी तारकिक ए कहने ने तन मैल है, मन मैल है, असी नहीं मन सकते कि जीव आत्मा मैली नहीं होगी, मैली है। जीव आत्मा मैली है तो फिर उस परमात्मा नु भी बेदाग कहण की लोड़ नहीं, ग्रहण सूरज नु भी लगता। बड़ी वड्डी तर्क है, ये भी मैं अर्ज करता, बहुत प्रबल दलील है। मैं संकोच नाल कह रहा क्योंकि एक सज्जन मैनू बड़ी किरणा नाल कह रहा भी थानू वाम मार्गियां दे ग्रंथ पढ़न की की लोड़ सी, थानू ऋषि वातसायन नू पढ़न की की लोड़ सी। मैं क्या पुरखा, परमात्मा ने बगीचे च बड़े फुल बनाए, बड़े फुल बनाए, हर एक दी अपनी अपनी महक, हर एक दी अपनी अपनी खुशबू है। महान होवेगा कमल पर चमेली भी घट नहीं है, महान होवेगा गुलाब पर गेंदे दी भी अपनी गल, ओदी भी अपनी गल। मैं कह मैं संकोची दिमाग दा बंदा ही नहीं, कता ही नहीं। हवा सारी जगह ते जांदी है ते हुण सानू छू लिया ते हुण इहनू आखी हुण तू मुसलमान नू ना छूवे, ते जे मुसलमान नू छू के आ रही है फिर सानू ना छूवे, तो सब नू छूंदी है। सूरज दा चानना सारिया दे घरां च जांदा है, सारिया दे घरां च जांदा है। बारिश जद होंदी है तो बारिश ये थोड़ी सोचती है संत के घर दे बारिश करनी है, दूजियां दे घर दे च नहीं, सब जगह आउंदी है। टोयां ते आउंदी है, टिब्बियां ते आउंदी है, मरुथल ते आउंदी है, जंगलां दे च आउंदी है, शहरां च आउंदी है, पहाड़ां ते आउंदी है। परमात्मा सर्व सांझा है, सर्व सांझे नाल संकीर्ण दिमाग छोटा दिल संबंधित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तस भी बंदे नू मैं धार्मिक मनदा ही नहीं आता, तंग दिल नू मैं धार्मिक मनदा ही नहीं आता। मैं तो देखना सिख दी सिख नाल नफरत करना। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज कर वाम मार गई, कहने सी बेदाग नहीं मनते परमात्मा, तन मैल है ते मन मैल है, ये सारे तस्लीम कर देने। ते जे मन मैल है ते जीव आत्मा कितों निर्मल हो गए, भी मैली। जीव आत्मा मैली है तो फिर परमात्मा भी बेदाग नहीं, ग्रहण सूरज नु भी लगता, ग्रहण सूरज नु भी लगता। भाई गुरुदास जी ने इस नु जिवें हल कीता है, एक दलील मैं थोड़े सामने ए रखना। बाकी धन गुरु ग्रंथ साहब दियां बाकी दलीलां ये मैं थोड़े सामने कल रखने की निमाणी कोशिश करांगा, क्योंकि समा हो गया। बोल चुक दी शमा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु, हे संसार ताप हरणे
करुणामय सब दुख हरो, हे शरण जोग दयाल दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधुवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। किरण ते सूरज भावे अलग नहीं, फिर भी दो प्रतीत हो रहन ते नाम भी दो पैगन, एक सूरज एक किरण। दो ना होंदे हुए भी दो दिखाई दे रहे ने, चूंकि दो दिखाई दे रहे ने तो नाम भी दो पै गए, सूरज और किरण। सागर ते लहर दो ना होंदे हुए भी दो दिखाई दे रहे, सागर ते लहर चूंकि दो दिखाई दे रहे ने हैं ते नहीं, इस वास्ते नाम भी दो पै गए, सागर ते लहर। है ते सागर ही सागर, लेकिन सागर झलक रहे है लहरां विच। है ते सूरज ही सूरज, पर सूरज झलक रहे है किरणा दे, चूंकि दिखाई दो दे रहन हैन नहीं दो एन ने। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, ऐसा वेदांती कहते ने, एको ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी चूंकि दो दिखाई दे रहे हैं, पर जब दो दिखाई दे रहे ने ते नाम भी दो पै गए ने, फिर इसका विस्तार होया, फिर दोवां तो चार होया, एक सूरज, एक सूरज दी किरण, एक किरण दा प्रकाश, एक प्रकाश दिच जो प्रगट हो रहा है दिखाई दे रहा है। ओ अगर ये प्रकाश ना हो तो नहीं दिखाई देगा। मैं कई दफा अर्ज कर चुके हैं, अंधेरे तो वड्डा कोई पड़दा नहीं है, अंधेरे ही ते हिमालय पर्वत भी नहीं दिखाई देंदा, अंधेरे ही ते इतना वड्डा सागर भी नहीं दिखाई देंदा, जमीन तो कई गुणा वड्डा फिर भी नहीं दिखाई देंदा, अंधेरे ही ते सारा शहर भी नहीं दिखाई देंदा, उचिया उचिया बिल्डिंगा नहीं दिखाई देंदा, अंधेरे ते जंगल भी नहीं दिखाई देंदे, सड़कां भी नहीं दिखाई देंदियां, एक लख मनुख बैठा होवे एक भी नहीं दिखाई देंदा। इस वास्ते अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा भी नहीं है, बहुत वड्डा पर्दा, बहुत वड्डा पर्दा। अंधेरा सब कुछ नू ढक देंदा है, प्रकाश सब कुछ नू प्रगट कर देंदा है, प्रगट कर देंदा। तो मैं अर्ज करा, जो कुछ भी प्रगट है ये आत्मा दे प्रकाश करके ही प्रगट है, उंज नहीं। एक परमात्मा, एक आत्मा, फिर आत्मा दा ही प्रकाश मन, मन दे प्रकाश करके ही तन है ते सब कुछ है।
मैं इस प्रकरण नू कितना खोल सकांगे ते गुरु दी दित्ती होई समरथा ठीक है मैं छेड़ बैठा पर जितनी गुरु दी कला वरतानगे धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करनगे इस मुख नुकते नू मैं थोड़े सामने खोलन दी निमाणी कोशिश करांगा क्योंकि आम ये दो पंक्तियां दोहराइया जांदियां खास कस समागम दे सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रे संपूर्ण थी राम किरण दी संपूर्णता उदो ही है जदे सूरज हो जाए नहीं ते सीमत है लहर दी संपूर्णता उदो है जद सागर हो जाए नहीं ते सीमत सीमत होना दुखदाई है सीमत होना मनुख दी चेतना बर्दाश्त नहीं कर दे मनुख हर पख दे हर पासों विस्तार चाहता है इस वास्ते मनुख नू मौत कबूल नहीं क्योंकि मनुख जीवन नू सीमत कर दिए ते मनुख ते इतना जीवना चाहता है कितना जे जुग चारे आर जा और दसूने इस वासे मौत दा नुकता मौत दी गल मनुख नू चंगे नहीं चल असीम जीवन चाहिदा है मौत ते सीमा कर देंदी सीमित कर देंदी सीमित ही नहीं कर दी वो जो जिंदगी चल रही होंदी उन्हू खत्म कर देंदी प्राणा विच प्यास परमात्मा दी है ओ किस तरह मनुख नू ऐसा जीवन चाहिदा जो असीम होवे और जिस विच कोई मौत ना होवे ऐसी असीम जिंदगी दा ना ही परमात्मा ऐसे असीम जीवन नू ही प्रभु कहंदे मनुख नू ऐसा सुख चाहिदा है सदीवी सुख चाहिदा है जो कदी दुख दे च ना बदले उस परम सुख दा ना ही परमात्मा मनुख नू ऐसा असीम रस चाहिदा है ऐसा रस चाहिदा है जो कदी बेरस ना हो उस महारस दा ना ही परमात्मा मनुख नू ऐसी शक्ति चाहिदी है ऐसी प्रभुता चाहिदी है ऐसी ताकत चाहिदी है असीम जो कदी कमजोरी देच निर्बलता देच बदले ही ना तब्दील ना हो उस महाशक्ति दा ना ही परमात्मा मंगते परमात्मा दी है ठीक है असीम शक्ति चाहिदी है असीम जीवन चाहिदा है असीम सुख चाहिदा है असीम रस चाहिदा है असीम आनंद चाहिदा है मनुख नू परमात्मा चाहिदा है परमात्मा तो बिना होर कुछ भी नहीं चाहिदा मंग ठीक है प्राप्ति दा साधन गलत है बस इत्थों जिंदगी गलत हो जाती है इत्थों ही मनुख गलत हो जाता है मंग तो ठीक है ऐसा केड़ा है जिसनु सुख नहीं चाहिए ऐसा केड़ा है जो रस नहीं चाहता बेरसी ती किसे नु नहीं चंगी लगती ऐसा केड़ा है जो महाशक्ति नहीं चाहता कमजोरी ती किसे नु भी नहीं चंगी लगती ऐसा धन चाहिए जो रोज रोज वधदा ते जाए कदी घटे ना उसे ही परम धन दा ना परमात्मा परमात्मा मंग ठीक है मनुख दी हर मनुख दी ठीक है इस हिसाब दे नाल मेरा मन किसे नु नास्तिक नहीं कहंदा नहीं है नास्तिक कह देवे मैं नास्तिक हां क्या उनु रस नहीं चाहिदा उनु सुख नहीं चाहिदा उनु आनंद नहीं चाहिदा कि
क्या उसनू शक्ति नहीं चाहिए, क्या उसनू जीवन नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो मंगते परमात्मा दी करदा पे और किस दी करदा। मैं फिर दोहरावां, परम जीवन दा ना ही परमात्मा है, परम रस दा ना ही परमात्मा है, परम आनंद दा ना ही परमात्मा है, परम धन दा ना ही परमात्मा है, परम शक्ति दा ना ही परमात्मा। हर मनुख नू परमात्मा चाहिदा है, पर करीबन करीबन उंगलियां ते गिने जाण वाले मनुखां नू छोड़ के प्राप्ति दे साधन सारिया दे गलत ने। ऋषि चाणक कहिंदे ने, कोलू दे पीड़न नाल ही तेल निकलदा है, पर तिलां नू पीड़न नाल तेल निकलदा है, रेत नू पेलन नाल तेल नहीं निकलदा। कहिंदा ठीक है, कोलू दे पीड़न नाल ही तेल निकलदा है, मनदे पर तिलां नू पीड़न नाल तेल निकलदा है, रेत नू पेलन नाल तेल नहीं निकलदा। मनुख जीवन दे कोलू दे च रेत पा लैंदा है, फिर कढ़ना चाहुंदा है परम रस दा ते परम आनंद, परम जीवन, परम सुख, रेत दे चों तेल किथे। मंग ठीक है, मंग नू पूरे करन दे साधन गलत है, गलत है, गलत है। मनुख अपने साधना नू ठीक कर लवे, मंग होने ही पूरी, ऐसे वक्त, ऐसे वक्त। लंबे चौड़े चक्रां च ना पैना, एक छिंदे च परम रस, एक छिंदे च परम आनंद, एक छिंदे च परम शक्ति, एको ही छिंदे च परम जीवन, एको ही छिंदे च परम धन। एक चित जय एक छिन ध्यायो, काल भास के बीच ना आयो, एक छिन एक सैकंड। संसार देच एक सैकंड देच ते ऐसा कुछ भी प्राप्त करना कठिन है, पर एको ही सैकंड देच परमात्मा मिलता है। जिंदगी देच वो एक सैकंड आ जाए, एक छिन आ जाए, वो निमक आ जाए। निर्माण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत, निमक निमक एक सेकंड, निमक एक पल, निमक एक दम। सारी जिंदगी हो गई कीर्तन करदे हैं, पर प्रभु ते निमक कीर्तन नाल मिलता है, निमक। निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटे। जद मनुख कहिंदा है और सोचदा है, इन्ना कीर्तन कीता, इतना कीर्तन सुनिया, होया ते कुछ नहीं, शायद गुरबाणी सानू तसल्ली दे रही है, विश्वास नहीं बनता, निमक भरोसा नहीं बनता। एक सैकंड मैं फिर अर्ज करा, मैं एक एक कबूल कर लवा, ते मैं कोई फोकी निर्माणता भी थोड़े अगो नहीं रख रहा। अंदाजन 50 साल दे नेड़े होन लगे गुरबाणी विचार संगतां नू सुणा दे, मैनू इन्नी समझ आई है मिलदा एक सैकंड दे च। एक गल वखरी है कि मेरी जिंदगी च वो सैकंड नहीं आया, नहीं आया। ए मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई फोकी निर्माणता थोड़े सामने रख रहा, इस वास्ते कह रहा हूं कि एक सैकंड दे आना बड़ा औखा है। इसे नु गुरु नानक देव जी ने कह दिता है, आखण औखा साचा ना। ते की औखा है? वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, मैं चार दफा कह दिता, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। हुण मैं होर कह दिता है, की होया? कोई औखिया ही नहीं। पर जिस ढंग नाल गुरु नानक देव जी कहिंदे ने
आखण औखा साचा नाम। जिस आखण बारे गुरु नानक जी कहिंदे ने यकीन जानो जिंदगियां गल जांदियां ने, जन्म लंघ जांदे ने। ओ इक दफा कहण दी, ओ किछिन दे च आण दी जाच नहीं आउंदी। मैं फिर अर्ज करा, 50 साल जो मैनू मिले होए खेड एक सैकंड दे च बनदी है, जिंदगियां नहीं लगदियां, कई जन्म नहीं लगते। जोत दे च जोत होंदे हां, किरण नूं सूरज होंदे हां, लहर नूं सागर होंदे हां, एक सैकंड लगता, एक छिन लगता, एक पल लगता है, जिंदियां गल जांदियां ने। पता नहीं कितने जन्म खराब हो जाते, खेड नहीं बनती। हुण इस नूं मैं खुलासा करके तुछ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने रखा, किधरे प्रकरण फिर अज भी अधूरा ना रह जाए। परमात्मा है, सूरज है, किरण है, जीव आत्मा है, प्रकाश है, किरण का मन है। इसे ही प्रकाश दे जो प्रगट हो रहे है, दिखाई दे रहे है, प्रकाश करके दिखाई दे रहे है, वो ए तन है। ए तन भरतरी ते कहिंदे ने, ए तन मेरे मन चो बनया। बड़े ध्यान नाल सुनना, उहदा एक छंद है। इस महापुरश ने 3 ग्रंथ लिखे ने भरतरी ने, वैराग शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक। इन्हां नूं पढ़ के मैं हैरान होया, भई हैगा ते राजा सी एक छोटी जिही स्टेट दा, धार स्टेट दा राजा सी, इंदौर उजैन दे कोल है, उत्थों दा राजा सी। राजा बिक्रमाजीत दा छोटा दरा सी। जिस तरह बिक्रमाजीत बड़ा धार्मिक सी, ए उस तों भी अग्गे सी, धार्मिक रुचियां दा मनुख सी। वैराग शतक इसका बहुत कीमती ग्रंथ है। साधना इसने बड़ी मेहनत नाल कीती, जो गोरख ने दसी। उन्हां दिनां च गोरख मौजूद सन, गोरख दी संगत नसीब हुई, गोरख ने इस नूं जोगी बनाया। तरह तरह दियां सिद्धियां प्राप्त करके ये 84 सिद्धां दे सिद्ध शुमार होया। पुराणा यम दी साधना दे सफलता करके जिंदगी लंबी कर ले, प्राणा नूं रोक लिया कई कई साल। पुराणा यम नहीं चलन देने प्राण। असी जो जिंदगी लेके आया प्राणा दी, स्वासां दी गिणती मिणती दी, चलने ही नहीं दिते। आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, गुरु नानक दे वक्त ते भरतरी मौजूद सी, उस वक्त मौजूद सी। बाकी गोरख दे चेले वो ते नहीं रहे, नवे चेले मौजूद सन, पर पुराणियां च भरतरी। भरतरी दे प्रति धन गुरु नानक देव जी महाराज दे 3 शब्द ने आसा राग विच। इन्हां 3 शब्दियां दी सिर्फ मैं 2-2 पंक्तियां थोड़े सामने रखा। पहला प्रश्न किधरे भरतरी दा सी, थोड़ा मत की है, थोड़ा धर्म की है, थोड़ा रास्ता की है गुरु नानक ते। क्योंकि गोरख दा ए रास्ता है, बुद्ध दा ए रास्ता है, महावीर दा ए रास्ता है, सनातन धर्म दे ऋषियां दे ए रास्ता है, ने वक वक रास्ते ने, 6 शास्त्रां दे 6 रास्ते न्याय दे गौतम कुछ होर कहिंदे ने, योग दे पतंजलि कुछ होर कहिंदे ने, जैमिनी कुछ होर कहिंदे ने, कड़ाद कुछ होर कहिंदे ने, कपल कुछ होर कहिंदे ने, व्यास कुछ होर कहिंदे ने। 6 शास्त्रां दे 6 रिश्ते अलग अलग रस्ते ने, वक वक रस्ते। महात्मा बुद्ध कुछ होर कहिंदे ने,
और स्वामी महावीर वीर कुछ होर कहंदे ने ते मैं फिर ए भी अर्ज करा गलत कोई भी नहीं कहंदा सारे ही सही कहंदे ने पर सारे जो कह रहे ने होर होर कह रहे एक जो कुछ कह रहे है दूजा उस तो कुछ होर कह रहे है तीजा उस तो कुछ होर कह रहे है चौथा उस तो कुछ होर कह रहे है लेकिन फिर भी सारे सही कह रहे हैं गलत एक भी नहीं है भोले होया एक भी नहीं है। इस दे मैं उदाहरण देना हुना नदियां सारियां ही सागर की तरफ जांदियां ने और सागर होने लई लपकदियां ने तड़पदियां ने पर एक रस्ते तो नहीं जांदियां गंगा का अपना रस्ता नर्मदा का अपना रस्ता सतलज व्यास रावी चनाब का अपना रस्ता है सिंध का अपना रस्ता है इराक दे दजला फरात का अपना रस्ता है मिस्र दी नील नदी का अपना रस्ता है इंग्लैंड दे थेम का अपना रस्ता है जांदे ते सारे ही सागर दे चने एक रस्ते तो नहीं जांदे तड़प ते सारिया नदियां दे सागर होण दी है रस्ता एक नहीं है। चंगा है नदियां कोल ए अकल नहीं नहीं ते नदियां भी ऐलान कर सकदियां सन मेरा रस्ता ठीक है गंगा कह सकदी सी मेरा रस्ता ठीक है इराक दे दजला फरात जिहड़े दो दरिया उन्हां नूं कह सकदी तुसी गलत जा ते जे किधरे इहनां कोल अकल भी आउंदी ते जबान भी आउंदी ते इराक दा दजला ते फरात उन्हें उच्ची आवाज नाल कहना सी साडा रस्ता ठीक है गंगा गलत सतलुज गलत चंगा एहोजियां दी अकल उन्हां कोल नहीं है एहोजियां दी जबान उन्हां कोल नहीं है मनुख कोल है इहदी गलत वरतों करके कहिंदा नहीं इस्लाम ठीक है ईसाइत गलत ईसाइत ठीक है यहूदी गलत ने हिंदू ठीक ने बोधी गलत ने बोधी ठीक ने जैनी गलत ने जैनी ठीक ने सिख गलत ने या फिर सिख ठीक ने हिंदू गलत ने सनातनी गलत ने इस तरह की मनुखी दुनिया ते चर्चा है और ये सारिया नदियां ही ने और कुछ भी नहीं सब दरिया सारिया कोल पानी है अपने अपने झरने का एक झरना ओदा नाम मुहम्मद है उथों इस्लाम दा झरना फुटिया एक झरने दा नाम गुरु नानक है गुरबाणी दा झरना फुटिया सिख मत दा झरना फुटिया एक झरने दा नाम बोध है उदों बोध होण दा झरना फुटिया है नाम ने अलग पर रवानी सारिया की सागर की तरफ है रस्ता सारिया का एक नहीं है नहीं है। खोज तड़प ते सारिया की सागर की है मार्ग एक नहीं है रस्ता एक नहीं है मूढ़ बुद्धि के कारण करके किसी वक्त मैं कहता हुंदा सी ओ गलत है ओ गलत है ओ गलत है पर गुस्ताखी माफ गुरबाणी पढ़ के जो समझ आई कोई गलत नहीं कोई गलत नहीं सब दरिया सागर दी तरफ ही जा रहे और किधरे भी नहीं जा रहे सारिया ही नदियां समुंदर दी तरफ जा रही हैं और किधरे भी नहीं जा रही ते जद समुंदर दे चलीन हो जांदियां तो समुंदर ही हो जांदियां ना उथे गंगा लभदी है ना दजला लभदा ना उथे फरात मिलदा है ना थेम मिलदा है ना उथे सतुज लभदा है ना दरिया सिंध लभदा ना ब्रह्मपुत्र लभदा बस सागर दे ते सागर ही लभदा जद भी कोई परमात्मा दे लीन हो जांदा है उहदी गोत खत्म हो जांदी है वर्ण खत्म हो जांदा है उहदा मजहब तक खत्म हो जांदा है क्योंकि परमात्मा दा कोई मजहब नहीं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का वाक मैं संगतां दे सामने रखदा हुंदा जाप साहब नमस्तंग अमजवे
नमस्तस्तु अजबे, नमस्कार है प्रभु तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब नहीं। नमस्तम अमजबे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, नमस्तम अमजबे, नमस्तस्तु अजबे, हे अजब स्वरूप परमात्मा नमस्कार है तेनु, हे अमजब तेरा कोई मजहब नहीं, मैं तेनु नमस्कार करूंगा। भरतरी का प्रश्न है गुरु नानक ते, थोड़ा मजहब, थोड़ा रस्ता, थोड़ा मत। हुण जो गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने किधरे सिखा ने अपनाया हुंदा ते रूहे जमीन विच, गुरु नानक दा रस्ता अज इतना विशाल हुंदा, सारे इस मार्ग ते चलदे क्योंकि सुखैन मार्ग है। गुरु नानक अपने रस्ते बारे दसदे ने, साडा मत की है, सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकन, ए जगत विच वख वख वरन पेक मजहब। सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। ऐ भरतरी, नानक समझा रहे थानू, कह रहे ने ये जो वख वख वरन ने, धर्म ने, मजहब ने, सारियां दे नाल चलना ते सारियां नू नाल चलाना, बस गुरु नानक दा यही मत है, और कोई मत नहीं, और कोई मत नहीं। सब दे नाल चलना, सब नो नाल चलाना, बस यही मत है, मेरा और कोई मत नहीं। गुरु नानक दे नाल जैनी भी चल सकदा है, मुस्लिम भी चल सकदा है, वख वर वर्णा दे साधु भी चल सकदे ने, बैरागी भी चल सकदे ने, सन्यासी भी चल सकदे ने। रामानंद बैरागी चल ही रहा है, मुसलमान फरीद चल ही रहे, कबीर चल ही रहे, पंडित जयदेव चल ही रहे, शूदर कहलाण वाले रविदास ते कबीर चल दे ही पैने ना। सब दे नाल चलना, सारिया नू नाल चलाना, बस नानक दा यही मत है, और कोई मत नहीं, और कोई मत। संसार विच रहण दी किधरे जुगती पुछी है भरतरी ने, क्योंकि घर बार छोड़ आया सी, पत्नी नू छोड़ आया सी, राजपाट छोड़ आया सी, गोरख ते कहने दुते जद पहली दफा भिक्षा मंगण लई गया उस शहर विच जिस शहर दा ए राजा सी, भेजे गोरख ने जा भिक्षा मंग के लिया, रो पिया सी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते रो वे राजे कन्न पड़ाए, घर घर मांगे बिखिया। खपर चुक के जब दर दर ते चुटकी भिक्षा मंगनी पई, भरतरी ते जारो जार रो पिया, गोपी चंद ते जारो जार रो पिया सी। हैं लखां दा मैदान करन वाला सी, चुटकी चुटकी आटा घरों मंगना, तड़प उठिया सी, रो उठिया सी, पर हुण पक्के इरादे दा बंदा सी, दृढ़ इरादे दा बंदा सी, सारियां मुसीबतां सहेड़ियां, सारी साधना कीती, लेकिन खेड ओ ना बनी जो बननी चाहिदी सी। ए नदी सागर दे सागर ना हो, ए किरण सूरज दे सूरज ना हो। गुरु नानक नु कहना पया तेनु राज सिंघासन छोड़न दी लोड़ नहीं सी, तेनु अपनी पत्नी छोड़न दी लोड़ नहीं सी, तेनू अपनी धन संपदा महल माड़ियां छोड़न दी लोड़ नहीं सी, कम से कम तू इस फुल दे कोलों ही सिख लेंदा, किस कोलों, कमल कोलों।
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜੇ ਜਲ ਤੇ ਦੂਰ, ਜਲ ਮੇ ਜੋਤ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਸੁਣ ਭਰਤਰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਭਰਤਰ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਦਿ। ਪੈਦਾ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਚੋਇਆ ਇਹ ਕਮਲ, ਜੀਵਦਾ ਵੀ ਜਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਇਹ ਕਮਲ, ਪਰ ਵਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਦਕਾ ਇਸਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀਵਣਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਨ ਬਸ ਰੋਟੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰੋਟੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ ਆਗਨ ਪੋਦਰ ਮਾਝਾ। ਇਹ ਤਨ ਬਣਿਆ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਨ ਬਣਿਆ ਬਿੰਦ ਤੋਂ, ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਹੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਬਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ? ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਹੋਣ ਬਣਦੀ, ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਹੀ ਬਿੰਦ ਬਣਦੀ। ਰਖਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਮਿਆ ਆਗਨ ਉਧਰ ਮਜਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੀ ਰਖਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦਾਰਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੋਲਦੀ ਹੈ, ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ ਆਗਨ ਕੁੰਡ ਰਹਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਮਾਠੀ ਗੋਰੀ, ਇਸ ਮਾਠੀ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜੋੜੀ। ਬੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤਨ ਰੋਟੀ ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਖੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤਨ ਬਣਦਾ, ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤਨ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਬਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਤਨ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਤੋਂ, ਤਨ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਜੋ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੀਵੇਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਜੰਮਿਆ ਜੋ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਜੋ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਯੇ ਮਾਲਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਯੇ ਮਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੀਜੇ। ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਬੀਰ ਨੇ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਹਸਤੀਆਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਧਨ ਧਨ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ? ਤੂੰ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਧਨ ਗੋਪਾਲ ਧਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਤੂੰ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਦਕਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ। ਧਨ ਗੋਪਾਲ ਧਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਤੀਸਰਾ ਧਨ ਅਨਾਦ ਭੁੱਖੇ ਕਵਲ ਟੇਕ,
धन है ए अन्न ए रोटी, जब तू पेट दे च पै जानी है ते गुरु भी चंगा लगता है, रब भी चंगा लगता है, नहीं ते दोवे नहीं चंगे लगते, नहीं चंगे लगते। धन अनाज, धन है ए अन्न अनाज रोटी, धन अनाज भूखे कवल टेके, भूखा इंज खिड़ जाता है जिवें कमल दा फुल। यह भी पूजन योग है, जिथे रब नू बिठाया जिस सिंघासन ते कबीर ने, जिस सिंघासन ते गुरु नू बिठाया उत्थे ही रोटी नू बिठा रही, उसे दर्जे ताई ते गुरु अमरदास जी महाराज ने संगत ते पंगत कट्ठे कर दी बराबर न। सिमरन करके जे आनंद प्राप्त किया जा सकता है, सेवा करके भी आनंद प्राप्त किया। गुरसेवा तपा सिर तप सार, सेवा दी भी अपनी महिमा, सिमरन दी भी अपनी महिमा, संगत दी भी अपनी महिमा, पंगत दी भी अपनी महानता। बशर्ते मनुख नूं संगत विच बैठण दा ढंग आवे, और बशर्ते पंगत दे सेवा करन दा ढंग आवे। इंज नहीं एक चौर पिया करदा ते दूसरे ने हथों लै लई ते फिर उसने उहदे कोलों खो के उहदे सिर ते मारी, तेरा की हक, तू कौन है, मैं करदा चौर, मैं ते करिश्मे देख के दंग रह जांदे, सेवा पे करदे। सावण लाला के मार्बल दा फर्श उदों धोवो जदों संगतां आंदियां ने, लत्तां बाहां सब दियां थोड़ा बेचारे चलते ने, गिरते रोज गिरते। मैं उन्होंने कहना रात नूं कर लिया करो, नहीं जब अमृत वेले आ उदों करनी है, दिखाण तू गिरदे ने लोग। कईआं दियां लत्तां टुटियां हुई मैं देखदा, कईआं दियां बाहां टुट गई, इन्हां दियां सेवा ये जो करदे ने, जे किसी दियां लत्तां ही टुटदियां ने बाहां ही टुटदियां तो सेवा आखोगे, किस तरह आखोगे सेवा। बेहोशी नाल सेवा हो रही है, बेहोशी नाल सिमरन हो रहे। धन अनाद भूखे कवल टेके, चौथा पूजन योग कौन तनता दियो। धन ओए संत जिन ऐसी जाने, तिन को मिलबो सारंग पाने। पूजन योग है ओ संत जिन्हें ए जाने है कि रोटी धन है, गुरु धन है, प्रभु धन। जिसने इस असलियत नु जाने है ओ भी पूजन योग है, ओ भी धनता दे योग है। तो मैं फिर अर्ज करा, तन रोटी है बनिया रोटी, जीवेगा भी रोटी दे आसरे ते, बिना रिजक तो ए तन जी नहीं सकता, नहीं जी सकता। ते हुण होर सुन लो, रिजक हर जगह नहीं पे, मनुख जिथे बैठा है जरूरी नहीं इसका रिजक भी उत्थे होवे। रिजक जिथे होवेगा इस रोटी दे पुतले नूं उत्थे जाना पेगा। इस नूं गुरु नानक देव जी महाराज इंज बयान करदे ने, नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच ए। ऐ सच्चाई है, रिजक जिथे है, दाने जिथे है, किरत धक्के मार के उथे ले जाए, ले जाए, ले जाए, किरत धक्के दे। रिजक हर जगह नहीं पे, रिजक लबना पेगा जिथे पे है, टोलना पेगा। कुदरत चाहती है कुछ करे, मेहनत करे, जिथे रिजक पे है उथे लगे। मनुख दे अंदर सब तो वड्डी चिंता भी रिजक दी, रोटी दी। बगौर मुताब कारण पानी दे ते दरिया चलते ने, रोटियां दे दरिया नहीं चलते। पानी दी ते बारिश आउंदी है, रोटियां दी बारिश नहीं आउंदी। कमानी पैंदी है, लभनी पैंदी है।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਤਨੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਤਨੀ, ਹਵਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਰੋਟੀ ਦੀ

ने अर्थ बोध दे गया थे। प्रिंसिपल गंगा सिंह, बेदी ब्रिज वल्लभ सिंह, गैनी बादल सिंह, गैनी रंजीत सिंह जी पारस, गैनी मान सिंह जी जौहर, अज ते सवेरे टेप सुनते ने, शाम को सुना देंगे ने, शाम को टेप सुनते ने, सवेरे सुना। कोई मेहनत नहीं, कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई आले दुआले की खोज नहीं। ये चंगे अनुभवी पुरुष सन। मान सिंह जी जौहर जगत की बनावट सजावट ते परले इहदे उत्ते बोल रहे सन। इन्हां पंक्तियां नूं आधार बना के एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीप बुजुर्ग सन। ते मैं उन्हां दिनां दी गल करदा पिया जद मेरी चढ़दी जवानी सी, उह बिरद सन, 84-85 साल दे बुजुर्ग सन। मेरे नाल प्यार भी बड़ा सी उन्हां दा। मत्था टेक के मैं बैठ गया, भावे मैं जल्दी जाना सी, पर मैंने एक बुजुर्गां नूं सुनना। उन्होंने पहले इस्लामी मत के मुताबिक दसिया, जगत की सिरजना, जगत का टिकना, जगत की परले। फिर सनातनी मत नूं लिया, ब्रह्मा जगत की साजना करता है, शंकर जगत की परले करता है, विष्णु जगत की पालना करता है। इस कहानी नूं उन्होंने जरा रोचकता दे दी थी। इतिहास है, इतिहास नहीं है, पर प्राचीन ऋषि मुनिया दे समझाण दा यह बड़ा ढंग सी, बहुत अच्छा ढंग सी। सिद्धा कक्का अखर नहीं पढ़ांदे सन, कहंदे सन कक्का कलम, चच्चा चाकू, छच्छा छतरी। ये छतरी नूं वेखे तेनू अखर दा बोध, कहानियां सुने तेनू सच्चाई दा पता चल जाए। समझाण दा ढंग सी, क्योंकि धार्मिक तौर पर मनुख हमेशा ही बच्चा रहता है, करीबन करीबन राजनीतिक तौर पर तो बुजुर्ग हो जाता है, राजनीति के बड़े दाव पेच इस आते हैं, आर्थिक तौर पर भी बड़ा सियाणा होता है, धन किवें कमाना है, पर धर्म किवें कमाना है, मरदे दम तक बच्चे का बच्चा ही बनया रहा है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मजबूरन महापुरुषों को कहानियों समझाना पैंदा, सुनाना। सनातन मत दे इस मिथिहास में मान सिंह जी जो सुना रहे सन, ब्रह्मे दी लंबी चौड़ी गल कर और शिव जी दे सुभाव नु वर्णन करन तो बाद सुनान लगे विष्णु जी दी गल। वे विष्णु जद सारिया दा रिजक बनान लगा तो लैन बड़ी लंबी सी, पशुआं दी लैन, पंछियां दी लैन, कीड़े मकोड़ियां दी कतार। मान सिंह जी जौहर कहंदे फिर मनुखां दी कतार लैन, कहिंदा मैं भी उसे ही कतार च खड़ा हो गया, क्योंकि रिजक मैनू भी चाहिदा सी, रोटी मैनू भी चाहिदी सी। उन्हां दे कहण दा अपना ढंग मैं तुहानूं पहले दसी है। इस रोचकता नूं बयान करना यह उन्हां दा सुभाव सी। कहिंदा उड़ीक करदा रहा, विष्णु की करदे सन, दो मुठियां दाने भरदे सन, किसी की झोली च दो मुठियां पा देंदे सन, किसी की झोली च एक मुठी पा देंदे सन, किसी की झोली च अद्धी मुठी पाते सन, ते चलता करी जा रहे सन, वंड इस तरह पे करदे सन। इन एक उर्दू का शायर कहिंदा है, कुदरत किया हर एक को अकसाम अजल से। कुदरत ने, प्रभु ने तकसीम किया है, वंडिया है अजल तो। कुदरत किया हर एक को अकसाम अजल से, जो शख्स के जिस चीज के काबिल नजर आए। काबिलियत देखी, अगले दी झोली देखी, अगले दी पात्रता देखी, ते परमात्मा उंज पांदा। इहदे कोल ते कौली है, इहदे कोल लोटा है, इहदे कोल गिलास है, इहदे कोल ते वड्डा थाल है, इहदे कोल ते बहुत वड्डी बाल्टी है, इहदे कोल ते बहुत वड्डा डोल है। जिस तरह की पात्रता सी, सब दी भरी जांदा सी, कौली भी भर देंदा सी, लोटा भी भर देंदा सी, डोल भी भर देंदा।

भक्त गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो

हे जगत गुरु, हे जगत दे मालिक परमात्मा, असी ते इस दौर दे इस कल युग दे कामी जीव हां, काम लाल भरे होया। प्रथम इस काम नूं अर्थां दे रूप विच समझना है। काम दे अखरी अर्थ ते ने कामना, पर कामनावां विच बहुत वासना है। इस वास्ते प्रियवाची शब्द बन गया काम वासना। कामना विच पदार्थ होवन तो काम लोभ, कामना सता दी होवे तो काम अहंकार। पर चूंकि कामना बहु वासना दी है, इस वास्ते काम वासना ते शब्द पर चलत हो गया काम लोभ, काम अहंकार। एक कथनी विच ना आ सके, ये लेखनी विच भी ना आ सकया। काम दे अर्थ ने कामना, पर चूंकि कामना दी ज्यादा वासना है, रूप है, यही कारण है कि काम दे अर्थ ही बन गए वासना, काम दे अर्थ ही बन गए रूप। रूपे कामे दोस्ती, रूपे कामे दोस्ती भुखे सादे गंड। जैसे स्वाद सारा भुख दे च है, इतना भोजन दे च नहीं, तो वासना रूप ते ही आकर्षित होंदी है, रूप दी तरफ खिंचदी है। तो काम ते रूप दी दोस्ती बन गई।

एक शायर ने बड़ा सुंदर लिखे है, वो कहता है जब हुसन नहीं तो इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गिले दीवार पर शैदा नहीं होता, बुलबुल गुले दीवार पर शैदा नहीं होता, दीवार देते जो फुल बने होया कोई बुलबुल उसते नगमे नहीं अलापती, नहीं चहचहांदी, नहीं गीत गांदी, क्योंकि तस्वीर है, हुसन दी तस्वीर है, हुसन नहीं, रूप दी छाया है, रूप नहीं। तो पंछी सियाणे ने छाया ते आशिक नहीं आंदे, छाया ते फिरा नहीं आंदे, रूप ते स्वप्न ते। मनुख ते किसे किसे थां पंछियां तो भी गया गुजरे है, इते तस्वीरां ते भी मोहित है, चाहे चलदी फिरदी तस्वीर है जैसे कि फिल्मां, चाहे पत्थर दे उते उकरियां या तस्वीरां ने, चाहे तरह तरह दी इल्मे मसूरी है, चित्रकारी है, मनुख ते उसते भी फिदा होया पे। यही कारण है कि फैश तस्वीरां वालियां मैगजीन्स बहुत बिक रहे ने, बहुत पढ़े जा रहे ने, और उन्हां तस्वीरां नूं मनुख देखदा है, खूब देखदा है। दूर क्यों जाओ, मनुख दा ए वेग किसे समय इतनी शिखरता ते पहुंचिया सी कि जमीन दे मंदिर भी काम दे बने, राम दे नहीं, जैसे के खजुराहे दे मंदिर, कोणार्क दे मंदिर, जगन्नाथ पुरी दियां पत्थर ते उकरियां तस्वीरां मूर्तियां। हैरानगी है, खजुराहे नू देखण लई देश विदेश तो भीड़ पहुंचती है, और छोटा जिया कस्बा लेकिन चारों पासे फाइव स्टार होटल भी ने, एयरपोर्ट भी है, खूब जांदे ने सैलानी, और सैकड़े एकड़ विच फैले हुए इना मंदरां नू देखण लई। की है इना मंदरां विच, कोई कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, किसे संत दी मूर्ति दे दर्शन करन जा रहे ने, किसे अवतार दे चित्र दे दर्शन करन जा रहे ने, कता ही नहीं। उत्थे जो मूर्तियां ने वो काम दिया मूर्तियां ने, वासना दिया मूर्तियां ने, मनुख वेखन जा रहे है, मनुख दे अंदर दी वासना इसनु मजबूर कर रही है, एक कोणार्क जांदा है, जगन्नाथ पुरी दियां बार दियां तस्वीरां देखदा है, और खजुराहे दे मंदिर देखदा है। इस तो स्पष्ट होंदा है कि मनुख दे वासना दे वेग ने मंदिर भी बनाए ते वासना दे बनाए, प्रार्थना दे नहीं, मंदिर भी बनाए ते काम दे बनाए, राम दे नहीं। हुन इस सदी विच इस युग विच ते दिल दिमाग दते एक काम ही छा गया, हर पासे इस दी विचार, इस दी प्रदर्शनी अखबारां विच, शायरी विच, फिल्मां विच, साहित विच, तरह तरह दियां तस्वीरां विच, और चारों पासे इतना काम दा प्रगटावा होवे, प्रचार होवे, तो कोई ध्यानी कोई साधक राम दा चिंतन करे इस युग विच कठिनाई है, अगर वो कर सके तो महान है। भगत रविदास जी महाराज नूं इत्थे ही दुख तो के कहना पिया, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी।
इसी काम दे हड़ देच बह गया समुच्चा मगरिब यूरोप अमेरिका कनाडा और बदकिस्मती है ये भारत जो सदियों तक धार्मिक देश रहे है और धर्म दी महिमा इत्थे बड़ी प्रगाढ़ रही है। अफसोस ए भी अज यूरोप दी नकल कर मगरब दी नकल कर पच्छम दी नकल कर काम दे वेग दिच बह गया काम दे दलदल दिच फस गया। और यही कारण है कि राम दा चिंतन घटदा गया घटदा गया। हुन मोची ते कदम कदम ते बैठे मिलदे ने जुतियां गंढण वाले किसे रविदास दे दर्शन नहीं आंदे। कपड़े बुनन वाले ते बहुत मिलदे ने कबीर दे दर्शन नहीं आंदे। नाई ते बहुते ने सैण किथे कपड़ियां नू रंगण वाले ते बहुते ने पर नामदेव किथे चेतने महाप्रभु ए किथे। हुन कोई मीरा एक तारा लेके भजन दिश डुबी होई नहीं दिखाई देंदी। हुन कोई माता भाग कौर सुरवीरता दी मूर्ति नहीं दिखाई देंदी। समूह जगत इसे ही वैण देच वह तो रहा है इसे ही हड़ देच वह तो रहा है। और धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक देच इसी वेग दा जिक्र कर रहे ने। हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनी भरमावणे चित हरणं त्रैलोक गमं जप तप सील बेदारणे। हे काम तू कीते हुए जप नू कीते हुए तप नू शील नू भंग करन वाला है। ना तू संजम रहन देना है ना तू शर्म रहन देना है ना तू जप रहन देना है ना तू तप रहन देना है। इतना चंचल कर देना है कि मनुख लई राम दा चिंतन कठिन हो जांदा है। नहचल नाल जुड़ना कठिन हो जांदा है। चंचल दा मतलब है चल चल चल। इतना चलाए मान कर देना है मन नू वो जो नहचल है नहीं चलदा टिकया होया है टिकया होया है उस नाल टिकना उस नाल जुड़ना कठिन हो जांदा है। और जीवन चंचलता दे वैण दे च बह तुरदा है। अगम्मी महान मिलिया ए जीवन काम दी भेट हो जांदा है। जद के जीवन मिलिया सी राम नू भेट करन लई हो गया काम दी भेट। अगर काम प्रार्थना बन जाए तो राम प्रगट होंदा है। काम वासना बन जाए तो फिर जीवन काममई हो जांदा है। काम दा रूप बन जांदा है वासना दा रूप बन जांदा है। हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनी भरमावणे चित हरणं त्रैलोक गमं जप तप सील बिदारणे अलप सुख अवित चंचल

और इस दौर देच, इस कामी युग देच हम कहियत कल युग के कामी जो संतान पैदा हो रही है कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार जिन भूत पैदा हो रहे हैं पुत्र जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदा पुत्र ते जिन भूत है ती भी जिन भूत है कोई मीरा नहीं पैदा हो रही माता भाग कौर नहीं लैला पैदा हो रही है कोई कबीर कोई रविदास कोई भाई मनी सिंह कोई भाई गुरदास नहीं पैदा हो रहे मजनू पैदा हो रहे क्यों मां बाप शरीरक तल तो उच्चे ही नहीं उठ सके दोहां दा मिलन पहले शरीरक होवे सहजे सहजे एजत शरीरक तल तो उच्चे उठन उस समय ना दे घर औलाद आवे भगत आणगे दार्शनिक आणगे विज्ञानक आणगे संत आणगे पर जे जीवन भर शरीर तो उच्चे ही नहीं उठ सके वासना तो उच्चे ही नहीं उठ सके और इसे दल दल दे फसे रहे तो औलाद आएगी जिन ते भूत जिन्ना ते भूता नाल ए युग ए संसार भर गया जिन भूत जो अदृश्य रूप देच पहले कर्म कर दे सन दृश्यमान रूप देच ए मनुख आज कर रहे हैं जिन भूतानु काबू करना औखा सी अजो की अवलाद नु काबू करना औखा है बहुत औखा है कठिन है ए कॉलेज स्कूलां दिया कुर्सियां तोड़ रहे ने उस्तादानु मार रहे ने तरह तरह दे कुकर्म कर रहे ने और किधरे भी सील नहीं संजम नहीं उसका मूल कारण है मां बाप दा जीवन प्रार्थना नहीं बन सकया वासना ही बनिया रहा मां बाप दा जीवन राममय नहीं हो सकया सिर्फ काममय होके रह गया पातशाह कहंदे ने रन्ना होइया बोधियां पुरख होए सयाद सील संजम सुच भन्नी खाना खाज अखाज रन्ना होइया बोधियां स्त्रियां बहुत चंचल दिन रात अपने रूप दी प्रदर्शनी करनी और अपने रूप नु देखना यही उना दी जिंदगी दा लक्ष्य बन गया भगत कबीर भी कहंदे ने वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी जिथे वेद पढ़दियां पढ़दियां पंडित इसे जी खप गए उथे अपना रूप वेखदी वेखदी ते विखांदी विखांदी बस नारी इसे जी खप के रह गई रूप पेख पेख नारी स्त्री प्रथम अपना रूप वेखदी है पर महसूस कर दी हां हुण ठीक है फिर विखाण लई निकलदी है रूप दी प्रदर्शनी शरीर दी प्रदर्शनी और यही चाव यही शौक वद्दा जाए तो जिस्म तो कपड़ा हटदा जाएगा मनुख एक सभ्य मनुख सोच भी नहीं सकदा कि स्त्री अर्ध नगन होके भी घूम सकती है बाजारां दे और नगन होके भी नच सकती है थिएटरां दे हां वासना चरम सीमा ते पहुंची हुई होवे रूप नु वेखना ते विखाना यही जिंदगी दा लक्ष्य होवे तो फिर शरीर तो कपड़ा हटदा जाएगा अर्ध नगन और फिर अल्फ नगन इस तरह उसकी प्रदर्शनी होवेगी पुरख होए सयाद सयाद शब्द फारसी दा है
ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਗਨ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਔਰ ਅਜੇ ਇਤਨੀ ਧਨਾੜਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਧ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਆਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਧ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚ ਨੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੂਬ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਸ਼ ਨਾਵਲ, ਜਿਨਸੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਖੂਬ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਨੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਔਰ ਇਸਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁੱਖ। ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਾਨੀ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਪ ਸੁਖ ਪਵਿੱਤ ਚੰਚਲ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਔਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਚੰਚਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁੱਛ, ਇਸੇ ਹੀ ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ।

तन कर धर्म वधे नित। रसना ते प्रभु दा नाम ले आइए, उस सच नूं सत नूं रटन करिए, उस विच मन जोड़िए, धर्म पैदा हो जाता है। धर्म दा बूटा अंकुरित हो जाता है और परोपकार कीते हैं, दान पुन कीते हैं, धर्म दा ए बूटा सहजे सहजे वधदा है, उठदा है। स्थित धर्म खिमा के संगा, धर्म दा बूटा क्षमा दे आसरे ते टिकिया रहिंदा है। कोमल बूटे गिर ना जान, ढह ना जान, तूफानी हवावां उन्हां दियां जड़ां ना पुट देन, तो सहारा देना पैंदा है कोमल बूटियां नूं, किसे सोटी दा किसे दीवार दा। तो क्षमा दी सोटी नाल, क्षमा दे सहारे, खिमा दे सहारे ए धर्म दा बूटा रोज रोज वधदा है, उच्चा हुंदा है, उच्चा हुंदा है। स्थिते धर्म खिमा के संगा, धर्म क्रोध कर होत विभंगा। छिन मात्र क्रोध कर दिया, धर्म दा बूटा जल के खाक हो जाता है। क्रोध

क्रोधी सियाणा नहीं हो सकता। क्रोध बारे कुछ होर जानकारियां इस तरह दिया ने। जर्मन दी गल है, एक मां बच्चा ले आई है डॉक्टर को, मुर्दा रोंदी हुई चीखती हुई। डॉक्टर भी हैरान है, जब ये मर ही चुके है ते मेरे को ल्याण दा मतलब, जब ये खत्म ही हो गया है फिर ये रोंदी हुई इत्थे क्यों ले आई है। डॉक्टर कहिंदा ये ते मुर्दा है, रोंदी हुई बिलखदी हुई ममता दी मारी मांग कह रही है। हां मर गए ये ते ठीक है, पर मैं इस वास्ते ले आई है, क्यों मरया है किवें मरया है मैनू कुछ कारण नहीं दिखाई देंदा। अच्छा तो इस वास्ते ले आई है। डॉक्टर उस बच्चे नू वेखदा है, अपनी सियाणप नाल जांच पड़ताल करदा है, मां नू पुछदा है ए दस किवें गुजरिया कदों गुजरिया। बस मेरी गोद देसी मेरा दुध पींदियां ही पींदियां ए सिर सुट बैठा है, खत्म हो गया। तो मतलब होया तेरा दुध पींदियां पींदियां मर गया। क्या दसेंगी जिस वक्त तू इस बच्चे नू दुध पिला रही सी तेरी मनोदशा की सी, तेरी मानसिक हालत की सी। ये मां कहंदी है मेरा ते पति नाल झगड़ा चल रहा सी, बहुत उच्ची बोलचाल चल रही सी, ये बच्चा विचकार रोन लग पया मैं इस नू दुध पिलाण लग पई, पर गाली गलौज साडी चल रही सी, मैं क्रोध नाल उबली हुई सी। तो डॉक्टर ने कहा ऐ बीबी तू इस बच्चे नू दुध नहीं पिलाया जहर पिलाया है, जब तू क्रोध नाल उबली क्रोध करके तेरिया शरीर दियां ग्रंथियां ने जहर उगलनी शुरू की थी, उना गंडा चो जहर निकली, वो खून विच पिवस्त हुई, वो दुध विच लीन हुई, तो बच्चे नू जहरीला दुध पिलाया है, तेरे क्रोध करके जहरीला हो गया तेरा दुध। इसका मतलब है क्रोध जहर है और सारे शरीर नू जहरीला कर देंदा है, पर इस तो उल्ट भी हो सकता है। अगर शरीर जहर नाल भर सकता है, खून जहरीला हो सकता है, तो खून अमृतमयी हो सकता है, शरीर अमृतमयी हो सकता है। परम भगत श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान, दस बैरागन मोहे बस कीनी पंचों का मिटना, सत्तर दोए भरे अमृत सरे

तप्पड़ झाड़ के बुहारी दे के या धर्म मंदरा नू बनाण विच टोकरी चुकनी पत्थर चुकने इट्टा चुकनिया ये भारी खुशी प्राप्त करदा है भारी भरकम सेवा करके बोझल सेवा करके। सफाई करनी है किसी दे घर दी रस्ते दी साफ करने ने किसी दे कपड़े किसी ने इशनान कराना है किसी मरीज दी तीमारदारी करनी है किसी दे कपड़े धोने ने भारी सेवा करनी है भरकम सेवा करनी है और इस सेवा विच उनु रूहानी खुशी मिले इस सेवा करके इस तरह जुड़े जिमें कोई ब्रह्म दा चिंतन करन वाला ब्राह्मण जुड़दा है जिमें कोई कमजोर दी बां पकड़न वाला खत्री प्रभु नाल जुड़दा है इस तरह ही भारी सेवा करके बोझल सेवा करके अध्यात्म खुशी मानन वाला प्रभु नाल जुड़दा है शूदर कहलांदा है तो शूदर दे नाल धर्म चलदा है। इस तरह दी बोझल सेवा करन वाले मनुखां नूं शायद ब्रह्म दा चिंतन रूहानी खुशी नहीं देंदा ते चिंतन करना उनां दे वस दी गल भी नहीं इतनी शक्ति भी नहीं खून दे चितना उछाल उबाल ए भी नहीं कि कमजोर दी खातर लड़े उदे पक्ष दे खड़ा होए और हर एक दी सेवा कर सकता है धर्म मंदरां दी सेवा कर सकता है धार्मिक मनुखां दी सेवा कर सकता है मरीजां दी सेवा कर सकता है और बड़ी बोझल सेवा कर सकता है भारी सेवा कर सकता है। इस तरह दे शूदर दे नाल उस दी सेवा दे सितके उदे नाल परमात्मा चलदा है ईश्वर चलदा है। शूदर कोल परमात्मा बैठता है शूदर दे नाल परमात्मा चलता है शूदर दे अंग संग होंदा है परमात्मा तो शूदर दे नाल धर्म चलता है खत्री दे नाल धर्म चलता है ब्राह्मण दे नाल धर्म चलता है ऐसा केड़ा वर्ण है जिस बारे धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे ने श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही सारी सृष्टि इक्को वर्ण दी हो गई है इक्को वर्ण विच आ गई है धर्म नहीं चल रहा। अजोकी मनुखता दे नाल राजनीति चल रही है कारोबार चल रहा है परिवार चल रहा है समाज चल रहा है धर्म नहीं चल रहा बाकी तो सब कुछ चल रहा है मनुख नाल लेकिन धर्म नहीं चल रहा तो खत्म हो गए ब्राह्मण कोई टामा टामा खत्म हो गए खत्री कोई विरला खत्म हो गए शूदर कोई एकद भर गई पृथ्वी वैशानार वैश सारी सृष्टि वैश हो गई वैश केवल सौदेबाजी जानदा है वैश हर वक्त बाजार दे च है वो जद बाजार दे च है तो बाजार दे च है पर वो जद मंदिर दे च है तां भी बाजार दे च है जद वो परिवार दे च बैठा है तां भी बाजार दे च है पर जद वो गुरुद्वारे बैठा है तां भी बाजार दे च है वैश वेचना है वेचना है वेचना है छोटा मोटा साजो समान या वड्डा साजो समान वेच के जो अपनी उपजीविका चलांदे ने ए वैश नहीं इते किरत है इते धंधा है वैश बेचनी है अपनी इज्जत अगर मुल मिले वेचना है अपना ईमान अगर पूरा मिल मिले पूरी कीमत मिले बेचना है देश बेचनी है कौम अगर पूरा मूल मिले।

जो बेचण की सोचदा रहिंदा है वो वैश है, और जो बेच देण दे सफल हो जांदा है वो सफल वैश है। वैश दे नाल धर्म चलदा नहीं, क्योंकि वैश ते धर्म नु भी बेचता है। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। ठीक है शायर दा तखयल, खुदा ते वैश दे हाथ च नहीं आएगा, पर जे किधरे आ जाए ते वैश ने खुदा दी भी बोली लानी है, उसन भी बेचना है। वैश लोभी होंदा है, लोभी पापी होंदा है। वैश लोभी होंदा है, लोभी पुनीत नहीं होंदा। वैश लोभी होंदा है, लोभी सब कुछ बेचना चाहता है, बदले विच दुगना तिगना लेना चाहता है। मुल मिले कौम बेचनी है, इज्जत बेचनी है, असमत बेचनी है, ईमान बेचना है, धर्म बेचना है, सब कुछ बेचना है। वैश शब्द ते उर्दू फारसी दा बाजार विच बैठ के जिहड़ी स्त्री अपनी असमत बेचदी है उहदे लई शब्द है वैश्या। वैश्या सिर्फ असमत बेचती है, और वाकई असमत बिक गई तो सब कुछ बेच जाता है। कोई सब कुछ बेच के अपनी असमत बेच देता है, कोई अपनी असमत बेच के सब कुछ बेच देती है। इसनु मैं फिर दोहरावा, कोई सब कुछ बेच के अपनी असमत बेच देता है, कोई असमत बेच के अपना सब कुछ बेच देती है। वैश वैशिया दोवें निकट ने, एक ही सिंघासन ते बैठने। कला बेचनी है, ज्ञान बेचना है, धर्म बेचना है, ईमान बेचना है, कथा बेचनी है, कीर्तन बेचना है। समा लंघ गया जब नजराने भेट आंदे सन, भेटा आंदी सी, नहीं मुल चाहिदा है। ते जद मुल चाहिदा है तो ज्ञान बिक गया, जद मुल चाहिदा है तो कीर्तन बिक गया, जद मुल चाहिदा है तो कथा बिक गई, जद मुल चाहिदा है तो धर्म बिक गया, सेवा बिक गई, ईमान बिक गया। मुल चाहिदा है, और जिसनु वड्डा मुल चाहिदा है बेच देगा इज्जत, बेच देगा असमत, बेच देगा शराफत, बेच देगा अपना विश्वास, सब कुछ बेचेगा। वैश नाल धर्म नहीं चलता। श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही। अफसोस नाल धन गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे ने, सारी सृष्टि इंज कह लो बहु गिणती देच वैश हो गई है, धर्म व्यापक पद्धर ते नहीं चल रहा। ओया किसे एक कद मनुख नाल चल रहा है, हजारां च लखां च कोई एक कद, तो ये कोई बहुत गिणती नहीं। सारा संसार लोभी हो गया है, लोभी धार्मिक नहीं हो सकता, लोभी पुनीत नहीं हो सकता, लोभी पापी हो सकता है, पुनीत नहीं हो सकता, दानी पुनीत हो सकता है, लोभी पुनीत नहीं हो सकता। लोभी ते पापी है, दानी पुनीत है, लोभी पापी है, तो पाप व्यापक हो गया, पाप छा गया। पाप ग्रासी पृथ्वी, धौल खड़ा धर हेठ पुकारा। जब पापियां नाल धरती भर जाती है, भाव लोभियां नाल भर जाती है, तो एक दफा ते जमीन दे जर्रे भी पुकार उठते ने, हे प्रभु रहमत कर, बख्शिश कर, पापी ही पापी
पापी ही पापी। सब कुछ बेचण लई तैयार ने और सब कुछ खरीदण दे खरीदार भी मौजूद ने। बाजार बन गया सारा संसार, बाजार बन गए मंदिर, बाजार बन गए धर्म सतल, बाजार बन गए तीरथ। सनातन मत दा सिरमौर तीरथ बनारस। शिवा ने वसाई सी, एक महान योगी ने, एक महान तपीश्वर ने। तपीश्वर पैदा होवन, संत पैदा होवन, जोगी पैदा होवन, ध्यानी पैदा होवन, ज्ञानी पैदा होवन, ये नगरी वसाई। पर इस नगरी रिच लोभी आ गए। लोभी जिथे कठे हो जान, लोभी लंपट आंदा है, ठग आंदा है। लोभी दे अंदर अनेकां लहरां चलदियां ने लैण दियां, लिहाजा लोभी हर पासे लंपट पड़ा फैलांदा है। तदी ते मेरे पातशाह ने कहा, हे लोभा लंपट संग सिर मोरे, अनकलेरी कलोलते। लोभी स्वयं भ्रष्ट होंदा है, सब कुछ नु भ्रष्ट करके रख देंदा है। लोभी तीर्थां नु मंदिरां नु बाजार बना के रख देंदा है और बाजार विच ते ठगी चलदी है। बाजार ते ठगी दा चोली दामन दा जो है साथ है। ये लोभ इस दे कारण करके जीव पता नहीं कितनी थावां ते भरमदा है, भटकदा है और उसका मन डोलदा है और हर जगह नू भ्रष्ट करदा है। हर वक्त लैण दी बिरती, लैण दी बिरती, लैण दी बिरती। लोभी दे नाल हर वक्त बाजार चलदा है, बाजार विच मनुख कुछ लैण लई जांदा है। लेकिन लोभी नू ऐसा बाजार चाहिदा है, लैणा ते सब कुछ है और सब दे कोलो लैणा है, बदले विच देना कुछ भी नहीं, ऐसा बाजार चाहिदा है। इस तरह दा बाजार लोभी हर वक्त अपनी कल्पना दी दुनिया विच बनाई रखदा है। लिहाजा लोभी दे नाल ही बाजार जांदा है। लोभी जिथे बैठा है उथे ही बाजार है, चाहे वह हरी मंदिर बैठा है, चाहे गुरुद्वारे बैठा है, चाहे खाना काबा विच बैठा है, चाहे चर्च दे विच बैठा है। लोभी तां बाजार विच बैठा है, वो किधरे मंदिर विच नहीं बैठा, वो किधरे गुरुद्वारे नहीं बैठा, किधरे चर्च ते मस्जिद विच नहीं बैठा। लोभी जिथे भी बैठा है बाजार विच बैठा है। लोभी जिधर चलदा है बाजार नाल चलदा है, लोभी जिधर चलदा है ठगियां उस दे नाल ही जो है चलदियां ने। फिर सतगुरु देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक विच इन फरमान करदे ने,

है लोभ, हे लोभ, तैनु मित्र दिवी शर्म नहीं, तो मित्र नाल भी ठगी कर दें। तेनु इष्ट तो भी संकोच नहीं, तो इष्ट नाल भी ठगी कर दें। तू संबंधियां तो भी शर्म नहीं खांदा, तो उना नाल भी ठग गया कर दें, उनानु भी धोखा देना है। नच मात पिता तव लज्जया, तेनु मां बाप दी भी लज्जा नहीं, तू ते उना नाल भी ठगी करदा है, तू ते उना नाल भी धोखा करदा है। पातशाह दा फरमान, लोभी का वेसाना कीजे जे का पार वसाए। लोभी ते भरोसा औखा है, और आज दे युग दे चूंकि लोभ प्रबल है, प्रधान है, भरोसा उड़दा जा रहा है, उड़ गया है, या किधरे कोई भरोसा करदा है, विश्वासघात होंदा है, उस दे भरोसे नो बहुत वड्डी सट लगदी है। लोभी नो मेरे पातशाह ने कुत्ते नाल कूकर नाल तशबीह दिती है।

भख अभख सब खाए। लोभी ते कुत्ते दी तरह है, हर थां ते मुंह मारना, हर वक्त मुंह मारना, करंग विच मुंह मारना, हड्डी विच जो है मुंह मारना, और दूजे ने मुंह मारना देना, दूजे ते भौंकना, ये लोभी दी मनोवृत्ति है। इसका एक सुंदर चित्रण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री राग के एक शब्द विच बड़े सुंदर ढंग नाल कीता है। एक स्वान दोए स्वानी नाल भल

अजित सूर संग्राम अत बल नाम बहुमर्दने गण गंधर्वे देव मानुखं पशुपंखी विमोहने हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वरे ज्ञान दे अथा सागर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिस विच परमात्मा दे गुण ते उस दियां शक्तियां दा बड़े सोहने ढंग नाल वर्णन है लेकिन नाल नाल मनुख दियां कमजोरियां मनुख दे अवगुण इन्हां दा भी निखेड़ा कीता गया है ताकि मनुख नूं अपनियां कमजोरियां दा पता चल सके। आखिर ऐसा की है जिस करके परमात्मा नहीं मिल रहा? वो गुणा दा सागर है, मनुख अवगुणा दा सागर है। परमात्मा दे गुण नहीं गिने जांदे, मनुख दे अवगुण भी गिनने औखे ही ने। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे। उंज ते अनंत अवगण ने अनंत अवगण ने, पर मूल कमजोरियां मूल अवगण मनुख दे पंज ने जिन्हां नू इस तरह गणित दे च लियाया जांदा है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी संस्कृति श्लोक इन्हां पंज कमजोरियां नूं बड़े सोहणे ढंग नाल उजागर करके मनुख नूं दर्शाउंदियां ने कि तुम इन्हां अवगुणां नूं गुणा दे जमतना है। सतगुर मोह तो आरंभ कर देने, मोह मेरा जो मेरा है उस नाल पकड़ हो जाती है, उसे पकड़ नु कहंदे ने मोह। जो मेरा नहीं उस नाल मोह भी नहीं, उस नाल पकड़ भी नहीं। जो मेरा है उसनु थोड़ी जी भी चोट लग जाए, खराश लग जाए, टूट भज जाए, तड़प उठती है आत्मा, चीख उठता है मनुख। लेकिन जो मेरा नहीं, जिस विच पकड़ नहीं, जिसका मोह नहीं, चाहे कल बर्बाद होंदा आज हो जाए, कल मिटदा आज मिट जाए, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। घर विच एक बच्चा मासूम बच्चा बीमार पै गया है, सारा घर उदास हो गया है। मोह है, पकड़ है, मेरा है। लेकिन किसी देश विच किसी शहर विच महामारी करके सारा शहर बीमार पे है, कोई आ नहीं निकलती। क्यों? उस नाल मोह नहीं, वो मेरा नहीं, उस विच पकड़ नहीं। रत्ती जी वस्तु टूट भज जाए, नुकसान हो जाए, आह निकल जाती है। लेकिन बहुत बड़िया किधरे बर्बादियां हो जान अगर उस विच मोह नहीं, वो मेरा नहीं, तो कोई आह नहीं निकलती, कोई चीख नहीं निकलती,
कोई अफसोस नहीं होता। जो मेरा है, जिस विच मोह है, आज नहीं तो कल संबंध टूटेगा। मेरे खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, या जो मेरा है उसके खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। चाहे जो मेरा है वो टूटे या मैं टूट जावा, जिस विच मोह है वो खत्म हो जाए या मैं खत्म हो जावा, रिश्ता तो टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। बस इसी टूटने का दुख है, इसी टूटने का गम है। जो मेरा है उस विच मोह है, और जिस विच मोह है उस विच बड़ी भारी पकड़ है, बड़ी भारी पकड़ है। पर कितनी भी पकड़ क्यों ना होवे, हथों ते छूटेगी ये वस्तु, ये हस्ती, जो कुछ भी है, आखिर एक ना एक दिन ते हथों दी पकड़ ढिली होवेगी। जे पकड़ ढिली ना हुई तो जिसनु पकड़े है शायद वो ही मुर्दा हो जाए, वो ही ढिला हो जाए। आखिर ते संबंध टूटना है। दुख सारा मनुख दे कोल मोह दा है, मेरे दा है। और जितना मनुख मेरा मेरा करता है उतना ही मोह वध जाता है, और जितना मोह वध जाता है उतना ही दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये मोह व्यापक है, किधरे थोड़ा, किधरे बहुत, किधरे बहुत ज्यादा है। प्रथम मोह परिवार का, सहजे सहजे जैसे जैसे पता चलता है ये मेरा पिता, बच्चे नू जैसे पता चलता है ये मेरी मां, ये मेरी बहन, ये मेरा भरा, और जितना प्रतीत आंदा है मेरा है, मेरा है, मेरा है, उतना ही मोह वध जाता है, उतनी ही पकड़ वध जाती है। अगां चल के मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी धन संपदा, मेरी कुल, मेरी मान मर्यादा, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरा स्वप्न, मेरी जिंदगी, मेरे दा पसारा बहुत ज्यादा हो जाता है। मोह दा फैलाओ जितना वद्दा है, बस मनुख दा दुख भी उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है। मोह ग्रसा प्राणी चैन दी नींद सो नहीं सकता, कारण जिस नाल मोह है, जिस देते मेरे दी मोर लाई है, आखरे मोर मिटती है, जिस ते मोर लाई है वो भी मिटता है। बस इतों ही दुख है, इतों बेचैनी, इतों ही संताप शुरू हो जाते हैं। दो चार उदाहरण राही मैं स्पष्ट करने की कोशिश करा। मां बाप का इकलौता बच्चा गालवन पांच छह वरिया का गुम हो गया है, नहीं लभ रहा। मां दिया अखां हर पासे लभ दियां ने, पिता दे पैर हर पासे दौड़ रहे ने, दिल हर वक्त याद कर रहा है, अखां छम छम हंजू पियां वगंदियां ने। जीवन बहुत पीड़ा दे बतीत हो रहा है। जो मेरा सी, जिस च मोह सी, बिछड़ गया। सहजे सहजे विछोड़े दा दुख
बीमा पैदा गया। क्यों? कहते हैं समा सब कुछ नु पाट देंदा है, समा जख्मा नु भर देंदा है। बहुत समा लंग गया, आज 5 साल हो गए उस बच्चे नु गुम होया। अचानक आज किसे ने दर पे दस्तक दिती और उसने आके आख्या, थोड़ा जो बच्चा जो बहुत पहले किधरे गुम होया सी उसनु मैं देखे। जिस हार दी तुसी गल कहंदे सी वो हार उसते गल दे च है, आके देखो। खैर कुछ हो लिया, हार रंग रूप मेल खांदा वेख के प्यो ने सीने नाल लाया, मां ने अखां विच बिठाया। विछोड़ा मिलाप दे सुख दे च बदलिया, हंजू हास्यां दे च बदले, मुरझाना खेड़े दे च बदलिया, दुख सुख दे च तब्दील होया। 5 साल दा विछोड़ा मां ने ममता डुल डुल के डोली, प्यो ने प्यार दे मानो सागर उमड़ा देते। वेख वेख के मां दियां अखां रजदियां नहीं, प्यो दा दिल भरदा नहीं। पालन पोषण इस तरह चल रहा है, दिन लंघदे गए। बच्चा बहुत खुश, उसनु इतनी ममता मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है। ओ भी खेड़े च, ओ भी खुशी च, मां नु बच्चा मिल गया, प्यो नु पुत्र मिल गया, उन्हां दी भी प्रसन्नता। पर अज किसे होर ने आके द्वार ते दस्तक दित्ती, आख्या जिस बच्चे नु तुसी ले आयो ये थोड़ा नहीं, थोड़ा बच्चा ते मैं वेख्या वो होर है। इस बच्चे ने उसी बच्चे दे गल चो हार उतार के आप पाया है, आओ थानु दिखाइए। जद जाके मां ने वेख्या, प्यो ने वेख्या, हुलिया बहुत नेड़े मेल खांदा सी, आवाज मेल खांदी सी, चाल ढाल मेल खांदी सी। मां ने सीने चलाया, प्यो ने उंगल पकड़ी उस बच्चे दी, कर लिया है। नजरां जिस हुण लैंदे बच्चे ते टिकियां, पहले लैंदे तो नजरां फिर गईयां। हुण अखां विच ते उस लई था नहीं सी, घर विच भी उस लई मानो था नहीं सी। धारा मोह दी बदल गई, दूसरे बच्चे ते टिक गई। सारा प्रेम सारी ममता मां ते पिता दी इस नवे लैंदे बच्चे देते डुलन लग पई। पहला मायूस रहन लग पया, दुखी रहन लग पया। जैसे बूटे नु पानी ना दियो कुमलान लग पैंदा है, मासूम बच्चा ममता तो वांझा रह गया, प्यार तो वांझा रह गया, सत्कार तो वांझा रह गया, कुमलान लग पया। दूजा खिड़न लग पया, वधन लग पया, प्रफुल्लित होने लग पया। पहला लेंदा हुआ बच्चा इतना कुमला गया, इतना मुरझा गया, मुरझा के टूट गया, मिट गया, सुत्ता सुत्ता अबदी नींद सौ गया, हमेशा दी नींद सौ गया।
ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਹੋਕੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਏ। ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਮੋਹ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਹੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠੀ ਮਾਂ, ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਗਮਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਰਗੜ ਘਾਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਸ਼ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਪ, ਮੋਹ, ਦੁੱਖ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੇਰੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ, ਮੇਰੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ, ਤੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਥਿਆ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਯਕਸਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੜਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਹ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ

अत बलना बहुमर्दने। हे अजित, हे संग्राम दे सूरमे, हे अति बल रखण वाले, तू बड़िया बड़िया नू मर्दन करके रख दिता है, मल के रख दिता है। कीड़िया कीड़िया नू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गिनती करते हैं। गण गंधर्व देव मानखं पस पंखी विमोहने। बड़े बड़े गण गंधर्व चोटी दे संगीतकार, चोटी दे दौर्शक फिलोसफर विचारक देवते मानुक चंगे चंगे मनुक स्याणे मनुक गण गंधर्व देव मानुखं पस पंखी विमोहने। फिर ऐ मो तेरी लपेट दे पशु भी आ गए, पंछी भी आ गए, मानो सारा जगत समूह ब्रह्मंड ऐ मो तू अपनी गिरफ्त च लै लिया, तू अपनी पकड़ च लै लिया। बंदरी अपने मरे हुए बच्चे नूं भी सीने नाल लाई फिरदी है। सियाणे कहिंदे ने चीथड़ा चीथड़ा हो जाए, हड्डियां दा ढांचा हो जाए, चूरा चूरा करके गिरन लग पाए, तां भी बंदरी बच्चे नूं छोड़दी नहीं, सुटदी नहीं। जिन्ने चिर तक उसकी दोबारा कुखारी नहीं आउंदी, बच्चा नहीं आता, नहीं छोड़ती। इतना मो, इतना प्रबल मो, मेरा है, मेरा है। तो सिर्फ मनुख ही नहीं पशु पक्षी, सिर्फ मनुख ही नहीं दिव्य शक्ति रखने वाले देवते, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर गण गंधर्व संगीतकार सारे इसकी लपेट दे चुके, सारियां दा मर्दन करके रख दिता है। बचाओ किस तरह करिए। फिर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति च इन फरमान कर देने,

ਜੋ ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ। ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਜਦਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਔਰ ਆਖ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਬਚਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਬਦਬੋ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਮਹਿਕ। ਮੋਹ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਮੋਹ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਦਇਆ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਇਆ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਸੀਮਤ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਬਲੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ, ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਜਨਾਬ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਅਕਬਰ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਦਰਾਂ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਘਰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲੀਮ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਖਾਦਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਸਲੀਮ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੀ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ,
सब तो सुंदर है। खादमा, मैं ऐसा सोच रहे हैं, खुदा ने सलीम तो ज्यादा खूबसूरत किसी ने भी नहीं बनाया। हाथ जोड़ के खादमा कहन लगी, जहां पना ये हो ही नहीं सकता कि सलीम तो ज्यादा कोई खूबसूरत होवे, वो किस तरह हो सकता है। खुश होके प्रसन्न होके पंज मोरा खादमा दी हथेली ते टिकाइया। आखे खादमा तू एक काम छोड़, जा आगरे विच, जा आगरे शहर विच, लब कोई ऐसा बच्चा जो सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत हो गया। मैं तेनू भी माला माल कर देंगा, बच्चे दे मां बाप नू भी माला माल कर देंगा, दोहां दियां झोलियां भर देंगा। और मैं जानना चाहना कोई सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर मोहदा मारिया ये अकबर अपनी खादमा दे नाल इस तरह दियां गल्लां कर रहे हैं और कह रहे हैं, जा लब के लिया हुक्म मन खादमा चल पई। सवेर दी गई, दिन ढलदियां वापस आ रही है दबे हुए पैरां नाल, तरह तरह दी विचारां दी डुबी हुई गोद विच एक बच्चा लिया होया। सिद्धी अकबर दे पास आई, देख के अकबर खुश होया है, कोई बच्चा लिया ही है, इसकी गोद विच है। खादमा तू लियाई है ऐसा कोई बच्चा जो सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है? हां जहां पना मैं ले आई हूं। अकबर ने चद्दर एक पासे की थी, चीथड़िया दे चिलिपटिया होया एक करूप और मैला बच्चा खादमा दी गोद विच है। हैरान होके अकबर कहिंदा है, ए बच्चा किसना बच्चा है? जहां पना ये मेरा ही बच्चा है, मैं सारा आगरा शहर गांव आ रहा है, जहां पना इस बच्चे तो मैनु ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं दिसया। सच पूछें और मेरे जान दी बख्शी करें, ऐ जहां पना तेरा सलीम भी इसके सामने पिक कर है। कहिंदे ने नौकरानी दे इना बोला ने अकबर दियां अखां खोलियां। ख्याल आया मैं मोह दी नजर नाल सलीम नू वेख रहा, ये मोह दी नजर नाल अपने बच्चे नू वेख रही है। मोह करके सारे जहान नालों इस नौकरानी नू अपना बच्चा खूबसूरत दिखाई दे रहा है और मोह करके मैनू सलीम सब नालों सुंदर दिखाई दे रहा है। सियाणा सी आलम फाजला नू अपनी सभा विच रखदा सी, एकदम गल समझ दे चा गई, पकड़ दे चा गई। और ए असी रोजमर्रा दी जिंदगी विच देखदे आ, मनुख नू अपने औगणा नाल भी मोह हो जांदा है, किसी दे गुण भी उसनू चंगे नहीं लगदे। अपना करोप बच्चा भी महान है, यूसुफ है, लेकिन पड़ोसी का सुंदर बच्चा भी करोप है, बेमैनी है। तो स्वप्न उजागर करता है मोह, और यह स्वप्न बनावटी होता है, वक्ती होता है, आरजी होता है, और मनुख इसी चीज फसया रहता है। कदी कदाई
कोई मनुख प्रभु दी शरण प्रकट प्रभु दा चिंतन कर नाम दे गीत गांदियां गांदियां मोह दे पर्दे नूं परे सुटदा है निर्मोह हो जांदा है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मोह ग्रसे लई केवल उसका परिवार और उसके चों भी कुछ सदस्य उसके अपने ने बाकी ते सारे दा सारा पराया इतना वड्डा जगत ते वो परा होवे पराया होवे तो फिर ते मनुख भय दे च जीवेगा डर दे च जीवेगा दुख दे च जीवेगा इस वास्ते मोह ग्रसिया दुख दे च ते भय दे च जीवदा है सारा जगत अपना है प्रेमी लई सारा संसार अपना है तो निर्भय होके विचरदा है आनंद नाल विचरदा है सुख नाल रमण करदा है सब जो अपने ने मोह दी सीमा होंदी है निर्मोही असीम होंदा है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मोह ग्रसे लई केवल परिवार ही उसका जो है अपना है बहुत छोटी दुनिया होंदी है मोह ग्रसे दी जिसकी दुनिया छोटी उसकी अकल छोटी उसकी सोचनी छोटी उसकी समझ छोटी उसका सब कुछ छोटा बहुत छोटे तल ते जीवदा है मोह ग्रसिया मनुख और असीम तल ते जीवदा है निर्मोही कोई सीमा नहीं परमात्मा की कोई सीमा नहीं निर्मोही की कोई सीमा नहीं साढ़े देश दे एक ऐसा भी पुरुष होया है राजा सी स्वभाव किधरे मां बाप ने जन्म समय उसका ना रखा सी निर्मोह और वड्डा होके भी यही नाम पर चलत रहा निर्मोह राजा निर्मोह इतिहासक वार्ता है एक ऋषि ने जद ये ना सुने राजा निर्मोह हो नहीं सकता कठिन है औखी गल है तो परीक्षा लई चल पिया निर्मोह दे महलां दी तरफ जैसे महलां विच दाखल होया है राजे निर्मोह दी पटराणी मिली और इस ऋषि ने पूरा तौर तरीका पहले बनाया हुआ सी कि मैं स्पष्ट करना है तू मोह ग्रस्त है निर्मोही नहीं राजे निर्मोह का लड़का इधरे ऋषि की कुटिया च आया सी और ऋषि ने उस बच्चे नूं बिठा दिता आखिया जिन्ने चिर तक मैं ना आवां तू बैठी मैं थोड़ी देर दे चावना राणी नूं ए ऋषि कहिंदा है राणी तुमको अति विभक्त सुत खायो मृगराज हमने भोजन ना कियो तिस मित्र के काज हे राजमाता थोड़ा सुत थोड़ा लड़का राजकुमार शेर ने खा लिया मैं ते भोजन छड़ के दौड़े हां थानू ए खबर सुनाने वास्ते पर ए राणी राजे निर्मोह दी राणी उस असीम मनुख दी संगत च रह रह के उस असीम मनुख की पत्नी भी निर्मोही हो गई सी मोह तो उच्ची हो गई सी ऋषि नु कहन लगी पेड एक शाखा घनी पंखी बैठे आए ओ फूटी चीरी पई उड़ उड़ देश देश जाए पेड एक शाखा घनी पंखी बैठे आए ओ फूटी चीरी पई उड़ उड़ दे दिस जाए संसार एक वृक्ष की तरह है कई इस दियां शाखा ने कई मुल्क ने कई इलाके ने
और संस्कारा वे प्रालब्ध वश होके संजोग वश होके इना परिवारां दियां टहणियां ते आके पंछी बैठते हैं। मौत दा सूरज चढ़दा है, दरगाह तो चीरी पाटदी है, ये पंछी वारी वारी उड़ उड़ के अपनी दिशा नूं चले जांदे ने। ऋषि, ये कोई नवी खबर ते तू नहीं लेके आया, लेकिन रोज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा निजाम है, ऐसी बनतर है, ऐसी प्रभु दी लीला है। ऋषि दंग रह गया है। तप साधना करदियां करदियां थक गए, परिवार दे मोह दी दीवार अजे भी नहीं तोड़ सके, धन दे मोह दा पर्दा अजे भी बाकी है, जीवन दे मोह दी पकड़ अजे भी बाकी है। पर सोचदा है चलो उस नाल ते गल करिए जिसका ना ही राजा निर्मोह है, उन्हों तो वेखी है गया। राजसभा ऋषि दाखिल होया, आहो भगत की थी, दंडौत की थी, राजे ने सम्मान दिता, बिठाया, आन का कारण पूछया, ऋषि राज किस तरह पधारे, साढ़े इस घर नू किस तरह भाग लाए, इस राजसभा नू आके पवित्र कीता, आहो भाग साढ़े, कोई सेवा होवे ते दसो। ऋषि कहिंदा राजन बहुत दुख, बहुत संताप, बहुत माड़ी खबर राजन दसन लगे हैं, मेरी जबान लड़खड़ांदी है पर मजबूर हां दसन देवी। मुस्कुरांदे हुए चेहरे नाल राजा निर्मोह कहिंदा है, दसोरा राज ऋषि संत जन दसो। खड़ा होया ऋषि ते कहिंदा है, राजन तुमको अति विपत पल पल घड़ी घड़ी

फले पुत्र दी मड़ी लाश मेरे कोल है। शेर ने हमला करके उसनु जख्मी किया है, मार दिता है, उदी लाश मेरे कोल पई है। बस यही संदेशा देने वास्ते मैं थोड़े कोल आया, थानू दसन लई आया। राजा निर्मल प्रसन्न चित होके प्रसन्न मुद्रा विच हसदिया होया कहिंदा है, तपिया तप क्यों छाड़ियो, यहां हरख नहीं सोग।

असीते काफी समय तो समझी बैठे हैं सरां है, एक आउंदा है एक जाउंदा है, एक फूल खिलदा है एक मुरझा रहा है, एक फल फूल चो निकल रहा है एक फल डिग रहा है, एक तारा उभर रहा है एक टूट रहा है। इत एक प्रभु दी लीला समुची सरां देच ये आवागम बने होया है और इत्थे सारे मुसाफिर ने, असी भी मुसाफिर, असी भी एक दिन रुखसत हो जावांगे। ये कोई नवी गलती नहीं, पर मैनू दुख है अफसोस है, ए ऋषि तू महान कार्य जो तप कर रहा सी तप क्यों छोड़िया, इस फोके संदेशे लई तू अपनी तपस्या क्यों छोड़ी, तपिया तप क्यों छाड़ियो, यहां हरख नहीं सो, ऐ तपीश्वर तू तपस्या क्यों छोड़ी। जितने सौखे ढंग नाल एक गल राजे निर्मव दी बयान कीती जा सकती है, जीवन विच धारना उतना ही कठिन, उतना ही कठिन, उतना ही कठिन। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लखते जिगर अजीत सिंह जुजार सिंह कोल बैठे ने, गड़ी नू चारों पासे दुश्मना ने घेरे है, सतगुरु अजीत सिंह नू तैयार कर दें, होर सिखा नू नहीं कहंदे किधरे, इतिहास ए इल्जाम ना ला देवे अपने बच्चे बचा ले सिख मरवा ले, नहीं अजीत सिंह नू तैयार कीता है। और सतगुरु उसनू जो कुछ कहंदे ने, अला यार खां जोगी ने इंज कलम बंद कीता है, ऐ मेरे बच्चे एक ख्वाहिश है मेरी तू पूरी कर, अजीत सिंह हाथ जोड़ के कहंदा है, गुरुदेव पिता तुसी सारियां दी ख्वाहिशां पूरी करन वाले, असी की थोड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, नहीं तू ही पूरी कर सकता है, हुक्म गुरुदेव पिता ताबेदार। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, बस इतना ही नहीं, पूरी गल सुन, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें, होनहार साहिबजादा अजीत सिंह हाथ जोड़ के कहंदा है, नाम का अजीत हूं जीता न जाऊंगा, जीता गया तो हार के जीता न आऊंगा, स्वयं श्रृंगार के शस्त्र पहना के सतगुरु भेजते ने अपनी अखां दे सामने, शहादत दा जाम पींदे आया दोवें लखते जिगरां नू देखते ने, शुक्र करते ने परमात्मा का, ईश्वर का, अकाल पुरख का, असीम प्रेम की दुनिया च जीण वाले धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ना ताज का मोह, ना तहत का मोह, ना परिवार का मोह, ना संसार का मोह, केवल प्रेम अकाल पुरख का,
प्रभु चिंतन दे नाल उसकी याद दे नाल मोह प्रेम बन जाता है और प्रेम ईश्वर का रूप है। जत्र तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। पर साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति और आपका मूल फरमान साच कहो सुन ले हो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मोह सीमित है प्रेम असीम है। संसार दी सीमा है मोह ग्रसे दी भी सीमा है। निरंकार असीम है प्रेमी असीम है। जैसे कोई त्रह त्रह प्रभु दी शरण विच जांदा है आसरा पकड़दा है अरजोई करदा है अरदास करदा है और उसकी याद विच डुबदा है मोह प्रेम बन जांदा है। फिर कुछ भी चला जाए कुछ भी आ गया है ना हरक ना सोग प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम।

मित्रं तजन्त सतरं दृणन्त अनिक माया विस्तीरने आवन्त जावन्त थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे भरम भ्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगणे

0: 하루 하루 하래.
1: 뭐는 그디냐? 뭐네 아들이 뭘 검소리냐 대처? 바르벌 검소리 아흥가리 아흥 매하 जिन्ने चिर तक ये मैं रहती है, ये अहं भाव रहता है, उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहता है। ये जन्म ते मरण दा मूल है, ये जन्म ते मरण दा कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, हमें एहा जात है, हमें कर्म कमाए, हमें एही बंदना फिर जौनी पाए। हमें दा स्वभाव है, मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आशत, चाहे वो कर्म धार्मिक ने, चाहे वो कर्म सामाजिक ने, चाहे वो कर्म राजनैतिक ने। अहं मूल है, अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म विच, और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है, और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण, इस तरह अहं जन्म ते मरण दी बहुत ही लंबी यात्रा दे पा देंदा है, बहुत लंबे गेड़ दे पा देंदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पाप आत्मा अहंकार, तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख वख जीवां विच अपने अपने दोष पाए जांदे ने। जैसे असी वेखदे हां हाथी विच काम रोग प्रधान है, और पतंगे विच दृष्टि रोग, मच्छी विच रसना दा रोग, और इसे तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग। होमे रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना, दृष्टि रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गहे कुरंगा, हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ए रोग बंधन दा कारण बनदे ने, ए रोग दुख दा कारण बनदे ने, और मनुख दे सारे दुखां दा मूल कारण अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है, किधरे सूक्ष्म रूप, किधरे पदार्थां दा अहंकार, किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा दे प्रति कीते गए ने उसका अहंकार, किधरे इस जीवन दा अहंकार, किधरे उस परम जीवन दी प्राप्ति दे जो साधन ने उना दा अहंकार। मूल रूप विच ए अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है, जोवन जवानी स्वप्न दे आधार ते खड़ा होंदा है, और शक्ति सता ताकत इस दे आधार ते खड़ा होंदा है। जो बन धन प्रभ ताकै मद में, अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल दी तरह घूम रहा है। जोबन दी मस्ती विच, धन दी मस्ती विच और सता दी मस्ती विच। धन जेब दे चोवे या मन दी सोचनी दे चोवे, जोबन वंत होवे या जोबन दी चाह मन दे चोवे, सताधारी होवे या सता दा चिंतन अंदर चलदा होवे, दोहां हालतां च पागल हो जांदा है। सता पागल कर देंदी है, सता दा चिंतन भी पगला देंदा है। जोबन पागल पंदी सीमा तक ले जांदा है, पर जोबन दा चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन, धन जेब दे च है, धन घर दे च है या धन सोचां दे च है, विचारां दे च है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तभी पातशाह फरमान कर रहे ने, जोबन धन प्रभुता कै मद में, अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विच अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है, दूसरे नूं तुच्छ समझदा है। आपस को दीरग कर माने, औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना, मैं देखे दोजक जात। हर एक नूं छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे, चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नूं महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद, अंदर शुमार जर्रास्त, जिस दी महफिल देच खुर्शीद, ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिया रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद, अंदर शुमार जर्रास्त, खुद रा बजुर्ग दीदम, शर्ते अदब नवाशद। उस महफिल देच तू अपने आप नू आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हां, जिथे सूरज भी एक निक्के जिया जर्रे वर्गा है, इस दी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू दा महान शायर इसनु एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म, मैंने ये दर्स पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान, इलम दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है, और कई गुणा उस तो वद अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है, जो इलम है वो अमल देच नहीं, और ए अहंकार मूर्खता दे खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है, ज्ञानी भी अज्ञानी समझो, अगर अहंकारी है। भगत शर्मौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं,
0: हम बड़े कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभे ननासी कह रविदास सभे नहीं समझसे, भूल परे जैसे बोरे।
1: इत सारे भूल के पागल होए फिर देने कौन, हम बड़ कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान, बस यही जहालत लई फिर दी। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कवे नानासी, मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहिंदे ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होंदा है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंदा है, क्योंकि औगुणा दे आसरे ते अहंकार नूं अस्थूल रूप धारण दा मौका नहीं मिलदा। इह गल वखरी है कि मूरख गुण ना होंदिया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता, उसनों इतना बोझल नहीं करता। यह गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करंत, इक ना नाद ना वेद। एक हद नू न किसी प्रकार की विद्या, न संगीत का ज्ञान, गे रस रस कस ना जान, एक ना सुरत ना सिद्ध, अकल सिर अखर का भयो ना लहन। अक्षर का कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा, संगीत का कोई बोध नहीं, किसी धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करंत, असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी फिर देने। पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार, प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा होंदा है, और अहंकारी दियां अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप देच अहंकार दी प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहंदे ने चलत कत टेडे टेडे, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता, अगर सीधा चले तो उसकी चाल दा पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगां दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा दी निगाह थले आ जावा, अहंकारी चाहता है सारियां दियां निगाहां मेरे ते आवन, सब मैनू ही देखन। चलत कत टेडे टेडे, अस्त चरम बिस्टा के मुंदे, दुर्गंध ही के बेडे, तू है कि हड्डियां हड्डियां दे चढ़े होया मांस, मांस देते चढ़ी हुई चर्बी, और चर्बी देते लिपटी हुई खलड़ी, और की है तू। हड्डियां दा माण, जोबन जवानी दा माण, हड्डियां दा माण, मांस दा माण, मिंज दा माण और खलड़ी दा माण। इस तो इलावा और है कि एक आया ते इतनी नापाक है, कोई भी पवित्र चीज इस नल छू जाए मैली हो जाती है। और इस काया दा अहंकार धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, कर्पूर बहुप सुगंधा परस मानक देहंग मलीनंग, मजार उदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञान नड़ो। कपूर ते चंदन जैसियां फुलना जैसियां पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नाल छूंदियां स्पर्श करदियां मैलियां हो जांदियां ने। मजार उदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञान नड़ो, है कि दुर्गंध खून मिंज मांस खलड़ी अज्ञानी एवें तन दा अहंकार करदा है, जो बंदा अहंकार करदा है। फिर धन दा अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे, जा सब किछ तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने धन किथे, उस दे वसाहल नाली सब कुछ प्राप्त होंदा है। और सब तो वड्डा वसीला है ए तन, और तन उस दी देन है, ये दिमाग उस दी देन है, और ये तन ते मन दे आसरे ते तू धन कठा कर लिया, तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार सता प्रभता, इसदा अहंकार अगा चलिए ता अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिदा है। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठन लई बनाईदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के ये प्रसन्न बड़ा होंदा है, क्योंकि जगत तो जस मिलदा है, जगत तो मान मिलदा है, वो मान इस दे अहंकार नू होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखण दे चाया है धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है। हुण त्याग दा अहंकार सता कोल है, सता दा अहंकार सता दा त्याग कर देता है, हुण त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखण नूं मिलदा है, पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है, उस त्याग का अहंकार। अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है, और अहंकार तो बचना औखा। जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नूं बिठाण लई बनाने हां अहंकार बैठ जांदा है। दान दा सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, अहंकार आके बैठ जांदा है। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राही रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता, ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इसते भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नू दूसरे तुच्छ प्रतीत होंदे ने, अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचता है उदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है मैं ही निरंकार दावा कीता सी हरनाकश ने, मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा, दावा कीता सी नमरूद ने मैं हां खुदा, कौन होंदा है खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नूं भी मनन नूं तैयार नहीं, इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर, और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु

अहंकार दिए। इंज कह लईए यात्रावां ते दोई ने, अहंकार दी यात्रा निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ आउंदी है तों है तों है तों है तों है। अहंकार दी यात्रा आरंभ आउंदी है मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां, ये जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है तू है तू है, ये जन्म मरण नूं मिटा के प्रभु का रूप बना देंदी है। बूंद सागर दे लीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते ने तू तू करता तू भया मुझ में रहा न जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू तू है तू है तू है। इस बिरती ने इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पछानी। तू है तू है तू है, इसने भगवान का रूप बना दिता। मैं हां मैं हां मैं हां, ये शैतान का रूप बना देता है। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसते रोम रोम देच, जिदियां सारियां क्रियावां देच भगवती प्रदर्शित भगवती नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रगट हो रहे है। श्री रविदास सही कह रहे ने, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही। जद मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं। ये तू ते मैं दोवें इकों सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान, हौमें नावें नाल विरोध है दोए न वसे इक ठाए। ये मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां मैं हां, उदी सारी भज दौड़ उदी सारी क्रिया उदी सारी तपस्या उदी सारी मेहनत, ये किस कारण हो रही है मैं। पर विनम्र मनुख दा संत दा सब कुछ तू आसरत है, तू ही है तू ही है तू ही है। उथे मैं दी कोई चिंगारी नहीं रहिंदी जिस विच गुण भस्म हो जांदे ने। बस तू ही तू ही तू ही। एक आलम दा कहना है अज रहा चुनार कि सलामत न कुनत। इस ढंग नाल चल रस्ते देच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकड़ के ना चल। बा खलक चुना जी के कयामत न कुनत, खलकत देच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश ना खुआनंद ओ इमामद न कुनत। जे किधरे इबादत करनू तेरा जी करे तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं। ऐसा ना होवे कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़दिया मस्जिद दे च भी तू कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदरां दे च भी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने, ते प्रधान ते परमात्मा है। या फिर जिस दा मिट गया है सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान सा

संग जांका मिटे अब मान, जो संगत दे चरना दी खाक हो गया मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनदा है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है शायद उसनु मखलूक दे कदमा दे च भी जो है था ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठन दी कोशिश करदा है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे उत्ते ही हुंदे ने। सारी राजनीति सारी सता अहंकार आश्रित है और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठदा है। कई दफा सिर हिल जांदे ने ते थल्ले गिरदा है। इस वास्ते कहंदे ने गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगां दे सिर झुकाना चाहंदा है एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जांदा है। अहंकारी शर्मसार होके रह जांदा है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नूं तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक है, यह धार्मिक साधना नूं भी अपना सिंघासन बना देंदा है। बैठना सी उसते प्रभु ने आप बैठ जांदा है।

ते ज्यों कुंचर इसनान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जांदी है। हे जनम मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजन्त सतरं दृणन्त अनेक माया विस्थिरने। एह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने दी तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंहों ना निकलदा है, अहंकारी हां नहीं कर सकदा। जब सारा माहौल ही ऐसा होवे और हां कहण दी सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़दा भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होवे उतना ही जबान ते आ जांदा है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहुंदा है मैं तैनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच ते भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हां कहना ही भुल गए। हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दित्ती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला दईए, ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बढ़ती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रंग तजंत सतरंग दृणंत अनेक माया विस्तीर ने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्थार होंदा है, इसके दुश्मन ही वधदे ने। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहंदे ने, दरख्ते दोस्ती बानिशां के कामे दिल बबारा रद

उस आंत देचो सोटे दी जरब नाल निकल रहे है तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही कोई इतनी कुर्बानी करे साधना करे ते साधना विच लीन मनुखां दी कदमां नू खाक ते अपने मस्तक नू रगड़े श्वास श्वास वाहिगुरु वाहिगुरु जपे ताई ये मैं तों देच बदल दिए जीवन धन धन हो जांदा है महान हो जांदा है। अहंकारी उस्तत अपनी करेगा निंदा दूसरे दी करेगा। अगर दूसरा वड्डा है तो अहंकारी लाजमी निंदा करेगा। अहंकारी निंदक हो ही जाएगा। उते प्रसन्न होंदा है अपनी उपमा सुन के उपमा होण लग पई है दूजियां दी तीसरे दी मित्र दी तो हुण इस कोल होंदी है निंदा। निंदा दा मतलब की है गल नू छुटियाना और अक्सर मनुख उसे दी ही निंदा करदा है जो किसे गल देच उस नालों अग्गे होवे गुण देच कला देच ज्ञान देच शील संजम देच या फिर प्रभु दी बंदगी देच या संसारी तल ते ले लो सता देच धन देच स्वप्न देच किसे भी पख तो जो अग्गे है अहंकारी उसकी तारीफ नहीं कर सकता। अहंकारी सच नो सच नहीं कहेगा। अहंकारी निंदा करेगा और अहंकारी बड़ा प्रबल निंदक होता है। छुटियाण की कोशिश करता है घटाण की कोशिश करता है। भगत नामदेव जी उन्हां दी तपस्या इतनी इतनी परमात्मा उन्हां दे सन्मुख होया है प्रभु सामने होया है लेकिन हंकारी ब्राह्मणा ने मार मार के मंदिर चो कढ़िया है और मंदिर दे पिछवाड़े बिठा देता है। मारे है कड़े है ये बिचारा मंदिर दे पिछे बैठ गया। पहले थे मूर्ति दे सन्मुख सी मूर्ति नामदेव दे सन्मुख सी पर हुण पिछे। पातशाह दी बाणी कहंदी है अहंकारियां निंदकां पिठ दे नामदेव मुख लाया। अहंकारी निंदक होंदा है और निंदक ते अहंकारी दी तरफ परमात्मा दी हमेशा पिट होंदी है। जो गुणा दी सिफतों सलाह करदा है वो ते परमात्मा दी सिफतों सलाह करदा है। गुण किसे मनुख दे च भी प्रगट होए ने तो गुण ते सारे परमात्मा दे ने। गुणा दी तारीफ परमात्मा दी तारीफ है पर वो ते निंदा करदा है गुणा दी निंदा करदा है क्योंकि अहंकारी है तो परमात्मा दी पिठ हो जांदी उसकी तरफ। और जिस मनुख दी तरफ परमात्मा दी पिठ हो गई है सब दी पिठ हो जांदी है। और अहंकारी बहुत दुखां दे दलदल दे जाके फसदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज फरमान करदे ने आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे ऐ अहंकार तेरे करके ए जीव जमदे ने मरदे ने आउंदे ने जांदे ने दुख भोगदे ने सुख भोगदे ने थक जांदे ने टुट जांदे ने। ऐ अहंकार तू ते तोड़ के रख देना कईयां नूं

ये बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उस दे हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान देच कोई रमण कर रहा हुए, भ्रमण कर रहा हुए, क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते ने और अहंकारी कल्ला रह जाता है। और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान देच भयानक जंगल देच मनुख तनहा रह गया हुए। असाध रोग है, किसे वैद को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति देच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान कर देने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन परमात्मा, केड़ी दवाई है उसके कोल, बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लबनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसे मां है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हुण जे किधरे अंदरों निकले तू इते औषधि हो गई। मैं इते रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने, इसकी मर्जी है रोग नू वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही, प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। इन तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज का यह फरमान, ये वाक प्रेरणा दे रहा है, जे रोग अंदर है तो वैद भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो उस औषधि का सेवन कर

सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। काल जाल जम जोह न साके सच का पंथा थाट्यो। सतगुरु की बाणी का फरमान हुण काल दा जाल सानू वेख नहीं सकता। काल दी फाई साडे ते पै नहीं सकदी। क्यों? असी सच दे मार्ग ते चल पए, असी सच दा पंथ बना लिया, असी सच दे राही बन गए। काल जाल जम जोह ना साखे सच का पंथा थाट्यो। काल समा अकाल समय तो रहत, फाई समय दी है, जाल समय दा है। मनुख वक्त दी गिरफ्त दे च है, मनुख समय दे बंधन दे च है, और समय दे प्रभाव हेठ जी रहे। वक्त समा काल मनुख तो जो चाहता है कराही जा रहा है, कराही जा रहा है, कराही जा रहा है, और ये सब कुछ मनुख काल दे जाल दे च फस के ही कर रहा है। इंज कह लो बंधन दे च है। समय दा बोध होंदा है दिन करके रात करके। ठहर जाए दिन तो समय नु नापना औखा होवेगा, ठहर जाए रात तां वी समय नु नापना बड़ा औखा होवेगा। दिन ते रात दी ए गर्दिश समय नु नापण दा जरिया बने, समय नु समझण दी एक प्रेरणा मिली दिन तो रात तो। लेकिन रात अपना एक बंधन लेके आउंदी है, दिन अपनियां बेड़ियां लेके आउंदा है। रात अपनी जाल लेके आउंदी है, दिन अपनी फाई लेके आ जांदा है। शायद इसे वास्ते ते पातशाह ने फरमान कीता, जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाई देती। दिन आया है एक जाल दी तरह, रात आई है एक जाल दी तरह, ते दिन ते रात दियां जो सठ घड़ियां ने ते सब फाइयां ने। रस रस चोग चुगे नित फासे छूट समोड़े कवन गुने। ए मूर्ख किमें छुटेगा, समा तेरे कोल कराई जा रहे है, और इस सब कुछ तो इस तरह करदा पे है जैसे फाई दे च फड़िया कोई पंछी फड़फड़ांदा, जैसे जाल दे च फड़िया फसिया होया कोई पंछी फड़फड़ांदा तड़पदा है। तो इस तरह मनुख दिन नू तड़प रहे है, रात नू तड़प रहे है, जो कुछ कर रहे है बंधन ही बंधन, जो कुछ कर रहे है मजबूरी ही मजबूरी, समा खिंच के इस तो सब कुछ कराई जा रहे है। इस वास्ते भारत दा धार्मिक अध्ययन करता, धर्म की गहराइयां च जान वाला, उसने परमात्मा नु एक नाम दिता है अकाल। परमात्मा दी दुनिया च समा नहीं है, वक्त नहीं है, उत्थे वक्त है ही नहीं।
संसार काल है, निरंकार अकाल है। जो संसार विच जी रहा है, काल विच जी रहा है, और जो अकाल नाल सुरत जोड़ बैठा है, उसे संसार तो उच्चा उठ गया, काल तो उच्चा उठ गया। विद्वाना ने समय दियां तीन धारावां मनियां ने, समय नो तीन हिस्सों विच वंडिया है, भूत, भविष्य, वर्तमान, माजी, हाल, मुस्तकबिल। मनुख जी रहा है समय दियां इन्हां ही तीन धारावां विच। जद मनुख कहिंदा है मेरा मन टिक नहीं रहा, तो किथे चला गया? चला गया भूतकाल विच, चला गया भविष्य विच। मनुखी मन दी आदत है कदी भविष्य दी चिंता विच जीवना, कदी भूतकाल दियां यादां विच जीवना। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दा पिछोकड़ बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दी जीवन यात्रा पिछोकड़ बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। एक धमाका होया सी ब्रह्मंड दे, एक शब्द होया सी, फिर धुंध बनी, पानी बनिया, ठोस जीवन बनिया, वनस्पति, पशु, पक्षी, सहजे सहजे ए विकास चलदा रहा। अनंत काल तो बाद ए जीवन मिलिया, जिसनु मनुख कहंदे आ, तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। क्योंकि असी कदों तो हाँ ये नाप ही नहीं सकते। बल्कि भाई साहब भाई नंद लाल ते ऐसा कहंदे ने, नबूद हेच निशान हांजे जमीनो आसमा, कि शौके यादे तो अवर्द दर वजूद मरा। जमीन ते आसमान दा नामो निशान नहीं सी, नहीं सी। हे गुरु, हे प्रभु, मैं ते उदों दा यात्रा दे छां, पड़ाव ते बड़े आए, मंजिल नसीब नहीं हुई। रस्ते च वक्ती विश्राम करन लई थावां ते आईयां, सदीवी सुख, सदीवी विश्राम, ओ ते मंजिल ते लबना सी, मंजिल ते मिली नहीं। तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भविष्य नु बहुत लमकाया जा सकता है, बहुत लमकाया जा सकता है। मनुख दियां इच्छावां, मनुख दियां वासनावां, मनुख दियां कामनावां नु नापिए तोलिए, इन्हां कामनावां विच ते सैकड़े नहीं लखां जिंदगियां जीवियां जा सकदियां ने। इतनी कामना, इतनी इच्छा, इतनी प्रबल वासना, इतनिया ख्वाहिशां, ये इस छोटी जी जिंदगी लई बोझ ने, बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। जिंदगी छोटी, ख्वाहिश बहुत लंबी, बहुत लंबी, बहुत लंबी। जीवन सीमित है, कामनावां सीमित नहीं ने, वासनावां सीमित नहीं ने, असीम ने। जीवन सीमा विच कामना असीम, वासना असीम, इच्छावां असीम। इस वास्ते मनुख नूं समा चाहीदा है, अस्थान चाहीदा है। तो भविष्य बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। एक तीसरा समय जिसनु कहंदे ने वर्तमान, वर्तमान कितना होवेगा, वर्तमान नु किस तरह नापिए। असीम है,
भूतकाल, असीम है भविष्य, और मनुख इन्हां दोहां विच जीवदा है। जैसे पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहंदे ने, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। जो समा लंघ गया उस दियां यादां मेरियां हड्डियां खा रहियां। जो समा आण वाला है उहदी चिंता मैनूं जला रही है। भविष्य दी चिंता जला रही है, भूतकाल दियां यादां खा रहियां ने। इंज मनुख कदी भविष्य विच जल रहा हुंदा है, कदी भूतकाल विच खाया जा रहा हुंदा है, मिटदा जा रहा है। वर्तमान एक इन्ना क है, वर्तमान बहुत छोटा है। वर्तमान दी सीमा है, इस वास्ते वर्तमान विच कोई जीवदा नहीं, और वर्तमान दे जो टिक गया उसे नू योगी कहंदे आ, उसे नू असी संत कहंदे आ, उसे नू असी भगत कहंदे आ, उसे नू ही आत्मदर्शी कहंदे आ। पर फिर भी ना पिए वर्तमान किन्ना क है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल इस नू नापदे ने, वर्तमान किन्ना कह। यकदम बखेशरा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। वर्तमान ते एक दम है, एक दम एक क्षण एक सेकंड एक दम, ये एक दम जो मोह दे च है नकद है, कोल है नकद है। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं, मिलने ने कि नहीं। भूतकाल दम खर्च हो गया, दम ते लंग गए, उते वर्त ले, उते खर्च हो गए। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं, नकद ते है ओही दम जो मुंह देच है। यकदम बहे शरा न बुरदम के कीसतम, एक दम दी मैं विचार ना कीती, एक ही है। दम दम करके मेरी जिंदगी रायगा चली गई, व्यर्थ चली गई। यकदम बहे शरा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। एकदम जो नकद से इन मैं खर्च कीता, गुजरे हुए दमा दी याद दिच, खर्च होए दमा दी याद दिच। एकदम जो मेरे मुंह दिच सी वर्तमान नकद, इन मैं बतीत कीता आने वाले दमा दी चिंता। तो इस तरह यादां भूतकाल दियां, चिंतावां भविष्य दियां, वर्तमान विच ते कोई जीवदा ही नहीं, वर्तमान है एकदम। शायद इस वास्ते ही दुनिया भर दे महापुरुषां ने कहा है, परमात्मा जद मिलदा है एक क्षण विच मिलदा है, एक क्षण वर्तमान, एक सेकंड, एक चित्त जै एक छिन ध्यायो काल फास के बीच ना आयो। टुकदम करारी जो करे हाजर हजूर खुदा है, उस दम दे ची अपने आप नू रोक लवे। वो एक दम जो नकद है उस ते विच ही मनुख बैठ जाए,
حاضر حضور خدا ہے. اسے نے مہان صوفی سنت بابا فرید نے انج بیان کیتا ہے، آج ملاوا شیخ فرید تاک مکونجڑیاں منو مچندڑیاں، جس نال من مچھردا ہے جے تو کدرے روک سکیں، جے کدرے بھوت کال دیاں یاداں نو مٹا سکیں، جے کدرے بھوش دی چنتاواں نو تو جلا سکیں، ہنے ہی خدا تے پرگٹ، پربھو تے پرگٹ. پر ورتمان وچ پہنچن لئی تے بڑی سادھنا، بڑی تپسیا. ورتمان دے چی بھگوان پرگٹ ہوندا ہے، ورتمان دے چی پربھو دی جھلک مل دی ہے. شاید اسے واسطے مہان دارشنک اور گرمت دے مہان گیاتا تتویتا برہم گیانی بھائی صاحب بھائی گرداس جی، انہاں دا فرمان ورتمان وچ ورت دا ہوونہار سوئی پروانا. گرمکھ تے ورتمان وچ جیوندا ہے ایک چھن وچ، اور اس وچ جو کچھ ہو جائے ہو گیا ہے قبول پروان، اور جو ہو گیا قبول ہے پروان ہے. سمجھ لو یہ جو ہو گیا اس تو اچھا اٹھ گیا، یہ سنسار تو اچھا اٹھ گیا، کیونکہ سنسار وچ دکھ ہے سکھ ہے، ہاسے نے رونے نے، جنم ہے مرن ہے، نفع ہے نقصان ہے. سنسار وچ عزت ہے بےزتی ہے، تندرستی ہے بیماریاں نے، سوپن ہے کروپتا ہے. اچھا اٹھ گیا ایک دم وچ، جد ٹکیا تو ایک پرگٹ ہویا دو مٹ گئے، دو مٹ گئے سنسار مٹ گیا، ایک پرگٹ ہو گیا نرنکار پرگٹ ہو گیا. تو ایک دم وچ ہی پرگٹ ہو گئے گا. بہتے دم جو خرچ ہو گئے نے انہاں دی یاد وچ پرماتما کتھے، انہاں دماں دی یاد وچ تے کچھ دکھ ہون گے کچھ سکھ ہون گے. بیٹھا ہوندا ہے منک یاداں وچ، کدی دکھ دیاں یاداں کدی سکھ دیاں یاداں، کدی ملاپ دیاں یاداں کدی وچھوڑے دیاں یاداں، کدی سنتاپ دیاں یاداں کدی ملاپ دیاں یاداں. اس وچ جی رہا ہوندا ہے یا پھر بھوش دی چنتاواں دے جی رہا ہوندا ہے، یہ ملنا بھی ہے کہ نہیں، کامیاب بھی ہوواں گا کہ نہیں، نفع ہوے گا کہ نہیں، بھوش دی چنتا اس طرح دبدا وچ ڈبوئی رکھدی ہے. بھوش دی چنتا وچ منک دفاڑ ہویا بنیا رہندا ہے. ایک دم دے بھوش مٹ جاندا ہے، ایک دم دے بھوت کال مٹ جاندا ہے، ایک دم دے ایک پرگٹ ہو جاندا ہے، وہ ایک آنند سروپ، وہ ایک آنند مئی. اس واسطے گروانی نے بھوش نو جال کہہ دیتا ہے، بھوت کال نو جال کہہ دیتا ہے. اور بھوت کال تے بھوش، ایک گزرے ہوئے دن، آن والے دن، اور دن دن کر کے دن بھوت کال بندے جا رہے ہیں، دن بھوش دیاں چنتاواں دا روپ دھارن کرتے جا رہے ہیں. تو سمے نو ناپن دا ڈھنگ دن تے رات ایک جال بن کے منک نو فسا رہے نے. جالی رین جال دن ہوا، جیتی گھڑی پھائی تیتی، رس رس چوب چگے نت پھاسے، چھوٹس موڑے کون گنے. دستے سہی کیوں چھٹے گا اس جال تو،
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਡੰਗ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਜਾਲ ਜਮ ਜੋਹੋ ਨਾ ਸਾਖੇ ਸੱਚ ਕਾ ਪੰਥਾ ਫਾਟਿਓ। ਸੱਚ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਛਣ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਛਣ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਦਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੰਘ ਗਏ ਦਮ ਝੂਠ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮ ਝੂਠ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗੰਮੀ ਮੌਜ ਦੇ ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਾਲ ਮਿਟਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ, ਅਜੇ ਕਾਲ ਛੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਮਿਟਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੌ ਕਦਮ ਤੱਕ ਚਲਾ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਮੈਂ ਉੱਠ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 200-300 ਦਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਦਮ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੌ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਦਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਜੋ ਪੁੱਟਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੋ 3-4 ਦਮਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। 3-4 ਦਮ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੋਧ ਵਧੇ, ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵਧੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ

ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਲ ਕਲ ਵਾਲੀ ਕਾਮ ਮਦ ਮਨਵਾ ਪੀਵਣ ਹਾਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਹ ਭਰੀ ਪਿਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਮਜਲਸ ਕੂੜੇ ਲੱਭਦੀ ਪੀ ਪੀ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਕਤ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਹਾਂਵਾਕ, ਇਹ ਮਹਾਂਸੰਦੇਸ਼, ਇਹ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਦਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ, ਮੌਸਮ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਤੋਂ, ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਰੂਨੀ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰੁਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਰਮ ਮਨੁੱਖ, ਖੁਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਅਗਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਛਲਕ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਖਾਂ ਛਲਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੰਝੂ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਹੈ, ਸਿਹਰੇ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਧੁਨੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਤੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਪਕਵਾਨ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਡੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਮਗੀਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੇ, ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਤਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮੇ ਖਿਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਸਮੇ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਦੋਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੈਸੇ ਅਸਹਿ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਤੋ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ
पवित्र माहौल। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ऐसा होवे कि पवित्र थां कोई लभे ही ना, ते चारों पासे ही अपवित्रता होवे। ऐसे दौर दे मनुख अपने मन नूं किस तरह बचावे? इकबाल ने भी कह दिता है, दरम्याने कारे दरिया तख्ता बदम करदा अमी, बाज नी गोयन के दामन तरमकुन होशियार बास। तू लकड़ दे तख्ते नाल मैनू रस्या नाल बन दिता और दरिया दे सुट दिता। उपरों कह रहे हैं डुबना भिजी ना गिला ना हो, तो मैं किस तरह बचावा, अपने आप नू किस तरह बचावा? ये जो माहौल है, ये जो युग है, ये जो बाहर दी हालत है, इसनू साडे देश दे ऋषि मुनिया ने नाम दिता है कल युग। ते कल युग नू गुरु नानक कहंदे ने कलाली। ते कलाली तो मुराद आउंदा है शराब बना के बेचण वाला, जो स्वयं बनांदा है बेचदा है कलाल। पुराना शब्द साडे देश दे शराब बना के वेचण वालियां नूं कलाल कहिंदा है, कलाल। महाराज कहिंदे ने ए युग कलाल है, ए युग ही कलाल है, ए कल युग ही कलाल है। अगर ए कलाल है तो फिर ए केड़ी शराब बनांदा है और केड़ी शराब बेचदा है? धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जो शब्द उच्चारण किया है, इसका सिरलेख इंज है, सलोक मर्दाना महला पहला। महले पहले तो मुराद है गुरु नानक देव जी महाराज का यह वाक है, पहले पातशाह का है। सलोक मर्दाना पर यह शब्द मर्दाने के प्रति उच्चारण किया है, जो गुरु नानक देव जी महाराज का साथी सी, देखण नूं ते विचारीए सेवक से शिष्य से, पर गुरु नानक भाई साहब करके बुलांदे सन, भाई मर्दाना। भरा दा रिश्ता बड़ा गूढ़ा रिश्ता हुंदा है, और जो गुरु दा भरा है, गुरु नानक दा भरा है, भाईचारा बन गया गुरु नाल, इत बहुत वड्डी पदवी प्राप्त हो गई। तो सिख जगत दे भाई साहब एक धार्मिक पदवी है, गुरु नाल भाईचारा हो गया। हुण भाईचारा गुरु नानक नाल है, हुण भाईचारा गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल है, हुण भाईचारा गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाल है। इस भाईचारे नूं बड़े सन्मान नाल सिख जगत दे आदकाल तो देखिया जा रहा है, और अज भी असी चोटी दे धार्मिक मनुख नूं भाई साहब करके बुलांदे हां। मरदाने नूं सतगुरु भाई साहब करके बुलांदे ने। जद भाईचारा है, इतनी नेड़ता है, तो नेड़ता दे कोई राज नहीं आउंदे। कहिंदे ने मनुख उत्थे छुपा के रखना चाहुंदा है, चादर पर्दा पाना चाहुंदा है, जिथे कुछ ओपरापण है। छुपाना ही इस गल दा सबूत है, जो कुछ भी सामने है सब बेगाना है, सब ओपरा है। हर मनुख अपने अपने पर्दे चुके फिरदा है, और हर मनुख बुरके दे च है। किधरे किधरे ये अपना बुरका उतारदा है, जब देखदा है अपना है, ये अपना घर है, ये अपने ने, इन्हां नूं मेरी असलियत दा पता और मेरे नंगेज दा भी पता है, की ढकना इत्थे की ढकना। लेकिन आम बेगानियां तों मनुख नूं पर्दा करना पैंदा, पर्दा इस गल दा सबूत है, बुरका इस गल दा सबूत है, कोई सामने ओपरा है, बेगाना है। भैण भरा दे सामने बुरका नहीं करदी, मां पुत दे सामने बुरका नहीं करदी, अपना है, ये ते अपना है। अगर मनुख कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका छुपाना ही इस गल का सबूत है, सामने ओपरा है,
सामने कोई बेगाना है। अपने दे सामने ते मनुख सब कुछ उघाड़ के रख देंदा है। उदा जी करदा है अपना सीना भी चीर के इदे अगों रख दे। लेकिन बेगाने दे प्रति ते बड़ा सावधान आउंदा है किधरे इस दिया नजरां मेरे सीने तक ना पहुंचन, ये किधरे मेरे अंदर झात ना मारे। तो जिथे भाईचारा बन जाए उथे सब कुछ खोल के रख दिता जांदा है, और जिथे पर्दा पाना पए दो गल्लां हो सकदियां ने, या ते सामने सारे बेगाने ने ओपरे ने, और जिस ते पर्दा पाया जा रहा है कोई चंगा भी नहीं होवेगा। हमेशा जख्मां ते पट्टी बनन दी लोड़ पैंदी है, हमेशा शरीर दा दागी थां छुपाना पैंदा है, हमेशा शरीर दे अपंग हिस्से नूं ही ढकना पैंदा है, छुपाना पैंदा है, दूसरे तों लुकाना पैंदा है। जो कुछ भी लुकाना चाहते हैं छुपाना चाहते हैं इतनी गलती स्पष्ट है ठीक नहीं होवेगा। गंदगी नूं ढकण दी लोड़ है, बिष्टा नूं ढकण दी लोड़ है, फुल्लां दे उत्ते चादर पाण दी कोई लोड़ नहीं। नग्नता निर्दोषता दा सबूत है, निर्दोष है, नगन है, नगन है, निर्दोष है, गुनाहगार है, ढकिया होया है, और ढकिया होना इस गल दा सबूत है गुनाहगार है। गुनाह नूं ढकना पैंदा है। एक मासूम बच्चे दा जन्म होया है, नंगा है, पर इस दी नगनता दे नंगेजपणा नहीं है। इसका नंगा शरीर लोभ की प्रदर्शनी नहीं कर रहा, इसका नंगा शरीर वासना की प्रदर्शनी नहीं कर रहा, इसका नंगा शरीर काम की प्रदर्शनी नहीं कर रहा, जबकि कई ढके हुए शरीर भी प्रदर्शनी करते हैं। गंदगी ते चादर पाई है, चादर दे चों भी बदबू बाहर आ गई है, चादर दे चों भी गंद बाहर आ गई है। तो यह दौर, यह समा, इसनों गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कलाल, और यह शब्द उच्चारण कर रहे ने मरदाने दे प्रति। मरदाने दे सामने इस युग की नगनता सतगुर पेश कर रहे ने, हालांकि युग ने अपने आप नूं ढकया है, बहुत ढकया है, बड़ा ढकया है। एक जमाना ते ऐसा भी साडे देश दे लंघया है कि असी धार्मिक पुरुषां दियां मूर्तियां भी नगन बनाईयां, धार्मिक मंदरां दे च भी नगन मूर्तियां बनाईयां, और बड़े बड़े साधुआं दे टोले भी चले नांगे साधु, नंगे साधु। साधु होण दी पहचान नंगा है, इहदे कोल ढकण वास्ते कुछ भी नहीं, ढकण वास्ते कुछ नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि इहदे कोल कपड़े नहीं ने, नहीं, ऐसी कोई गंदगी इसके कोल नहीं जिसनूं इह ढके। फुल नंगे ही ठीक रहिंदे ने, पर जैसे जैसे मनुख दे छिद्र वधदे गए, जख्म वधदे गए, पट्टियां भी वधदियां गईयां, और जब सारा ही शरीर जख्मी हो गया तो सारा शरीर पट्टियां नाल भर गया। कपड़े नहीं पहने हुए, जख्मां दे उत्ते पट्टियां बनियां होईयां ने। हकीकत यह है, हमा तन दाग दार शुदम पुंबा कुजा कुजा ने हम। ये सूफी संत कहिंदा है रोम रोम जख्मी है, किथे किथे मैं पुंबा रखा ते पट्टी बन्ना, ते जे मैं पट्टियां इतनियां बना रोम रोम दे उत्ते ते पट्टियां ते मेरा लिबास बन जाणगियां, पट्टियां मेरा पहरावा बन जाणगियां। गुनाह नूं ढकण लई जो कपड़े पहने वो कपड़े लिबास बन गए, वो कपड़े फैशन बन गए, वो कपड़े समाज दा अंग बन गए। वरना गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने ए एहसास पशुआं च नहीं पैदा होया, विस्माद नांगे फिरे जंत। महाराज कहंदे ने मैं ते विस्माद हो जाना, पशु नंगे ही घूम रहे ने, इन्हां दी नगनता लोभ दी प्रदर्शनी नहीं करदी, इन्हां दी नगनता हंकार दी प्रदर्शनी नहीं करदी, इन्हां दी नगनता वासना दी प्रदर्शनी नहीं करदी। मनुखता दे आदकाल दे
मनुख जद निर्दोष सी इतना ही निर्दोष जैसे कि पशु ते पक्षी ने, कपड़िया दी लोड़ नहीं सी। दोष वद्दे गए, कपड़े वद्दे गए, सहजे सहजे समाज दा हिस्सा बन गए कपड़े। जो कपड़े पहन रहे है भले मानस है, निर्दोष है, हुन नंगा दोषी कहलाण लग पे। इस वास्ते दोषी मनुख नूं असीं कह देने आ बड़ा नंगा मनुख है, ये ते बड़ा नंगा है। कमाल दी गल, एक दौर ऐसा लंघिया, ये ते बहुत गुनाहगार है, सब कुछ ढक के रखे है, ढके होया है। परिभाषा बदल गई, ये ते बहुत नंगा है, ये ते बहुत नंगा है। वक्त दा तकाजा, समय दा प्रभाव। तो ये शब्द धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मर्दाने दे प्रति उच्चारण किया है। कल कल वाली काम मद मनुवा पेवन हार। एक कल आम पर चलता है शराबो कबाब, कबाब नाल शराब जुड़ गई, शराब नाल कबाब जुड़ गया। ऐसा क्यों? शराब और हलवा इंज नहीं कहंदे, शराब और मिठाई ऐसा नहीं कहंदे, शराब और रोटी ऐसा नहीं कहंदे, शराब और अंब ऐसा नहीं कहंदे, शराब और कबाब। लगदा है कुछ जरूर चोली दामन दा साथ है। अगर साथ ना होंदा तो इस तरह भी कहा जा सकदे शराब और दुध, शराब और दही, शराब और घी ऐसा नहीं कहंदे, जबकि सारियां चीजां खाण वालियां। शराब और कबाब, कबाब नो शराब चाहिदी है, शराबी नो कबाब चाहिदा है। इना दोहां दा चोली दामन दा साथ है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे रैवरी पुरुष ने शराब दी गल कर रहे ने, कबाब दी गल कर रहे ने। खाने कबाब जरूर खा, पर जिस तरह दा ढंग मैं तेनू बनाने दा दसदा कबाब ओ खा। शराब पीनी है जरूर पी, पर जेड़ी मैं बनाने दा ढंग तैनू दसदा ओ पी। बन शराबी, बन कबाबी। ऐसा शराबी, ऐसा कबाबी कि परमात्मा भी तैनू सीने नाल लाण ते मजबूर हो जाए। किसे वक्त सतसंग नू मैं खाना कहा जांदा, अज ते खेड़ी कुछ होर होगी, सिलसिला कुछ होर हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने ए युग कलाल है। अगर ए कलाल है तो इसदे कुल शराब केड़ी है? कल कल वाली काम मद, इसदे कुल काम दी शराब है। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। धन भगत रविदास जी महाराज, हे प्रभु तू जगत दा स्वामी, असी इस युग दे कामी, तो तालमेल किस तरह बैठे? एक दौर ऐसा भी लंघिया, हर पासे धर्म दी प्रदर्शनी सी, धर्म दी नुमाइश सी, बारों भी डुल डुल के धर्म पैंदा सी। गल दे च माल है, हत्थां च माल है, घर दे च मालां लटकियां हुई ने, ग्रंथ पए ने, तमाम धार्मिक साजो समान नाल घर सजे हुए ने। और घर दे च भी जाके ऐसा पता चलदा सी जैसे मंदिर है, धर्मशाल है। दौर बदलिया, घर दे च बार बन गई, घर विच बोतलां आ गईयां, घर विच वैश्याले बन गए। हैरानगी दी गल, पहले घर मंदर सन, घरम धर्मशाल सन, हुण ते बहुते धर्मशाले भी किसे हद तक मैखाने ने, भ्रष्टाचार दे अड्डे ने, दुराचार दे अड्डे ने,
दौर बदले है, समय दा प्रभाव, महाराज कहंदे ने कलाल है ए युग, और ए बना रहा है काम दी शराब। ज्यादा चर्चा इसे दी है, ज्यादा यही देखिया जा रहा है टीवी ते, अखबारां दे, इश्तहारां दे, तरह तरह दे मैगजीन, तरह तरह दे गंदे नावल, जिन सियात नाल भरिया हुई कहानियां, हर पासों उजागर काम दी प्रदर्शनी, काम दी नुमाइश। आखिर मनुख कोल जो कुछ होवेगा उसे दी प्रदर्शनी करेगा, आखिर मनुख कोल जो कुछ है वही बार प्रगट करेगा। काम ही काम जीवन दी एक वक्ती लोड़ हो सकता है, काम जीवन नहीं हो सकता। लोड़ कतई जीवन नहीं आती। इसनों जिस आलमाना ढंग नाल धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बयान किया है आप दे सामने रखा। पंकज फाते पंक महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। पंकज पंक कहंदे ने चिक्कड़ नूं, पंकज पंक दे चो जमया, चिक्कड़ दे चो पैदा होया पंकज। पंक ने जन्म दिता है, चिक्कड़ ने जन्म दिता है पंकज। तो चिक्कड़ किसनों जन्म देंदा है? चिक्कड़ एक चोटी दे फुल नू जन्म देंदा है, जिसनों कमल कहंदे ने, जिसनों सौरभ कहंदे ने, जिसनों कंज कहंदे ने, जिनू पदम कहंदे ने, जिनू सारंग कहंदे ने, जिसनों बारिज कहंदे ने। धार्मिक ग्रंथां दे गालमन इसके 18 नाम ने, और ये धर्म का प्रतीक है। अगर कोई धार्मिक मनुख है तो कह दिता जाता है तो कमल की तरह। भारत के मंदिरों के गुंबद कमल ने। बोध भिक्षु जब सवेरे सवेरे भिक्षा ले चलते ने, हद च कमल की पंखड़ी लेके, ताकि एहसास रहे विचर रहे हैं बाजार दे गलिया दे, कमल की तरह रहना है। डुबना भी नहीं, भिजना भी नहीं। महाराज कहने पंकज फाते पंक, जो पंक तो जमया सी, चिक्कड़ तो जमया सी, महाराज कहने चिक्कड़ी ची फस के रह गया। पंकज फाते पंक, पंकज पंक दे फस के रह गया। कदी ऐसा होंदा है सरोवर दा पानी सुकन लग पैंदा है, ते बाहर दे जल झरने जो इस विच आ रहे सन वो अवरुद्ध हो जांदे ने, रुक जांदे ने, पानी नीवा होण लग पैंदा है। और इतना नीवा कि चिक्कड़ दिखाई देण लग पैंदा है, और वो कमल जो बहुत उपर उठाया होया सी चिक्कड़ दे नेड़े चला गया। पानी दे आसरे थे बहुत उच्चा उठिया सी, बहुत उच्चा उठिया सी, नीवा चला गया, थल्ले चला गया। लेकिन अचानक जोर दी बारिश हो गई, चारों पासे दा जल झरना झरनिया दा रूप धारण कर सरोवर दी तरफ आया, और सरोवर बड़ी तेजी नाल भरन लग पया। जितनी तेजी नाल पानी उच्चा हो रहा है, इतनी तेजी नाल कमल उठ ना सकया। जितनी गति नाल पानी ऊपर उठ रहा है, ये गति कमल अपनी बना ना सकया। होया कि पानी ऊपर चला गया, कमल थल्ले चला गया। चिक्कड़ तो जमया, फिर चिक्कड़ दे फस गया। पंकज फाते पंक महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। ऐसा चिक्कड़ विच उलझे है, अपनी सुगंध ही भुल गया, अपना स्वप्न ही भुल गया। चिक्कड़ तो जमया सी, हुण अपने आप नूं चिक्कड़ ही समझ बैठा। जन्म काम तो है, अगर जीवन भी काम बन जाए तो चिक्कड़ तो जमया ये कमल चिक्कड़ विच लीन हो गया। चिक्कड़ चिक्कड़ ही बन के रह गया,
चिक्कड़ कमल नहीं हो सकया। काम राम हो जाए तो चिक्कड़ कमल बन गया, काम सिर्फ काम ही रह जाए तो कमल चिक्कड़ विच फस के रह गया। ये उदाहरण बड़ा सुंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिता है। काम तो जमया ए जीव काम दे च ही फस के रह गया। चारों पासे अज नाटक फिल्मा मैगजीन इश्तियारी दुनिया अखबारी दुनिया टीवी दी दुनिया रेडियो दी दुनिया समाजिक दुनिया राजनैतिक दुनिया हता के धार्मिक दुनिया भी काम दी नुमाइश तो बिना होर कुछ रह नहीं गई। चारों पासे इस दी प्रदर्शनी कारण ये जड़ा युग है एक कलाल है ही दे कोल शराब यही शराब है। मनुखां नूं किसे होर सरूर दा पता ही नहीं किसे होर नशे दा पता ही नहीं। दुनिया दे सारे नशे भी काम दे आले दुआले मंडला रहे ने और काम प्रबल नशा जिस दे मनुख बेसुरत मनुख बेहोश। ये गल वखरी है कि इतना खुल के इस विषय ते इतना बोलिया नहीं गया लिखया नहीं गया और जद किसी ने कुछ लिखया है तो उस ग्रंथ नु धर्म ग्रंथ नहीं आखिया गया। जद कोई बोलिया है तो उन्हां बोलां नु धार्मिक बोल नहीं आखिया गया। हद हो गई जिस तो जीवन जमया है उस मन दे बोल इनु एक पासे रख दईए धर्म दा हिस्सा ना मानिए तो फिर ए ते इंज होई जिवें कह दईए जन्म ही नहीं होया या जिथों जन्म होया असी इसनु मनदे ही नहीं। जीवन उदों सफल हो जांदा है कि जम्मे काम दे चां ते लीन होवे राम दे च यात्रा सफल हो जांदी है। चिक्कड़ तो जमे है पर चिक्कड़ ते पानी दोहां तो उच्चा उठे। काम तो जमे है पर ए काम ते पदार्थां दोहां तो उच्चा उठे। पानी तो भी उच्चा उठे कई दफा जोर नाल वधिया होया पानी भी डुबो के रख देंदा है उपर नहीं उठन देंदा। अचानक धनवान हो गया है अचानक सता मिल गई है प्रभुता मिल गई है बड़ी तेजी दे नाल धन संपदा आई है नहीं संभाल सकया गर्क हो गया डुब गया। आहिस्ता आहिस्ता जद सरोवर दे च पानी पैंदा है आहिस्ता आहिस्ता फुल भी उपर उठदा रहिंदा है पर विरले कोई फुल ने ऐसे जो तीबर गति दे च अपने आप नूं तीबर गति च उठा सकन। पानी दा वेक बड़ा तीबर होवे बड़े तीबरता दे नाल पानी वधदा जा रहा है उच्चा हो रहा है और इसी तीबरता दे नाल ओ अपने आप नूं उच्चा कर सके कठिन हो जांदा है औखा हो जांदा है। काम ही एक शराब है जो एक कलाल अपनी दुकान ते सजा के बैठा है वेच रहा है पी रहा है पिला रहा है। कल कलवाली काम मद मनुआ पी मनु हार क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार। ए समा ए युग ते कलाल है काम दियां बोतलां काम दी शराब सजा के बैठा है पर किस प्याले विच पीती जांदी है और साकी कौन है पिलाण वाला कौन है। कहिंदे कलाल होवे शराब होवे प्याला नहीं साकी नहीं तो मैं खाने दा रंग नहीं जमदा। इस कलाल दा जो मैखाना है रंग जमे आया है। काम मद कल कल वाली काम मद मनुआ पीवण हार क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार। प्याला है
क्रोध दा, साकी है अहंकार और शराबी शराब दे पीण वाला है मनुख दा ए मन। तन भावें सारिया दे पानी पीण वाले हवन, मन ते सारिया दे शराब पीण वाले। तन भावें दुध पीण वाले हों, मन ते सारिया दे शराबी ने। ए गल वखरी है, दिस पैंदा है ए मुंह नाल दुध पी रहे है, मन नाल शराब पी रहे है। मुंह नाल भोजन छक रहे है पर मन नाल ते शराब ही पी रहे है। शराब ही काम दी शराब, शराब दा कम की है

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲੋਭ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਭ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਕੜ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕੇਗੀ? ਇਤਿ ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਬੌਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੜਾ ਸਰੂਰ, ਬੜਾ ਰਸ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਵੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਭਿਕਸ਼ੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਪਾਤਰ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਤਰ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਸੰਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੱਟਾ ਸੱਟਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਚੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਦਕਾਲ ਤੋਂ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਭਿਕਸ਼ੂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਭਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਭਿਕਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਿਕਸ਼ਾ ਦਾਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਭਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਪਕਵਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਭਿਕਸ਼ੂ ਪਾਤਰ ਲੈ ਆਇਆ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਰਾਜਨ ਪਾਓ। ਉਹ ਖੀਰ ਪਾਈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਡੁੱਲ ਗਈ। ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਪਾਓ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਤਰ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਲਵਾ ਪਾਇਆ, ਪੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਪਾਓ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਪਕਵਾਨ ਉਸ ਪਾਤਰ ਦੇ ਚ ਪਾਏ, ਪਕਵਾਨ ਥੱਲੇ ਬਿਖਰਦੇ ਗਏ, ਗਿਰਦੇ ਗਏ। ਭਿਕਸ਼ੂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਭਿਕਸ਼ੂ, ਤੁਸੀਂ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣਾ ਭਿਕਸ਼ਾ ਪਾਤਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛਲਨੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਪਾਤਰ ਤੋਂ ਡੁੱਲ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਤਰ ਤੋਂ ਡੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪਾਤਰ ਠੀਕ ਕਰ, ਭਿਕਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਠੀਕ ਕਰ, ਭਗਵਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਜਲਸ ਕੂੜੇ ਲੱਭਦੀ, ਪੀ ਪੀ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕਬਾਬ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੇ ਸ਼ਰਾਬੋ ਕਬਾਬ, ਕਬਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੇ ਸ਼ਰਾਬੋ ਕਬਾਬ, ਕਬਾਬੋ ਸ਼ਰਾਬ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕਬਾਬ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬਾਬ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਹ ਕਰ। ਔਰ ਜਦ ਤੂੰ ਉਸ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਹ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੇਗਾ,
ते जद उस बकरे च खून निकल जाएगा, जान निकल जाएगी, ओ जड़ा मांस होवेगा, जे किधरे तू खा लवें कदी जिंदगी च तैनू भुखी नहीं लगेगी। हर वक्त रजिया रहेगा, हर वक्त त्रिपत रहेगा। तो जे हुण पुछिए बाबा किहड़ा छुराया हो, गुरु नानक दे बोल बड़े कीमती, सच की काती सच सबसार, छुरा होवे सच दा। सच नू छुरा क्यों कह दिता? सच ऐसा छुरा है कि दो धारा खंडा है और दो नोका खंडा है। सच बोलांगे दूजे नू भी चुभदा है, अपने नू भी चुभदा है। ये दूजे नू भी घायल करेगा, अपने नू भी करेगा। इस वास्ते सच बोलना कठिन है, कठिन है। ये दूजे नू चुभेगा पर अपने नू भी चुभेगा, और जद चुभेगा कटेगा तो छुरे दा एक कम है। जद किसे दी गर्दन कटे, किसे दे अंग नू कटे, किसे नू चुभे तो खून ते निकलेगा। अगर सच दे छुरे नाल जवा करिए और सच दा छुरा ए चुभे दो दारा तो झूठ ते निकलेगा। झूठ दा ही खून मनुख दे अंदर है, खून नहीं है, झूठ है मनुख दे अंदर। बाहर दे छुरे नाल शरीर चो खून निकलदा है, सच दे छुरे नाल कोई जवा होवे अंदरों झूठ निकलदा है। सच की काती सच सब सार, घाड़ तिसकी अपर अपार। ये जो सच दा छुरा है इदा लोहा सच है, इसकी जो धारा है घाड़त है वह भी सच है। किसका कुठा होवे सेख, लहू लब निखथा वेख। अगर इस छुरे नाल जे किधरे कुठा करें, दो तरीके ने, कुठा झटका, एक झटके नाल गर्दन अलग की थी झटका, आहिस्ता आहिस्ता रेत के गर्दन अलग की थी, इनू कुठा कहंदे ने, कोहणा आहिस्ता आहिस्ता। जे तू इस ढंग नाल आहिस्ता आहिस्ता कोवें, सच नू सहजे उचारण करना पैंदा है। और सच की है परमात्मा दा नाम, ये पहले जबान ते आवे तो जबान दे चों हड्डी निकलेगी, जबान दे चों सख्ती निकलेगी। ये हो नहीं सकदा, जिस जबान ते राम है उस जबान दे सख्ती होए, जिस जबान ते वाहेगुरु है उस जबान ते क्रोध होवे, ये हो ही नहीं सकदा। जहर इस गल दा सबूत है, अजे जबान ने अमृत दा रस नहीं माने। सख्ती इस गल दा सबूत है, ये जबान जबान नहीं रह गई, क्योंकि जबान दे च हड्डी नहीं आउंदी, जबान दे च सख्ती नहीं आउंदी। जबान दे च हड्डी आ गई है, ये मांस दा टुकड़ा ते बन के रह गई, जबान नहीं है। तिसका कुठा होवे सेख, लहू लब निखथा वेख। परमात्मा दे नाम नु छुरा कह दिता है गुरु नानक ने, ऐसा छुरा है कोके रख देगा। छुरे ने कोना है तो निकलेगा की, निकलेगा काम, निकलेगा लोभ। एक कसाई छुरा फेरदा है बकरे थे, निकलदा है खून। बाद देच आंदरा ओजरी कड़ के परे सुटदा है। पर सच दे छुरे नाल जद किसे दा मन जबा आउंदा है, लोभ निकल जांदा है, वासना निकल जांदी है, शुद्ध मास रह जांदा है, शुद्ध मन रह जांदा है। उसे नू कहंदे ने मन शुद्ध हो गया, मन पावन हो गया। सच की काती सच सब सार, गाड़त तिसकी अपर अपार। किसका कुठा होवे सेख, लहू लब निखत्ता वेख। ए शेख, जे इस छुरे दा किधरे तू जवा कीता होया, मांस खा लवें
परमात्मा ने कबूल कर लेना है, ईश्वर ने कबूल कर लेना है। खा मांस जरूर खा, पी शराब जरूर पी, पर केड़ी शराब? धन गुरु नानक देव जी महाराज की जिंदगी दे नाल बोल जुड़े हुए ने, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम दी शराब पी। तो नाम शराब है, हां नाम एक ऐसी शराब है, और ऐसा सरूर तारी हो जाता है, सारे दुख मिट जाते हैं, सारे विकार निकल जाते हैं। बाहर दी शराब जितने जितने घुट अंदर जाएगी, वो शराब ही अंदर नहीं जा रही, विकार भी अंदर जा रहे हैं। शराबी कामी होवेगा, शराबी क्रोधी होवेगा, शराबी भोगी होवेगा, सारा अनर्थ शराब नाल जुड़ गया। बेशतर मुल्कां दे शराब पानी दी तरह पीती जा रही है, दुराचार आम हो गए, या इंज कह लो दुराचार दे बाजार, बाजार ही दुराचार दा रूप धारण कर गए। बिकदियां सन जिनसां किसे वक्त बाजार विच, कपड़ा बिकदा सी, सोना चांदी बिकदा सी, फल फूल बिकदे सन, पर ए बाजार अज मामूली रह गए ने। स्त्री दी असमत बिकदी है, इज्जत बिकदी है, इन्हां बाजारां दी महिमा बहुत वड्डी होगी। ए नाम मात्र कहलाण वाले क्लब, ए थिएटर और इस तरह दी आयाश दी दुनिया, वैश्याले सब असमत फिरोशी दे अड्डे, बिकदी है असमत स्त्री दी। बाजार देच हुण दुराचार बिकदा है, बाजार देच वस्तुआं नहीं। अगर कोई नाम दी शराब पी लवे, इस शराब किवें बनेगी? गुड़ कर ज्ञान, ध्यान कर मऊआ, पहु भाटी तन धारा, रब्बी भय दी भट्ठी बना, उदे च रब्बी ज्ञान दा गुड़ पा, उदे च रब्बी ध्यान दा मऊआ पा, मऊआ एक फुल, ते भय दी भट्ठी। मनुख समाज तो डरदा है, मनुख कानून तो डरदा है, मनुख परमात्मा तो नहीं डरदा। संकोचमई बिरती बना देंदा है, कानून दा भय, समाज दा भय, भी समाज दिया नजरां नहीं ने ते हुण मैं गुनाह करा, कानून दी पहुंच नहीं है ते हुण मैं पाप करा। है ते पापी, पर पाप उत्थे करेगा जिथे तक कानून दी निगाह नहीं पहुंच सकदी। है ते गुनाहगार, पर गुनाह उत्थे करेगा जिथे समाज दियां नजरां नहीं पहुंच सकदियां। लेकिन रब दा भय अगर ए मनदा है तो गुनाह होवेगा ही नहीं, पाप होवेगा ही नहीं। रब्बी भय ने पवित्र करके रख देना है, शुद्ध करके रख देना है। ए भय दी तू भट्ठी बना, एदे च पा ज्ञान दा गुड़, एदे च पा ध्यान दा मऊआ। अग केड़ी इस भट्ठी दे तले बालनी है, दो पुर जोर रसाई पाठी, पियो महारस भारी, काम क्रोध दोए किए जलेता, छूट गई संसारी। दो पुर जोर, सुरत ते शब्द नु जोड़, ये दो पुड़ा नु जोड़ के बना चुल्ला, दो पुड़ा नु जोड़ के चुल्ला बनदा है। सुरत दे शब्द नु कठा करे बना चुला, इस देते रख भय दी भट्ठी, पा ज्ञान दा गुड़, ध्यान दा मऊआ। थले बालन केड़ा डाणा है, काम क्रोध दोए किए जलेता, छूट गई संसारी। काम दा ईंधन, क्रोध दा ईंधन, ए थले बाल। जैसे जैसे तू ज्ञान दा गुड़ पांदा जाएगा, ध्यान दा मऊआ पांदा जाएगा, और जैसे जैसे ते तू सुरत ते शब्द नु इक करदा जाएगा, काम सड़दा जाएगा, क्रोध सड़दा जाएगा, आखिर ईंधन ही ते जलदा है। तो काम ईंधन है, जलेगा, क्रोध ईंधन है, जलेगा।
काम क्रोध करके जिंदगी चल दी है, ईंधन करके जिंदगी चल दी है, अग करके ये अग खत्म होवेगी, क्योंकि ईंधन उतने चिर तक ईंधन है जो कारामद होवे। ईंधन उदो बर्बादी बन जाता है जब अग मकान नू लग जाए, दुकान नू लग जाए, साड़ के राख कर देवे। काम क्रोध दो किए जले था, छूट गई संसारी, सड़ गया क्रोध, सड़ गया काम। वो जो ज्ञान दा गुड़ सी, वो जो ध्यान दा महुआ सी, वो ऐसा पकया उदे चो निकली शराब नाम दी, उदे चो निकली शराब प्रभु दे सिमरन दी। तो पुछिए कबीर, ये शराब बनानी किस तो सीखी, कौन सिखांदा है? इस तरह दे शब्द धन गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज ते भगत कबीर दे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बहुत सारे ने। प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, सतगुर ते सुध पाई, दास कबीर तास मद माता, उचक न कब हो जाई। ए समझ गुरु तो लई है, और जिस दिन दी ये शराब पीती है, और बाकी शराब पीण नू जी नहीं करदा, राम दा रस आउंदिया ही काम दा रस मिट जांदा है, राम दा रस आउंदिया ही क्रोध खत्म हो जांदा है, राम दा रस आउंदिया रोम रोम दे चों लोभ निकल जांदा है, जीवन अमृतमयी हो जांदा है। और जिंदगी जद अमृतमयी हो गई है तो पहचान के बोल अमृतमयी हो जांदे ने, दृष्टि अमृतमयी हो जांदी है, जहरीले बोल दसदे ने जीवन जहर है। ये फिक्की दृष्टि दसती है, ये जहरीली निगाहां दसदियां ने जिंदगी जहर है। जहर नु अमृत बनाण दी जाच जे आ जाए भगत है, पर जे अमृत नु जहर बनाई जा रहे है तो फिर ये संसारी है, मूढ़ है, नादान है। कुदरत ने एक ऐसा नियम बनाया है, अमृत जहर बन सकती है और जहर भी अमृत बन सकता है। शायद इसे वास्ते डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कह दिता, जो जहर हला हल है, जो जहर हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। जे किधरे तेनु पीण दा ढंग आ जाए तो काम रस भी राम रस हो सकता है, ते जे तेनु पीण दा ढंग नहीं आया तो राम रस भी काम रस दे बदल सकता है, जहर भी अमृत हो सकती है, अमृत भी जहर हो सकता है अगर तेनु पीण दा ढंग नहीं आया। संखिया जहर है पर हकीम मार के उसनु कुश्ता बना देंदा है। अमृत अंगूरां दा रस अमृत है, गन्ने दा रस अमृत है, पर एक कलाल तरका के उसनु शराब बना देंदा है, कौड़ा बना देंदा है। मिठे नु कौड़ा कीता जा सकदा है, कौड़े नु मिठा कीता जा सकदा है, अमृत नु जहर बनाया जा सकदा है, जहर नु अमृत बनाया जा सकदा है। जिसने जहर नु अमृत बना लिया संत, और जिन्हें अमृत नु जहर बना लिया दुष्ट संसारी। तो ये दो तरह की जिंदगी मिलती है जगत देख, जहरमई अमृतमई। पर अमृत बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, बहुत ज्यादा विरले ने जिन्होंने संखिए का कुश्ता बनाया हो, बहुते ने जिन्होंने अंगूर की शराब बना ली, संतरे की शराब बना ली, मिठे गन्ने के रस की शराब बना ली, थोड़े ने जिन्होंने जिंदगी नूं मिठास नाल भर दिता, बहुते ने जिन्होंने कुड़त्तन दे नाल अपने जीवन नूं गर्क कर लिया, बहुत कौड़ा कर लिया, बहुत कौड़ा कर लिया। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने युग दे प्रभाव तो बचण वास्ते, क्योंकि युग ते कलाल है, शराब सजा के बैठा है, तो युग दे प्रभाव तो बचण लई ऐ पुरख तू सतसंग कर, सत दी विचार कर, सत दा चिंतन कर, ताकि युग दे प्रभाव तो तू बच सके, इस कलाली तो तेरी जान छुट सके, और तू ओ रस पीवे कि जगत दे सारे रस फिक्के पै जान, व्यर्थ हो जान। और इसे प्रथाई सतगुरु ने पंक्ति उच्चारण की थी, बिखे बन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो। एक ही जहर तू पी रही है,
अमृत भी, अमृत भी, अमृत भी, नाम रस अमृत है और इसकी खूबी है इनू पींदे ही सारी जहर शरीर चो निकलती है, सारे फिके रस शरीर चो निकलते ने। सतगुर ए अवस्था हर एक दी बनावे।

सदी है, ज्ञान विज्ञान ने बड़ी तरक्की की थी है और बड़ी तेजी नाल ज्ञान चले है। कदम कदम ते स्कूल कॉलेज और जितनी सियाण बद गई उतनी उदासी बन जो है बद गई और जितनी उदासी बद गई है उतनी शराब बद गई उतनी लोकी पानी दी तरह पीण लगता है। लोकी बेहोश होना चाहते हैं, अकल तो थले जीवना चाहते हैं, ना सोचिए क्योंकि सोचदे ते बेचैन, सोचदे ते दुख, सोचदे ते तकलीफ। उदास होने दे ए तीन कारण ने, या ते दिमागी तल ते जीवे बहुत सियाणा हो, या उसनु कथा कीर्तन चोट कर गई है, या संसार तो कोई चोट लग गई है, परिवार तो कोई चोट लग गई है, उदास हो जाएगा। लेकिन एक खतरा है, जड़ी संसार तो चोट लगे है लाजमी नहीं है ये जिंदगी नु बदलन की कोशिश करे, बल्कि अक्सर मौका तो यह होंदा है जिंदगी नु खत्म करने की सोचता है। सारी दुनिया च लोकी सुसाइड कर देने, आत्महत्या होंदी है, और संपन्न अमीर देशां ज्यादा है बनिस्पत गरीब देशां दे, क्योंकि गरीब इतना उदास ते निराश नहीं आउंदा, वो कल दी आसा बनाई रखता है, चलो अज मेरे कोल कुछ नहीं ते कल हो जाएगा। ये जिहड़ी कल दी आसा है उन्हू निराश नहीं होने देती। जिस मनुख की जिंदगी च कल रहा ही नहीं, जो कुछ चाहिए अज प्राप्त है तो उहदे नाल तृप्ति नहीं हुई, उहदे नाल सुकून नहीं मिलिया, तो उदास ते हो जाएगा। तो हुण इह किस तरह जीवे, किवें जीवे, इह ते खुदकशी करेगा, सुसाइड करेगा, सारी दुनिया च है। या ते कोई संसार तो चोट लग गई है, या अपनी सोचनी बड़ी प्रबल है, या सतगुरु दे शब्द ने चोट कर दिती है, परमात्मा दे नाम ने चोट कर दिती है। ये अलग अलग चोटां दे नतीजे अलग अलग होणगे। अगर शब्द ने चोट कीती है ये सुसाइड नहीं करेगा, आत्महत्या नहीं करेगा, ये खुद नू बदलेगा। जिस ढंग नाल मैं जी रहा इस तरह नहीं जीवना, जिंदगी बदलनी है, जीवन नू बदलना है। पर संसार तो चोट लग गई है, लाजमी नहीं कि जीवन नू बदले, हो सकता जीवन नू खत्म करने की कोशिश करे। सोच सोच के इसनों चोट लग गई है, जगत कुछ भी नहीं है, लाजमी नहीं है जगत जो है जीवन नू बदले, हो सकता जीवन नू भुलाण की कोशिश करे, शराब पी के कोई भी नशा करके। नशे दुनिया च इस सदी तो नवे प्रचलित हुए ने, क्योंकि सदी बड़ी सियाणी सदी है और बड़ी उदास सदी है। किस तरह जी है, जिहड़े मनोरंजन के साधन अज मौजूद ने पहले नहीं सन, और जितना उदास अज का मनुख है पहले कदा ही नहीं सी, क्योंकि अजोका मनुख सोचता बहुत है, विचारता बहुत है। मैं फिर दोहरा दें, आप सारे सियाने बैठे हो, उदास बिरती तीन कारण करके पैदा हो सकती है, या तो खुद हर वक्त सोच विचार के तल ते जीवे और बड़ी गहरी उसकी सोचनी होवे, इस जीवन नाल सहमत नहीं होएगा वो, ना संसार नाल, इते कुछ भी नहीं है, किस तरह जीवी है। जैसे गालब ने कह दिता, किस तरह मैं जीवा, इन्हां बच्चियां विच मैं किस तरह जीवा, इस बचकानी जिंदगी नूं मैं किस तरह जीवा। एक ते अपनी सोचनी तो उदास बिरती का जन्म हो सकता है, दूसरा कोई चोट लग गई है, बहुत वड्डी बेइज्जती हो गई है, बहुत गहरी चोट लग गई है, और ऐसा प्रतीत हो गया है कि कुछ भी नहीं जगत, ये जीवन कुछ भी नहीं, उदास हो गया है। या जपद्या जपद्या परमात्मा ने नाम नहीं चोट कर दी है, गुरु के शब्द नहीं चोट कर दी है, कथा कीर्तन तो ही चोट खा गया है, उदास हो जाएगा। कथा कीर्तन ने अजे चोट नहीं की थी, दरअसल कथा कीर्तन तो इसने अपने मन नू बचाया, एक पासे कीता है, इस वास्ते चोट नहीं की थी। ये उदास नहीं होया, अजे सोचदा समझदा नहीं पिया, अजे सोच विचार दे तल ते नहीं जी रहा, अजे जिवें पशु जी रहे ने इस तरह ही जी रहा है, शरीर दे तल ते, दिमागी तल ते नहीं जी।

0: की इच्छा तो चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो कृतपार। सारी अरदास है, बेनती है, तू हे प्रभु बख्शिश कर मेरा मन तेरे चरणा च रहे, बागी हो गया तेरा कुछ पता ही नहीं। जप जाप बन जाता है, जाप बैराग बन जाता है, बैराग अरदास बन जाता है, और बैरागी हिरदे तो जड़ी अरदास निकलती है कबूल हो जाती, कतई भी अर्थ नहीं जाती, बिरथी कदे न हो वही जन की अरदास आनंद की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और उदी जबान कह उठती है आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। आनंद की प्राप्ति हो गई, जप जाप हो गया, जाप बैराग हो गया, बैराग अरदास बन गया, अरदास आनंद की मूर्ति बन गया। ये इंज जोड़ है, ये अध्यात्मक मंडल दिया पंच स्टेजा ने जो तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं अज ही समाप्ति करने की कोशिश की, क्योंकि कई तरह के कई सजणा के प्रश्न सन, मैं इसे एक कोई लड़ी नू चला रहा सी, बार बार ख्याल आया कि बाकी सब्जेक्ट कई मजमून ने, धर्म के कई विषय ने, वो रह जाएंगे जो संगत पूछना चाहदिया ने। कल शरीरक जो रहत कलगीधर पिता ने सानू दिती पंज ककार, पंज बाणियां मानसिक रह, पंज ककार शरीरक रहत, उदी विचार करके फिर बहुत सारे प्रश्न ने वो मैं हर एक नाल वायदा किया है कि एक एक दे सामने मैं गल खोला, मैं भी थकांगा कि शायद इतना खोल भी ना सका, संगत जी सारी गल जो है खोलते जावांगे, और उम्मीद है माण ते नहीं हंकार ते नहीं, हो सकता है उन्हां सवालों के जवाब गुरबाणी दे चों आप नूं मिल जाएंगे, क्योंकि दार्शनिक पाठी दी रपण पढ़ के जो है तुहानूं सरवण करा देनी है। बाकी विचारां जो है कल, सारिआं दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरते आजूनी सैभं गुरप्रसाद। परिपूर्ण परमात्मा अनंत शक्तियां दा मालक है, अनंत कला धारनी है, और अनंत गुण उस तों प्रगट होंदे ने। जेड़ा जेड़ा गुण, जेड़ी जेड़ी कला और जेड़ी जेड़ी शक्ति दी झलक भगतां दी दृष्टि विच पई, भगतां ने उसे ढंग दे उस कला उस शक्ति दे गीत गाए ने। वेदांत आचार्य व्यास दा ते कहना है कि जैसी मनुख दी दृष्टि हुंदी है वैसी ही सृष्टि हो जांदी है। संसार दरअसल एक रूप नहीं, जैसी जैसी मनुख दियां नजरां ने वैसे वैसे संसार दे नजारे ने। जैसी जैसी बंदे दी दृष्टि है वैसी वैसी सृष्टि दा रूप हो जांदा है। एक खिड़िया होया गुलाब दा फुल, उसनू एक बिल्ली वेख रही है, उदे वेखण दा अपना ढंग है, पर उसे ही खिड़े हुए गुलाब दे फुल नूं जद एक कुत्ता वेखदा है तां उहदी दृष्टि अपनी है। जो रूप बिल्ली नूं दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं कि उही रूप कुत्ते नूं दिखाई दे रहे। उस खिड़े हुए गुलाब दे फुल नूं जद एक बकरी वेखदी है ते कई दफा मुंह दे च पाण दी कोशिश करदी है, उहनूं एक घास ही दिखाई देंदा है और कुछ नहीं। उसे फुल नूं एक सप वेखदा है, एक आम साधारण मनुख वेखदा है, वो किसे होर ढंग नाल वेखदा है, पर उसे फुल नूं जद एक कवि वेखदा है, शायर वेखदा है, वो फुल दी सुंदरता कोमलता दे बहुत गहरे तल दे खो जांदा है, और कवि दे अंदरों अगम्मी गीत फुट पैंदा है। फुल ते होई है पर वेखण वेखण दी दृष्टि वख होण करके फुल दा रूप भी वख हो जांदा है। तो जितनियां दृष्टियां ने उतनियां ही सृष्टियां ने, जितनियां नजरां ने उतने ही नजारे ने। जे सृष्टि दे अनेकां रूप हो सकदे ने तो तकनी वख वख होण दे नाते परमात्मा दे भी वख वख रूप भगतां दे सामने आए, ते भगतां ने परमात्मा दे वख वख रूपां दी चर्चा कीती। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान कि एक कथनियां इतनियां ने वख वख रूपां ने जिन्हां नूं पूर्ण रूप

0: ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇ। ਵਾਕਈ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੁਛ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਬਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਘਰ ਰਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਵਾਂ ਔਰ ਖੁਦ ਸਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਾਵਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਾਠੀ ਪਾਵਾਂ, ਲਗਾਮ ਦੇ ਸੋਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੀ ਅਸਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਵੋ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਖੇੜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ, ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਸੁਰਤ, ਤੋ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਥੱਲੇ ਖੜਦੇ ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਨਸੁਣਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਜੋ ਸਿਖਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੜਾ, ਤੋ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਗਮਨ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਰਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਤਨੀ ਸ਼ਿਖਰ ਤੋਂ ਬੋਲੇ, ਇਤਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਥੱਲੇ ਖੜ ਵਿਚ ਖੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਸਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਨਾ ਬੈਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੂੰਜਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈ, ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੱਡ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੱਡ ਭਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਡ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਤਨ ਖੱਡ ਵਿਚ ਕਲਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਖੱਡ ਨੁਮਾ ਸੀ, ਬੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ, ਬੋਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੱਡ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੱਡ ਦੇ ਗਿਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਮਹਾਨ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਕਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਲਕਸ਼ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। ਖੱਡ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਖੱਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਪਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਗਹਿਰੇ ਗੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਣਾ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਲਾਲ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਭੋਜਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और खाना पहल है, खाना अवल है। इतनी गल स्पष्ट है कि चार दिन का जो भुखा मनुख है उसका मनोरंजन नाल संबंध टूट जाएगा, परिवारिक खुशियां नाल संबंध टूट जाएगा। की पहनना है और किस ढंग नाल पहनना है इसकी चाहत भी मिट जाएगी। हर तरह की चाहत नूं भुख खत्म कर देंदी है। भुख इको ही चाहत रखती है कि सिर्फ भुख मिटे, मेरी पूर्ति होवे। तो ए सब तो प्रथम है, भुखे मनुख लई मनोरंजन बेमैनी है, परिवार खुशियां बेमैनी ने, तरह तरह के वस्त्रां दा पहनना बिल्कुल बेमैनी है। तो खाना पहले है और ए गल स्पष्ट है कि बहुत सारी दुनिया खान ले जी रही है। सारे दा सारा पशु उना दी जिंदगी दे ते पहनना है ही नहीं, उना दी जिंदगी दे ते परिवार खुशियां है ही नहीं, सारे पशु खान ले जी रहे। और की है, पशु जगत सिर्फ खान ले जी रहे है, पंछियां दा जगत सिर्फ खान ले जी रहे है, चौपाए जानवरां दा जगत सिर्फ खान ले जी रहे है। अगर उना दी कोई सोचनी है ते कम कर दी है तो सिर्फ खाण लई कम करती है, और सारी भज दौड़ खाने दी तलाश है, रिजक दी तलाश है, खुराक दी तलाश है, और कुछ नहीं। और गजब दी गल है कि पशु खांदिया खांदिया रजदा भी नहीं, खाई जांदा है, खाई जांदा है, क्योंकि होर कोई लक्ष्य ही नहीं कि थोड़ा जिहा लक्ष्य नूं बदले। मनुख दे खाण दे नाल नाल कुछ पहनना भी है, पहनने दे नाल नाल कुछ मनोरंजन भी है, मनोरंजन दे नाल नाल कुछ परिवारक खुशियां भी ने। तो इस तरीके नाल मनुख दी जिंदगी थोड़ी वंडी जांदी है, बिखर जांदी है। पशु कोल सिवाए खाने तो होर कुछ नहीं, तो चूंके खाना ही लक्ष्य है ते खान तो इलावा होर कुछ है नहीं, इस वास्ते पशु अक्सर अदक खा जांदे ने, ज्यादा खा जांदे ने, बहुत खा जांदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज माता तृप्ता जी नूं समझांदे ने, मां जी मैं तरह तरह दे पकवान रोज खाना, केड़े? तो आप कहंदे ने, सब रस मिठे मनिए, सुनिए सालोणे। मां, जो मैं परमात्मा दा नाम मन लिया है और मेरा भरोसा जो उस ईश्वर दे नाम विच जम गया है, बैठ गया है, ए मानो मैं सारी मिठास दा आनंद माण लिया है। ऐसा केड़ा मिठा पदार्थ है जिसका रस मैं नहीं माणिया? हकीकत है, एक सच्चाई है, जदों भी कोई मनुख इस मिठास दा आनंद जिंदगी च पहली दफा माणदा है, सब कुछ भिखा हो जाता है। बिखे मन फीका त्यागरी सखिए, नाम महा रस पियो। इस वास्ते परमात्मा दे नाम नूं रस नहीं आख्या, महारस, सारी मिठास जिस दे च है। और ऐसी मिठास जिसनूं किसी भी बैरूनी मिठास नाल तशबीह दे के समझाया भी नहीं जा सकता, प्रगट भी नहीं किया जा सकता। महाराज कहने, जो मैं मन लिया है, मन दिया ही सारी मिठास अंदर प्रवेश कर गई है। कदी बगौर मुताला करिए, कथा दा सुनना, कीर्तन दा सुनना, धर्म मंदरा दे जाना, ध्यान साधना करनी, सारा धर्म कर्म कांड अपनाना मैं इस वास्ते ही है कि किसी तरीके नाल मन परमात्मा नूं परमात्मा करके मन लवे, और ते कोई मतलब ही नहीं है। और जिसदा मन जितना मनदा जाएगा अध्यात्मक तल ते उतना ही उन्नत होंदा जाएगा, उतना ही महान होंदा जाएगा, उतना ही अग्रसर होंदा जाएगा। तो साहिब कहंदे ने, सब रस मिठे मनिए, सुनिए सालोणे। सलूणा नमकीन ए भी रसां दे चां एक महान रस है। गुरु घर दे निहंग संघ इस नूं सर्व रस कहंदे ने। दाल दे च पाईए होर रस, सब्जियां दे च पाईए होर रस। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੂਣ ਆਪਣਾ ਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਲੂਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬੇਸਵਾਦ ਹਰ ਦਾਲ ਬੇਸਵਾਦ ਹਰ ਪਕਵਾਨ ਬੇਸਵਾਦ ਠੀਕ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਵਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ ਇਹ ਨਮਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਆਨੰਦਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਨੋ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਲੋਣੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਲੈ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਿਆ ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਮਨੀਏ ਸੁਣੀਏ ਸਾਹ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਸ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਖੱਟਾ ਹੈ ਤੁਰਸ਼ੀਨ ਖੱਟ ਮਿੱਠੜਾ ਹੈ ਕਰਕਰਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੱਟ ਤੁਰਸੀ ਮੁਖ ਬੋਲਣਾ ਮਾਰਨ ਨਾਦ ਕੀਏ ਖੱਟੇ ਤੁਰਸ਼ੀਮ ਖੱਟ ਮਿੱਠੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਸ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਖੱਟ ਮਿੱਠੜੇ ਰਸ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਤੁਰਸ਼ੀਮ ਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਮਾਣ ਲੈਣਾ ਜਦ ਰਸਨਾ ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦੀਏ ਜਦ ਰਸਨਾ ਉਸਦਾ ਜਪ ਜਪ ਦੀਏ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਮਸਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਸੁਣਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਤੂੰ ਜਦ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੋਰ ਰਸਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਹੋਰ ਰਸਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬੜੀ ਸਾਰਥਿਕ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲ ਯੁਗ ਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਔਰ ਸੁਣਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਚ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਸਫੇ ਇਹ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਜੋਕੇ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਲਜ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮੈਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਰਸਦਾਇਕ ਨੇ ਰਾਗ ਹੋਰ ਰਸਦਾਇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕੁਝ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਹੋਰ ਸੁਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਾਰਥਿਕ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਕਲ ਯੁਗ ਮੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਜੋਗੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਚ ਵੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਵਾਲੀ ਸੰਗੀਤ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਾਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਢਾਲ ਕੇ ਗਾਇਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਬਾਬ ਦੀ ਧੁਨ ਛਿੜੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗੁਣ गायन करके परमात्मा नाल जुड़न दे वसीले लवरे ने धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने एते मसाला है संगीत भोजन नूं होर स्वादी बना देंदा है होर रसदायक जो है बना देंदा है मारण नाद की है छत्ती अमृत भाव एक जाको नदर करे उस एक दा भाव उस एक दी भावना उस एक दी श्रद्धा जो अंदर पैदा हुई है मन में 36 प्रकार दे भोजन छक ले रहे भोजन 36 प्रकार दा अक्सर मनिया जांदा है श्रृंगार 16 प्रकार दा गिणन दे जो है आया मन दिया हालता विद्वान 9 मन दे ने जिन्हों 9 रस भी कह देंदे ने मन दे वक वक इस ढंग दिया जो है गिनतियां ने साहब कहने 36 प्रकार दा जो खाना है मनो में छक लिया मनो में रस मान लिया जिड़ी उसकी भावना अंदर उजागर हो गई है अंदर जो है पैदा हो गई है इस वास्ते बाबा होर खाना खुशी खुआरे जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार मनुख जिंदा रहिंदा अगर खून चलदा रहे और खून तां चलदा रह सकदा है अगर मुंह विच भोजन चलदा रहे खुराक चलदी रहे खुराक खून है खून जिंदगी है और खून चलदे ने तो मन चलदा है विचार चलदे ने तो मुख गलते आ गई भोजन ते तो साहब इसने इंज तस्लीम कर देने कि है कुछ ऐसा भोजन जो खून विच विकार पैदा करता है ऐसा कुछ भोजन जो शरीर विच रोग पैदा करता है बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार वैसे तो एक दिन का खाना भी दस सकता है कि जो कुछ मैं खादा है शरीर दे अनुकूल है कि नहीं मन दे अनुकूल है कि नहीं अगर कोई शरीर शास्त्री होवे अगर कोई अपने मन नूं पढ़न वाला होवे तो उन्हें देखना चाहिए अज मैं खादा की है क्योंकि खून दी गर्जिश ते खाण नाल है विचारां दा दौर ते खाण नाल है मन दे च विकार आ गए ने तन विच पीड़ा आ गई है ये खाना दोषी है और जे खाना दोषी है तो मनुख दोषी हो जाता है विचार दोषी हो जाते ने शरीर रोगी हो जाता है धन गुरु नानक देव जी महाराज की यह मनोत है कि बेशतर शरीरक रोग और मानसिक विकार इन्हों का मूल कारण है आहार अगर कोई मनुख अपने आहार दे प्रति सुचेत नहीं है सावधान नहीं है तो स्पष्ट है अपने रोगां प्रति और मानसिक विकारां प्रति सुचेत नहीं है इस वास्ते फैसला कर देता है बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार ये ठीक है कि जीवन व्यापक है वनस्पति दे च है पशु पक्षियां दे च है आदि मनुख प्रकृति दे हवाले सी पहाड़ां दियां कंदरां च रहिंदा सी रुखां तले रहिंदा सी और प्रकृति ही जो उसनू खाण नू देवे ओही खांदा सी इसदा स्वयं दा कोई चुनाव नहीं सी क्योंकि मनुख अजे सभ्य नहीं होया सी प्रकृति ने जो फुल दे दिते फल दे दिते ओ खा लिया पर जद फुल ना मिले फल ना मिले तो फिर पशुआं दा शिकार इस ते जीवन बतीत होंदा रहा जिंदगी इस तरह लंघदी गई आखिर सहजे सहजे मनुख सभ्य होया सभ्य तो मुराद सभा विच बैठण दी जाच आई सभा नूं समझण दी जाच आई सभा विच अपने आप नूं पेश करन दा ढंग इस नूं आया और जो विचार मैनू नहीं चंगे लगदे उस सभा नूं भी नहीं चंगे लगदे सभा मैनू कैसी चंगी लगती है और सभा नूं मैं किस ढंग नाल चंगा लग सकदा इस सोचनी दा जदों जन्म होया और इस सोचनी दे अनुकूल जद मनुख ने अपने आप नू ढा लिया तो उसनू आख्या गया सभ्य। तो इसकी सोच दे च ए भी गल आई कि मैथों घट तो घट किसे नू दुख पहुंचे चोट पहुंचे, तो मेरे आहार दे च भी किसे नू चोट ना पहुंचे, मेरी खुराक दे च भी किसे नू चोट ना पहुंचे। वैसे ते बनस्पति दे च भी जी, दाणियां दे च भी जी, और पहला समग्र व्यापक जीवन पानी, पहला पानी जीव है। जित हरिया सब कोय, अहिंसक ते मनुख हो नहीं सकदा, नहीं ते पानी दा त्याग करना पेगा, बनस्पति दा भी त्याग करना पेगा, दाणियां दा भी त्याग करना पेगा, क्योंकि जे ते दाणे अन्न के जिया बाज न कोय। बस इतनी सोचनी अंदर जन्म लवे कि मेरे आहार तो दूसरे नू चोट घट पहुंचे। पशुओं का कुछ ऐसा जगत भी है जिथे मन विकसित हो गया है और मानसिक पीड़ा महसूस होती है, और जिथे मानसिक पीड़ा ज्यादा महसूस होवे उस पशु नू भी मनुष्य जैसा समझना चाहिदा है, मनुख जैसा समझना चाहिदा है। पर जिथे मानसिक सोचनी नहीं, मानसिक पीड़ा नहीं, सिर्फ शरीरक ही पीड़ा है, तो वह बनस्पति जैसे ने, वह दाणिया जैसे ने, क्योंकि दाणिया नू भी जद बुनदे आ तड़पदे ओ भी ने, दाणिया नू भी जद बुनदे आ उछलदे ने, तड़पदे ने, आवाज भी करदे ने, तिड़ तिड़ करदे ने, इह इन्हां दे चीखण दी आवाज है। तड़पदे होए किसे पशु नू वेख के अगर मानसिक पीड़ा महसूस होवे तो उसनू तड़पदे हुए दाणिया नू वेख के भी पीड़ा महसूस होनी चाहिए, दर्द महसूस होना चाहिए। फिर भी खुराक खान लग्या उदी ए सोचनी होवे कि मेरे आहार तो दूसरे नू घट तो घट ही चोट पहुंचे, ताकि ऐसा आहार मेनू चोट ना पहुंचावे। जिस आहार ने दूजियां नू चोट पहुंचाई है, ए आहार इसनू भी चोट पहुंचाएगा, एदे तन नू रोगी करेगा, एदे मन नू पीड़त करेगा। करीबन करीबन 90% मनुख दी अज खुराक ऐसी है दूजियां नू चोट पहुंचा के हासिल कीती जा रही है, तो चोट पहुंचा के हासिल कीती गई खुराक खुराक भी चोट पहुंचाएगी, खुराक भी जरब करेगी। इस वास्ते गुरु नानक दा ए फैसला, बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार, हे बाबा हे मेरे मित्र हे सियाने, सुचेत रह तेरे शरीरक रोगां लई, तेरी मानसिक पीड़ा लई 90% ते जिम्मेवार है तेरा आहार। तो जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं, वो विचार दे प्रति सुचेत नहीं हो सकता, जो आहार दे प्रति सुचेत नहीं वो अपने शरीर दे प्रति भी सुचेत नहीं हो सकता, और जो शरीर ते मन दे प्रति सुचेत नहीं उनु सभ्य नहीं कहा जा सकता, असभ्य मनुख है। अजे उसनु सभा दे बैठने दी जाच नहीं आई, अजे उस दे अंदर पूर्ण तौर ते मनुखता प्रगट नहीं हुई। तो प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज अपना उपदेश अपना संदेश खाने तो आरंभ करदे ने, फिर दूसरा आप पहनण दा उपदेश देंदे ने।
1: रता पहनण मनुरता सुपे दी सतदान, नीली सिहाही कदा करनी पहरण पैर ध्यान, कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम, बाबा होर पैनन खुशी खुआर, जित पैदे तन पीड़िए मन में चले विकार। खान पीन तो बाद पहनण दी मनुख सोचदा है, और ये सिर्फ मनुख ही सोचदा है, या इंज कह लो पहनण तो ही मनुखता आरंभ होंदी है। पहनण बारे पशुआं ने नहीं सोचिया, पंछियां ने नहीं सोचिया। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते कहंदे ने, विस्माद नांगे फिरे जंत, इन्ना नंगे पशुआं नू देख के मैं ते विस्मादमयी हो जांदा, विस्मय हो जाना है। इना दे अंदर पहनण दा ख्याल नहीं पैदा होया। ए इस तरह दे नाल नगनता दी प्रदर्शनी कर रहे ने। एक मासूम बच्चा, नवजायद बच्चा, उस दे अंदर भी अजे पहनण दा भाव नहीं पैदा होया। ए गल वखरी कि चीथड़िया दे च, कपड़िया दे च मां बाप उस नूं लपेट के रखदे ने, पर पहनण दा भाव अजे उस दे अंदर नहीं पैदा होया। इस वास्ते कह देंदे ने ए मासूम बच्चा अजे असभ्य है। सभ्यता ते बुद्धि दे विकास दे नाल नाल ही हुंदी है, तो अजे बौद्धक विकास नहीं होया। ए बच्चा मासूम इस तरह नगन निर्दोष है जिस तरह के पशु नगन निर्दोष ने। मनुखता नहीं आरंभ हो सकी, मनुखता सोचण नाल आरंभ हुंदी है। और पशु सोच दे तो लाजमी ओ पहनण लई भी सोच दे, और नगनता उन्हां नूं महसूस हुंदी। या इंज कह लो मनुखता इत्थों ही आरंभ हुंदी है जद नगनता महसूस होण लग पे। यही कारण है कि जिस दे अंदर मनुखता ना आवे, साडी भारतीय परंपरा दे मुताबिक कह देंदे ने ये मनुख बहुत नंगा है, बिल्कुल नंगा है। नंगे तो मुराद अजे इस दे अंदर ते पहनण दा ख्याल भी नहीं। इस ख्याल दे नाल ही मनुखता दा जन्म है, वरना खाण पीण दा ख्याल ते पशुआं दे अंदर भी है। ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं अगर मनुख दे अंदर है। मनुखता आरंभ होई पहनना है, ढकना है, कुछ आजा ढकने ने, मैज इसलिए ढकड़े ने कि मनुख दा शील संजम दे च रवे। मनुख दियां वाशनावां शील संजम दे च रहन, मनुख दे मानसिक वेग मर्यादा दे जो है नगनता उतेजना पैदा कर सकती है, नगनता भड़काऊ हो सकती है। यही कारण है भड़के हुए मनुख नु, और जिसने अपनी वाशना उजागर कर रखी हुए आले दुआले कह दिता जांदा है नगन है, नगन है। पहनना तो इस वास्ते सी कि नगनता नूं ढकना है, ते नगनता नूं इस वास्ते ढकना है कि भड़की हुई वाशनावां नूं जो है ढकना है, मनोबिरतियां नूं ढकना है। लेकिन कपड़िया दे राही वाशना नूं उजागर करन दा ख्याल पैदा हो जाए, कपड़े ही वाशना दी प्रदर्शनी करन लग पैण, तो ए कपड़िया दा गलत इस्तेमाल है। जैसे खाना पीना ते इस वास्ते सी कि शरीर दी भुख मिटे ते तंदुरुस्ती मिले, पर खाना पीना ही रोगी कर देवे, विकारी कर देवे, तो ए मकसद दा हल ना होया। ए खाने ते जो लक्ष्य दी पूर्ति होनी सी भुख मिटे ते शरीरक तवानाई दी प्राप्ति होवे, भुख जरूर मिटी है लेकिन तंदुरुस्ती नहीं मिली, बीमारी मिली है, मानसिक विकार मिले ने, खाने दा लक्ष्य पूरा नहीं होया। पहनण दा तो लक्ष्य ए सी वाशना ना भड़के, और दूजियां दियां वाशनावां भी सीमा दे च रहन, नगनता प्रगट ना होवे। खास करके विपरीत नगनता तो बिल्कुल प्रगट नहीं होनी चाहिए, मनजर आम ते नहीं होनी चाहिए, पर कपड़िया दे चों नगनता प्रगट होवे। कपड़े ही वाशना दी प्रदर्शनी करन, ऐसा हो सकदा है। अगर कुछ खाना पीना रोग पैदा कर सकदा है, जबकि खाना पीना रोग लई नहीं, तो कुछ पहनना भी विकार पैदा कर सकदा है, जबकि पहनना विकारां लई नहीं है। इस वास्ते इस पहरे देवी मुख पंक्ति दे गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, बाबा होर पहनन खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़ी है, मन में चले विकार। हे सियाणे, ओ पहनना जो तन दे खुआरी पैदा करे, मन दे विकार पैदा करे। इस संबंध च इंज कह लो, जब दे पहले विचारक ने गुरु नानक देव जी महाराज जिन्ह ने सोच रहा है कि कुछ पहनना भी विकारा नूं जन्म देंदा है, कुछ पहनना भी खुआरी नूं जन्म देंदा है। पैगंबरी पुरुषां दे चों, अवतारी पुरुषां दे चों, चोटी दे सिरमौर संतां दे चों, ए पहला उपदेशक है जो पहनण वाले भी कहिंदा संजम चाहिदा है। ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਸੰਜਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਨਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਆਵਣ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇਗਾ, ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ। ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਢਕਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਸਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਔਸ਼ਧੀ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਨਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪਹਿਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਪਹਿਨਣਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਢਕਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਦਾ ਹੀ ਪਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਦਿਸਿਆ। ਈਸਾਈਅਤ ਨੇ ਇਤਨੀ ਨਗਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਤਨੀ ਨਗਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਨਗਨਤਾ ਹੀ ਨਗਨਤਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੱਪੜਾ ਓਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਢੰਗ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਵਸਥਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁਣੀ। ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਢੱਕ ਦੇਵੇ, ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਗਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਗਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਦਰ ਹੈ, ਬੁਰਕਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਕੱਪੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਐਸੀ ਨਗਨਤਾ, ਉਸ ਨਗਨਤਾ ਦੇ ਚ ਭੜਕਾਊ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਨ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸਾਡੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਅਸੀਸ ਲਓ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਤਨ ਸਜਾਇਆ ਬਸਤਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਜੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਸਖੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਚੱਲ ਪਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਲਵੇ, ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਲਵੇ, ਤੋ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਬਾਸ ਇਹ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੁੱਖ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਤਨਾ ਭੜਕਾਊ ਲਿਬਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਭੜਕੀਲੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਾਓ ਰੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਜਾਇਆ, ਰੱਥ ਸਜਾਇਆ, ਸਜੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਥਾਲ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਕਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। दूरों रथ जद बाबा जी ने वेख्या धूड़ उड़दी हुई पुछ लिया कामे तो सेवक थो ए कौन आ रहे ने तो सेवक ने दस दिता गुरु के महल जापदे ने रसना तो स्वभाविक निकलिया एक गुरु के महलानों की भाजड़ पै गई है। ए बोल माता गंगा जी देवी कन्नी पे वापस हो गई। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शिकायत की थी जिन्हां नूं आप मान देंदे हो प्रतिष्ठा देंदे हो वो इस तरह साडा अपमान कर देने और बाबा जी दी रसना तो निकलिया है गुरु के महलानों की भाजड़ पै गई है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने किसी साधु को जाईदा है दर्शन करन लई दर्शन देन लई नहीं थोड़ा जान दा ढंग थोड़े कपड़े थोड़े गहने ये भाव भी नहीं पैदा कर सकते कि मैं दर्शन करन लई जाना है। इस वास्ते जे हर थां दी जान दी अपनी एक लिबास है अपना है पोशाक है तो सत्संग विच जान दा भी अपना एक लिबास है अपनी एक पोशाक है और ओ पोशाक बार बार भावना पैदा करे कि मैं दर्शन करन लई आया संगत दे मैं दर्शन करन लई आया गुरु दे मैं दर्शन करन लई आया एक पावन पवित्र माहौल दे। पर जे कपड़े ऐसे होन ते सारियां दी निगाह उस दे कपड़ियां ते पए तो एक ते सारियां दा ध्यान उखड़िया ते दूजा अपने मन विच भाव पैदा होया दर्शन देण दा दिखाण दा। यही कारण है कि बहुत सारी मनुखता धार्मिक लाभ तो वांझी रह जांदी है क्योंकि अपने वस्त्रां दी तरफ ख्याल नहीं रखती खास करके इस देच स्त्री जात किसे हद तक बहुत जिम्मेवार है क्योंकि उसका लिबास कई दफा देखने दे चाया सत्संग देच ऐसा होंदा है जो सत्संग दे मयार ते पूरा नहीं उतरदा। कहिंदे दूसरे दिन जद सादा लिबास पहन के दो मिस्से प्रसादे और प्याज दा गंडा थाल दे च रख के बिना दासियां तो बिना रथ तो पैदल जद जगत माता गंगा जी पहुंचियां ने अजे वे कदमा दी दूरी है बाबा बुढ़ा जी दी रसना तो निकलिया मां नू वाकई फिक्र आउंदी है बच्चे नू भुख लगी है कल कुछ होर आखिया सी अज कुछ होर आख रहे ने एकदम भज्जे हुए गए थाल ले लिया माता जी तो मंजे ते बैठ गए ने मिस्सा प्रशादा तोड़े है बुरकी मुंह च पाई है प्याज दा गंडा मंजे दे पावे दे ते रख के ज्यो मुठ नाल तोड़े है आखे है ओ लाल मां तेरी कुख तो जन्म लवेगा जो दुष्टां दे सिर इंज बनेगा जिवें मैं इस प्याज नूं तोड़े है। ए वाक प्रगट होया दल भंजन गुरु सूरमा वड योधा बहु परोपकारी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा जन्म आप दी कुखों होया। मीरी पीरी दे मालक तलवार दे धनी और शस्त्रां दे धनी सूर वीरता जिन्हां दे रोम रोम दे चों जो है प्रगट होंदी सी और जिन्हां दे चेहरे तो भक्ति भाव हर वक्त प्रदर्शित होंदा सी ऐसे मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दा जन्म वक्त दे एक महान फकीर गुरु घर दे एक महान आशिक संत बाबा बुढ़ा जी दे आशीर्वाद नाल होया। पर इस आशीर्वाद दे पिछे एक बहुत वड्डी कहानी छुपी हुई है कि किसे भी संत कोल आना है दर्शन देन लई नहीं दर्शन करन लई इहदे च कपड़िया दा बहुत वड्डा योगदान है। कपड़े कुछ ऐसे हुंदे ने जो मन दे अंदर ख्याल पैदा करदे ने मैं दर्शन देने ने और कपड़े कुछ ऐसे ने जो पैदा कर देने ख्याल मैं कुछ भी नहीं मैं ते दर्शन करने ने मैं ते दूजे दे जो है दर्शन करने ने। इस संबंध च एक होर भी बड़ी सुंदर गाथा है भगत कबीर जी दे डेरे एक ऐसी पनहारी सी जो गंगा तो रोज पानी भर के ले आंदी है मटकियां दे रहे और सारा दिन प्यासियां दी प्यास बुझांदी है ठंडे जल नाल रसना नाल परमात्मा दा नाम जपदी है अपने मन नु शीतल कर दी है ते दूजियां नु शीतल पानी पिला पिला के प्यास बुझांदी है अगलियां दे तन शीतल कर दी है इस तरह मन दे तलते उसदे सिमरन चलदा रहंदा है तन दे तलते उसकी सेवा चलती रहती है सेवा सिमरन दी ए मूर्ति अपना जीवन कबीर जी दे डेरे च इस ढंग नाल बतीत कर रही है लेकिन एक ऐसी घटना घट गट गई कबीर जी दे कुछ चेले शिवरात्रि वाले दिन गंगा तट ते कई देखते ने कि वकत दे बादशाह दी बेगम सिकंदर लोधी दी बेगम हिंदू यात्रियां नू देखण लई आई है कि इत्थे आके की करदे ने किस तरह दे धार्मिक रस्मो रिवाज नू ए प्रचलन करदे ने ए अपनांदे ने ए देख रही सी जिथे ओ धार्मिक रस्मो रिवाज लोकी निभा रहे ने कर रहे ने देख रही है उत्थे कबीर दे चेले सिकंदर लोधी दी बेगम नू देखदे ने और मैज इस वास्ते देखते ने कि इतने कीमती कपड़े और जर्री दा कम है मोती जड़त ने किधरे किधरे नीलम भी चलम चमकते पैने बस्त्रां दे चों कपड़ियां दे चों एकदम ख्याल आया उस पनहारी दा जो सारा दिन डेरे दे प्यासियां दी प्यास बुझांदी है ठंडे जल नाल गंगा तो भर के ले जांदी है सारा दिन जिसकी रसना ते सतनाम दी धुनी चलदी है कबीर पंथियां नू सतनामी कहंदे ने पर उसदे बस्तर लीरा लीरा ने उसदे कपड़े ते बिल्कुल फटे हुए ने मन दे ते एक शक दा बोझ पै गया ते शक ही सब तो वड्डी मैल है संसे जियो मलीन है कित संजम पोता जाए मेला हिरदा कौन जो परमात्मा दे प्रति शक नाल भरे होया है निर्मल हिरदा कौन जो परमात्मा दे प्रति विश्वास नाल भरे होया है जितना किसदा विश्वास वद्दा जा रहा है उतनी निर्मलता वद्दी जा रही है और जितना किसी का संदेह वद्दा जा रहा है मैल वद्दी जा रही है और संदेह ही संदेह रह जाए विश्वास रह ही ना ऐसा मनुख दुष्ट हो जाता है ऐसा ही मनुख जालम हो जाता है ऐसा ही मनुख चोर हो जाता है ऐसा ही मनुख दुराचारी हो जाता है ऐसा मनुख महान जालम हो जाता है क्योंकि परमात्मा दे प्रति संदेह ही संदेह है और ऐसा मनुख पुनीत हो जाता है भगवंत दा रूप हो जाता है भरोसा ही भरोसा है संदेह तो है ही नहीं केवल भरोसा है ऐसा मनुख अठे पैर समाधि लीन आंदा है जां के हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगट आया ऐसा मनुख जो भरोसे ते भावना नाल भरिया होया है अठे पैर समाधमई आंदा है समाधि लीन आंदा है अठे पैर प्रभु नाल जुड़िया आंदा है निर्मलता दी खाण आंदा है ओ निर्मलता दी मूर्ति कबीर दे चेले कबीर दे अगों फरियाद करदे ने साडे अंदर संदेह पैदा हो गया की करिए इस पनहारी नु वेख के और सिकंदर लोधी दी बेगम नु वेख के इन्ने कीमती कपड़े इतना कीमती लिबास पता नहीं उसकी जबान चो कदी परमात्मा दा नाम निकलिया भी है कि नहीं तो कबीर दे बड़े दो कीमती श्लोक ने इस संबंधित कबीर दे श्लोकां दी बाणी आप कहने कबीर हैंगे बाहन सघन घन छत्रपति की नार तासो पटंतर ना पुजे हर जन की पनेहार जो हरी जन दी पनहारी है सारा दिन हरी दे जना नु पानी पिलांदी है सेवा कर दी है इस दे कपड़े इतने महान ने कि उस बादशाह दी बेगम दे कपड़े इस कपड़िया दे सामने तुच्छ ने तासो पटंतर ना पुजे हरजन की पनहार तर्क खड़ी हो गई भगत जी ओ कपड़े मखमली ने नीलम जड़त ने जर्री दा कम होया उना ते ए कपड़े खद्दर देने लीरा लीरा ने टाकिया ने थां थां तो पाटे होए ने सिले होए ने इते चीथड़े ने इना नू आप कहंदे हो इतने महान ने उस बादशाह दी बेगम दे जड़े बस्तर ने बिल्कुल तुच्छ बिल्कुल मामूली। तो कबीर इसका बड़ा सुंदर जो है जवाब दें देना। कबीर निरप नारी क्यों निंदिए क्यों हर चेरी को मान मैं हरी दी चेरी नू मान क्यों दे दिता मैं इना चीथड़िया दी इतनी उपमा क्यों कर दिती मैं इतने सादे लिबास दी इतनी महिमा गायन क्यों कर दिती और इतना कीमती लिबास जर्री नीलम दा कम जिसने मैं उसनु भंडिया क्यों मैं उस दी निंदा क्यों की थी। दूजियां दे तर्क अजे जवान ते नहीं आए लेकिन फिर भी कबीर जवाब दे रहे ने समझा रहे ने कबीर निरप नारी क्यों निंदिए क्यों हर चेरी को मान ओ मांग सवारे विखे को ऐसे मरे हरी नाम। इदे सादे कपड़िया दे हरी दा नाम है उदे भड़कीले लिबास दे प्रदर्शनी है वाशना दी नुमाइश है उदे कपड़िया नू देख के दूजियां दियां वाशनावां भटक दियां ने भड़क दियां ने प्रगट होंदियां ने। इदे सादे लिबास नू वेख के लोगां दी जबान ते सतनाम दा जप चल रहा है जिन्हां कपड़िया नू देख के भगवान चेते आवे मैं उसकी उपमा करा या जिन्हां कपड़िया नू देख के शैतान दा जो है चेता चले मैं उदी महिमा गायन करा। वाकई ऐसा है लिबास जिन्हू वेखदे आई शैतानियत प्रगट होंदी है शैतान दे दर्शन होंदे ने और है ऐसा लिबास जिन्हू वेखदे आई भगवान दे दर्शन होंदे ने प्रभु दे दर्शन होंदे ने। खान पीण दी सावधानी तो बाद जो मनुख अपने वस्त्रां दे प्रति सावधान नहीं धर्म दी चरम सीमा नू छू नहीं सकेगा बुलंदियां नू छू नहीं सकेगा या इंज कह लो जद भी किसे दे पैर बुलंदियां दी तरफ रागब होंदे ने उदे पहरावे दी सादगी आनी आरंभ हो जांदी है उस दे पहरावे दी कोमलता आवनी जो है शुरू हो जांदी है। मनुख दी खान पीण दी कमजोरी तो बाद ए दूसरी कमजोरी है खाना पीना जबान दे रस करके बेमर्यादा चला जांदा है पहनना वाशना करके और अहंकार करके अपने आप नू प्रगट करना है और जैसे कोई कपड़िया दे राही अपने आप नू प्रगट करता है उसे तरीके नाल दूसरियां दियां वाशनावां जो है प्रगट आउंदियां ने और ए पहनना धर्म दी दुनिया विच जुर्म हो जांदा है। जगत दा तमाम फकीरी समाज साधु समाज संत समाज जिस सादे कपड़िया विच लिपटिया होया है तो इस दे पिछे कोई फोका कर्म कांड नहीं इस दे पिछे एक बहुत गहरी सोचनी है एक लंबी विचारधारा है कि मैं ऐसा पहना कि मैं छुप जावा और मैं ऐसा पहना कि मैं प्रदर्शित ना होवा मैं ऐसा पहना कि दूसरे दियां वाशनावां भी प्रदर्शित ना होवन। अगर किसी दे कपड़िया दे राही किसी दी वाशना प्रगट हो रही है तो उदा पहनना बिल्कुल धर्म दी दुनिया च जुर्म है पाप है भावे कानून दी दुनिया जुर्म ना होवे लेकिन धर्म दी दुनिया विच ए पाप है इते गुनाह है इदा पहनना ही दूजियां दी वाशनावां नू भड़का रहा है ते भड़कियां होईयां वाशनावां किसे वक्त भी किसी दी इज्जत किसी दी असमत लुट सकदियां ने। मौजूदा दौर दा माहौल ऐसा है कि चारों पारे पासे नगनता और अर्ध नगनता दे राही वाशनावां नू प्रदर्शित करन दा एक महान प्रगटावा जो है चल रहा है चारों पासे और इसे नू देख के ही गुरु नानक दी जो है रसना तो निकल गया सी इत कल जुगदा भाव है नारद नाचे कल का भाव
0: जती सती कहे राखे। मन नारद होवे ते चारों पासे नगनता दी प्रदर्शनी होवे तो फिर जती ते सती लई थां बनानी बहुत औखी है। अपने पैर टिकाने बड़े औखे ने। पहनन दे संबंध च धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ए महान उपदेश इस प्रकार है। रत्ता पहनन मन रत्ता सुपे दी सतदान। ए जो मन परमात्मा दे नाम दिच लीन हो गया रत्ता गया है मनो में यही लाल रंग दी पोशाक पहनी है और लाल रंग दे गूढ़े कपड़े पहनन दा हुण चाव नहीं रहा। सुपे दी सतदान और यही मैं सफेद रंग दे कपड़े पा ले ने जो दानी बिरतियां पैदा हो गई ने परोपकार दा मादा पैदा हो गया है। नीली स्याही कदा करनी पैरन पैर ध्यान। जो मन विच अपने विकारां दे प्रति रोस पैदा हो गया है यही मैं काले रंग दे कपड़े पहने ने। सारी दुनिया विच अज भी रोस दा रंग काला मनिया जांदा है और वाकई जद किसे नूं अपने गुनाह अपने विकारां ते रोस पैदा हुंदा है अंदर काले रंग दी धारी जो है बनदी है। महाराज कहिंदे ने मैं यही काले रंग दे कपड़े पहने ने और जद उन्हां विकारां नूं कट्टण दा ख्याल पैदा हो जाए साहिब कहिंदे ने यही मैं नीले रंग दे कपड़े पहने ने। नीली स्याही कदा करनी पैरन पैर ध्यान। पैरां दी सोहणी जुत्ती मैं केड़ी पाई है तिलेदार। जो ध्यान नूं हे प्रभु तेरे मार्ग ते तोरे है सोहणी जुत्ती पाई हुई है पैर भटके हुए ने पैर गलत मार्ग ते चले हुए ने तो कहा जा सकदे ते पैरों नंगा है। जुत्ती उसदे पैर दे च है जिसकी सुरत ध्यान दे मार्ग ते प्रभु दे मार्ग ते है चल रही है। महाराज कहिंदे ने पैरन पैर ध्यान। ओ जो ध्यान तेरे विच जुड़िया होया है ते मैं जो चल रहा यही मैं सोहणे तिलेदार पैरां विच जुत्ती पहनी हुई है। कमर बंद संतोख का धन जो बन तेरा नाम। कमर कस्सा मैं संतोख दा कीता होया है ते हुण सब तो वड्डी प्रदर्शनी दी जिहड़ी वस्तु है ओ है धन ओ है जोबन। महाराज कहिंदे ने मेरे कोल तेरे नाम तो बिना होर कुछ नहीं। तेरा नाम ही मेरा जोबन है और तेरा नाम ही मेरा धन है। वाकई नाम दे मिलदे हां जो एक स्वप्न उजागर हुंदा है और नाम दे मिलदे हां जो अंदरों एक बादशाहत पैदा हुंदी है उसे दिन ही पता चलदा है धन किसनू कहंदे ने जोबन किसनू कहंदे ने। सतगुरु देव जी महाराज कहंदे ने सारा जोगन ते सारी धन संपदा फिक्की पै जांदी है जिस दिन ए असली धन मनुख नूं जो है प्राप्त हुंदा है। धन जोबन तेरा नाम बाबा होर पहनण खुशी खुआर। जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। हे सियाणे मनुख ओ पहनणा जो खुआरियां नूं जन्म देवे मन विच विकारां नूं जन्म देवे ऐसे पहनणे नूं इक पासे कर। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा ए मूल संदेश उपदेश खाण पीण पहनण दे बारे जिस विच बहुत वड्डी सच्चाई है जो इस तल ते संजमी नहीं ओ परमात्मा दे मार्ग दा पांदी भी नहीं।

जात सों परगट करम तेरा मेरी जात बाबा और चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार। एक ऐसा पावन पवित्र गुरु नानक देव जी महाराज का महावाक है जिस विच जीवन नू बुलंदियां ते किवें लै जाइए और जीवन दे विचकार रुकावटां केड़ियां केड़ियां ने इहदी पूर्ण तौर ते सूझ समझ

जितना पसारा वड्डा हो जाता है और इस नाल मानसिक तनाव बढ़ जाता है। इस वास्ते मनुख सिर्फ शरीरक तलते ही रोगी नहीं, मानसिक तलते रोगी है। शरीरक तलते ते शायद कोई कोई रोगी होवे, पर मानसिक तलते ते सतगुरु कहंदे ने जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। तो प्रथम शरीर दे तलते मनुख सावधान होवे। सतगुरु देव जी महाराज खान पीण दा संजम दसते ने और साफ कहंदे ने बाबा और खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ओ खाना जो वक्ती तौर ते खुशी देवे ते बाद दिच विकार पैदा करे, ओ खाना जो वक्ती तौर ते रस देवे पर बाद दिच बेरसी नू पैदा कर देवे और शरीर नू रोगी कर देवे, सतगुरु उस तों जो है वर्जदे ने। एह गल वखरी है कि शरीर अलग अलग ने, कोई वायु प्रधान शरीर है, कोई कफ प्रधान शरीर है और कोई पित्त प्रधान। अपने शरीरक स्वभाव नू वेख के खाणिया प्रति जो सुचेत हो जांदा है उस शरीरक पीड़ा तो बच जांदा है, मानसिक विकार तो बच जांदा है। और जैसे शरीर दे खाण पीण दा मसला हल होवे, एकदम पहनण दी दुनिया आरंभ हो जांदी है, पर पहनना सिर्फ प्रदर्शनी वास्ते होवे, पहनना सिर्फ नुमाइश होवे, पहनना अपनी बिरती नू भी बार मुखी करे ते दूजियां दी बिरती नू भी अपनी तरफ खिंचे, ऐसा पहनना भी मानसिक विकारां नू जन्म देंदा है। तो सतगुरु उस तों भी सानू वरजदे ने, बाबा होर पहनण खुशी खुआर जित पैदे तन पीड़िए मन में चले विकार। अगां चल के मेरे पातशाह मन दी उस अवस्था दा जिक्र करदे ने जद तन तो मनुख निश्चिंत हो जाए ते मन बड़े पुरजोर ढंग नाल मंग करन लग पैंदा है। और यही एक ऐसा शब्द है जिसदे चार रहाव ने, चार ठहराव ने। ए अपनी तरह दा इंज कह लो एक महान शब्द है जिस देच एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार रहाव ने। चार रहावां देच भाव, चार भाव सतगुरां ने साडे सामने रखे ने। प्रथम शरीर, और शरीर दे खाण पीण दा मसला हल होवे तो फिर पहनना, और पहनना भी ऐसा हो जाए कि अपने आप नू नुमाइश करन दा चाव पैदा होवे ते दूजियां दी बिरकती नू भड़कान दा मसला खड़ा होवे, साहिब कहिंदे नहीं, ए भी खुआरियां नू जन्म देंदा। खाण पीण पहनण दे मसले तो जैसे मनुख निश्चिंत हुंदा है तो फिर मन दी दुनिया सामने आउंदी है। कहिंदे ने पशु सुखी ने क्योंकि अक्सर प्रकृति उन्हां दियां शरीरक लोड़ां दी पूर्ति कर देंदी है, पर ए जो मन है मनुख दा ए ऐसा है कि शरीरक लोड़ां दी पूर्ति हो जाए और जितनी ज्यादा हो जाए ए उतना ही भयंकर रूप विच मंग करन लग पैंदा है। इत्थे मनुखी मन ने बड़े भुलेखे खादे ने और मनुख ने बड़े संपन्न तरह दे मनोरंजन दे साधना नू जन्म दिता है। जिहड़े जिहड़े देश जितने अमीर ने, जिहड़े जिहड़े घराने जितने ज्यादा संपन्न ने, देखे उत्थे मानसिक बेचैनी उतनी ज्यादा है। सतगुरु आप भी कहंदे ने कि वडे वडे जो दिसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। महाराज कहंदे ने दुनिया दे तमाम वड्डे मनुखां ते निगाह मारनी, वड्डे मनुख कौन जिन्हां कोल धन संपदा ज्यादा है, को न वडा माया वड्याई। गुरबाणी दी व्याख्या गुरबाणी जो है करदी है, ए मनुख वड्डा नहीं, ए वडपणा धन ते खड़ा है, ए वडपणा संपदा ते खड़ा है, ए वडपणा प्रभुता ते खड़ा है, सता ते खड़ा है। और जितनी ज्यादा धन संपदा है

0: उतनी ज्यादा प्रभुता है, जितनी ज्यादा सता है उतनी ज्यादा प्रभुता है, और जितनी ज्यादा प्रभुता है महाराज कहने ने उतना ही वड्डा है, और जितना ज्यादा वड्डा है उतनी ही ज्यादा चिंता है। बड़े बड़े जोधी से लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। इसनु एक होर ढंग नाल भी धन गुरु नानक देव जी महाराज ने खोले है, जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे भरमंता। जिसको ले धन संपदा ज्यादा है उथे अधिक चिंता है, पर जिथे लोड़ जोगा भी नहीं उथे भटकना है, उथे मन विच भरम ने और उथे बहुत धावना है, उथे बहुत भटकना है। एक थां ते भटकना है और उस भटकन विच भुलना ने, इस वास्ते आम कह दिता है कि गुनाह गरीबी तो जन्म लेंदे ने, गरीबी मुफलसी गुनाहां दी जननी है, गुनाहां दी मां है। मजबूरियां मनुख नूं रसातल दे चले जांदियां, धरातल दे जहे ले जांदियां ने। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने जिथे लोड़ां दी पूर्ति नहीं हो रही उथे ते भटकना है, और जिथे लोड़ां दी पूर्ति तो भी अधिक है उथे चिंता है, बड़ी भयंकर जो है चिंता है। जितने संपन्न देश ने उतने ज्यादा चिंतातुर ने, और जितने संपन्न घराने ने उतने ज्यादा चिंतातुर ने, और जितने ज्यादा चिंतातुर ने उत्थे उतने ज्यादा मनोरंजन दे साधन मुहैया किए जाते ने, उपलब्ध किए जाते ने मनोरंजन। गरीब अजे जिस दियां तन दियां ही लोड़ां दी पूर्ति नहीं हुई, अजे तन दा ही मसला हल नहीं होया, अजे तन ते चीथड़ा नहीं है, अजे पेट दे च रोटी नहीं है, इन मनोरंजन नहीं चाहिए। शरीर सब तो अगे है, अजे शरीर दा मसला हल नहीं होया तो मन पिछे खड़ा है, मन नंबर दो ते खड़ा है। जिस वक्त भारत संपन्न सी और ईरानिया अफगानिया ने तुर्की लोगा ने इन सोने दी चिड़िया आख्या, उस जमाने च इस देश दे घर घर दे संत पैदा हो रहे सन, देवते पैदा हो रहे सन, देवियां पैदा हो रही सन, धन संपदा बहुत सी, शरीर का मसला हल हो गया सी, मन दे मसले नूं परमात्मा दे नाम नाल हल कर रहे सन, प्रभु चिंतन नाल हल कर रहे सन। चाहे थे राजकुमार सिद्धार्थ होवे चाहे महावीर हो, आखिर राजघरानिया दे फरजंद सन, इन्होंने भी अपने मानसिक मसले प्रभु चिंतन नाल हल किए, आत्म अभ्यास नाल जो है हल किए। करीबन करीबन इस देश दे राजघरानिया दे चों धर्म दी सुगंध फैली, धनाढ़ मनुख प्रभु दे मार्ग ते चले, और जद धनाढ़ चल पैन सताधारी चल पैन तो दूसरा वर्ग उन्होंने पिछे चल पैंदा है, स्वाभाविक है। अक्सर छोटा वड्डे दी नकल करता है, निर्धन धनवान दी रीस करता है। तो जो थोड़े जिया भी तलते पछड़े सन, दरम्याने सन, उन्होंने राजघरानिया दे ए जो राजकुमार सन इन्हां दी नकल की थी, राजिया दी नकल की थी, राजे जोगी बन रहे ने, राजकुमार संत बन रहे ने। तो इस देश दे च ऐसी हवा चली, घर घर दे च देवी, घर घर दे च देवता, गली गली दे संत, और अज तक वो पुरानी हवा दे कुछ झोंके मौजूद ने कि सारी दुनिया च अज भी कहिंदे ने हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है, हिंदुस्तान देवी देवतावां दा देश है, हिंदुस्तान गुरु पीर पैगंबरां दा देश है, जोगियां दा देश है, आत्म ज्ञानियां दा देश है। पर ए आत्म ज्ञानियां दा देश सी अज नहीं, ए ऋषि मुनियां दा घराना सी अज नहीं। संपन्न लोगां ने अपना पूरा समा अपनी पूरी शक्ति आत्म अभ्यास दे खर्च की थी, तो सहजे सहजे की होया धन दी फिक्र ना की थी, संपदा दी फिक्र ना की थी। संत पैदा होंदे गए, ऋषि मुनि पैदा होंदे गए, अवतार पीर पैगंबर पैदा होंदे गए, तो धन संपदा दी ते फिकर ना की थी, मुफलसी भी पैदा हुंदी गई और मुफलसी चरम सीमा ते पहुंच गई। और अज असी देखदे आं कि हिंदुस्तान अज उना देशां दी तरफ निगाह करदा है जिथे संपन्नता है, ते जिथे संपन्नता आ गई है वो आत्म अभ्यास लई हिंदुस्तान दे दरवाजे खटखटा रहे ने, वो योगियां दे आश्रम लभ रहे ने, वो आत्म अभ्यास दे केंद्र लभ रहे ने। संपन्न हो गया अमेरिका, योगी शब्द दी उत्थे महिमा वध गई है, योग दी महानता वध गई है, आत्म अभ्यास दी उमंग ते तरंग वध गई है, लेकिन धन संपदा दी तरंग ते उमंग हिंदुस्तान दे च वध गई है। अज धन दी खातर इस देश दे धर्म नू छोड़िया जा सकदा है, पर उस देश दे च ऐसा है कि धर्म दी खातर धन नू छोड़िया जा सकदा है। संपन्न घरानियां दे बच्चे हिप्पी बन गए, छोड़ गए सारे ऐशो आराम नू, हर तरह दे सुख नू, और उन्होंने बुलंद बांग कह दिता आत्मक चैन चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, प्रभु चाहिए, आत्म प्रकाश चाहिए। तो खैर जैसे जैसे शरीर दा मसला हल होवे, मन बड़े भयंकर रूप दे सामने आउंदा है, और शरीर पहले इदा मसला पहले हल करना पैंदा है, और इदा मसला है खाना पीना पहनना। पर इस संजम दे च ना होवे तो खाना पीना भी तन नू रोगी कर देगा, मन नू विकारी कर देगा। ये पहनना अगर संजम दे च ना होवे, मर्यादा दे च ना होवे, तो ए भी तन नू रोगी कर देगा, मन नू विकारी कर देगा। और तन दियां सारियां लोड़ां पूरियां हो जान ते मन जद बड़े भयंकर रूप दे सामने आवे, तो हुण इस मन दी वास्तविक लोड़ की है। करीबन करीबन दुनिया दे अजोके सियाने मनुखा ने ऐसा समझ लिया, मनोरंजन मन दी लोड़ है। नाटक चेटक तरह तरह दे रंग तमाशे रंगीनिया, इस तरह दे मनोरंजन दे साधन संपन्न घरानियां दे च नवे तो नवे पैदा हो रहे ने। लेकिन मन दी एक अपनी एक अवस्था है, जिस चीज नू एक दफा वेख लवे ओनू पुराना कर देंदा है, ते पुराने दी मन परिक्रमा नहीं करदा, मन अगे जांदा है, मन गतिमान है, इदी गति बड़ी तीक्ष्ण है, और ये रुकदा नहीं, ये लंघ जांदा है, और लंघ के हर चीज नू पुराना कर देंदा है, हर वस्तु नू पुराना कर देंदा है। रंग पुराने हो जांदे ने, रूप पुराने हो जांदे ने, महफिलां पुरानियां हो जांदियां ने, तस्वीरां पुरानियां हो जांदियां ने, कहानियां पुरानियां हो जांदियां ने, संगीत दियां धुनां पुरानियां हो जांदियां ने, माहौल पुराना हो जांदा है। अज देखदे आं संपन्न घर जो है देशां विच ते कोई वध तो वध दो साल ही मकान विच रहिंदा है, तीजे साल मकान बदल देंदा है, नौबत इत्थे तक आ गई परिवार बदलने ने, पति बदलना है, पत्नी बदलनी है। पर हुण कौन दसे, ए जो मनोरंजन है ए मन दी मंग नहीं, ए ते इस तरह है जैसे रोंदे हुए बच्चे नू छणकणा दे के वक्ती तौर ते बुलाया जा सकदा है, पर उते दूध लई रो रहा है, उते मां लई रो रहा है। वक्ती तौर ते ए छणकणा दे के बुलाया जा सकदा है, परचाया जा सकदा है, लेकिन फिर भी उसने छणकणा सुट देना है, हथ मां दी तरफ पसारने ने, दुध दी मंग करनी है। हू बहु देखदे पया संपन्न घरानियां दे लोग इना छणकणियां नू सुट रहे ने, और कहने नहीं अस्थाई सुकून चाहिदा है, मसनोई नहीं, दायमी आनंद चाहिदा है, अस्थाई आनंद चाहिदा है, अस्थाई खेड़ा चाहिदा है। तो ओ जड़ा अस्थाई खेड़ा है, ओ ते जो अस्थाई है, जो टिकिया होया है, जो दायमी है, जो हमेशा है, उस तो ही प्राप्त हो सकदा है, और ओ ते केवल परमात्मा है, ओ ते केवल ईश्वर है, उस तो ही लभ सकदा है। तो मनोरंजन दे जेड़े जेड़े साधन उस दौर दे विकसित होए सन, सतगुरदेव जी महाराज उसका जिक्र करदे ने, सुंदर घोड़ा होवे, सोने दी काठी होवे, लगाम भी जर्रीदार होवे, और कृपान तलवार गाथरे वाली पहनी होवे, तीर कोल होवन, पत्था होवे और तरह तरह दिया खुशबुआ होवन और इस सब कुछ ला के घोड़े ते असवार होके निकलना एक मनोरंजन सी, एक मन दी लोड़ सी, नेजेबाजी एक खेडा, इस तरह दे मनोरंजन वक्ती तौर ते मन दा बहलावा सी उस दौर विच विकसित होए सन। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने नहीं, मन दी ए लोड़ नहीं और इस लोड़ नू किवें पूरा करना है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दसदे ने घोड़े पाखर सोयने साखत बूझण तेरी वाट। हे परमात्मा, जो मैं तेरा रस्ता जान लिया है, जो मैं तेरे रस्ते नू समझ लिया है, मानो ए मैनू घोड़े दी प्राप्ति हो गई है और ऐसा घोड़ा जिदे ते जत सद दी काठी पई हुई है, सोने दी काठी पई हुई है। कहिंदे ने ए कोई लाजमी नहीं कि मनुख नू अपने घर दे ही रस्ते दा पता होवे, जो इट्टां ते पत्थरां दा बने होया मकान है और उस दे च आ गया है। अगर एही उसका घर है तो एक दिन इसे ही घर चो चार मनुख चुक के ले जांदे ने और काडो काडो होई सतगुरु दी बाणी कहिंदी कड्डो कड्डो। तो एक गल स्पष्ट हो गई, इत घर घर नहीं सी, सरा सी, इत्थे ते सी प्राउणे सी मेहमान, घर ते कोई होर है। बाबा फरीद उसका जिक्र करदे ने गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सरपर मैथे आवणा मरनो ना डरियाओ, तन दा घर शमशान है, मन दा घर भगवान है, तन दा घर कब्र है, मन दा घर खुदा है। तो बाबा फरीद कहिंदे घर ते आवाजां पिया मारदा है, ऐ तन कब्र आवाजां पिया मारदा है, कब्र तैनू बुला रही है, गौर निमाणी सड करे, गौर कब्र नू कहिंदे ने, गौर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, सर पर मैथे आवणा मरनो ना डरिया, मौत दा भय दूर कर। ऐ तन तेरा घर शमशान ही है, ऐ तन तेरा घर कबरी है, पर मन तेरा घर खुदा है, तेरा घर शमशान नहीं है, तेरा घर भगवान है। अपने घर दी चिंता कर और उस घर दे रस्ते दा नहीं पता। और असी देखदे हां सारी जिंदगी लोग कई दफा धर्म दे मार्ग भी बदलते रहिंदे ने, रस्ते बदलते रहिंदे ने। इस नूं इक उर्दू दा महान शायर ने अपने आलमाना ढंग नाल बयान कीता है। वो कहिंदा है सोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ आहों में कट गई, मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। जिंदगी बड़ी थोड़ी है और रस्ते ही कोई मनुख बदलता रहे तो जिंदगी रस्तियां ची खत्म हो जाती है, मंजिल तक पहुंचना औखा हो जाता है। ये छोटी जी जिंदगी कोई एक रस्ता चुन लेना चाहिए और बड़े प्रमाणिक रस्ते जगत दे च बने। शाहरा साडे देश दे चार वड्डियां शाहराहां बनियां, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन मत, गुरु मत, सिख मत। इस तरह इस देश तो बाहर भी चार वड्डे शाहराह बने, शाही रस्ते, सरकारी रस्ते, बहुत वड्डे महान और खूबसूरत रस्ते, इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी, पारसी। पर कई दफा मनुख की अपनी आदत आंदी है विंगे टेढ़े रस्ते ते चलना, कदी कदी शाहराह ते चलन वाले उकता जांदे ने मंजिल नू दूर समझ के, तो विंगा टेढ़ा चलन लग पैंदे ने और विंगा टेढ़ा चल के भटक जांदे ने और कदमां दे निशान ते बन जांदे ने उनां दे, उनां दे कदमां दे निशानां दे उते दुनिया होर चलन लग पैंदी है और इस तरह विंगे टेढ़े रस्ते बन जांदे ने ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਚ ਹੀ ਭਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਚ ਬਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਚ ਬਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਹਿੰਦੂ ਮਤ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ, ਜੈਨ ਮਤ, ਬੌਧ ਮਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਚ ਬਣੇ। ਨਿਕਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਡੰਗੀ ਚਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਟਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਭਟਕਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੋ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭਟਕ ਗਏ। ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਕੌਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਜਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਇਕ ਔਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਚੜ ਰਹੋ ਕਬੀਰ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਪਏ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਚੱਲ ਪਈ। ਤਾਰਕਿਕ ਬੰਦਾ, ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੈਸੇ ਰਸਤੇ ਚ ਔਘਟ ਘਾਟੀ ਆਈ, ਪਹਾੜ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਾੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਟਕਣ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੋ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਟਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਬਣੇ। ਇਹ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਭਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਆਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੇ ਚੱਲਨੇ ਵਾਲੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੇ ਜਾ ਲਗੇ, ਰਾਹੇ ਬਦਲਨੇ ਵਾਲੋ ਕੀ ਰਾਹੋਂ ਮੇ ਕਟ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਸਤਾ ਕਠਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਉਥੇ ਰਾਸਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮੈਦਾਨੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਔਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਚੜ ਰਹੋ ਕਬੀਰ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਟ ਔ ਘਟ ਡੂੰਗਰ ਘਣਾ ਇਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ, ਰਮਈਏ ਸਿੰਘ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੌੜਾ। ਔਘਟ ਘਾਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤੇ ਚੜਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚੜਾਈਆਂ ਤੇ ਦਮ ਫੁੱਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦਾ ਉਹ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੱਕੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਇਕ ਦੇ ਭਟਕਣ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਟਕਦੀ ਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਘੋੜੇ ਪਾਖਰ ਸੋਏ ਨੇ ਸਾਖਤ, ਬੂਝਣ ਤੇਰੀ ਵਾਟ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇ ਤਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਜੋ ਮਿਰ ਤੱਕ ਮਿਥਿਆ ਸਿੰਗਾਰ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਜਪ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਕ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਕ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੁਝਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਔਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਪਾਖਰ ਸੋਏ ਨੇ ਸਾਖਤ, ਬੂਝਣ ਤੇਰੀ ਵਾਟ, ਤਰਕਸ ਤੀਰ ਕਮਾਣ ਸਾਂਗ ਤੇਗ ਬਨ ਗੁਣ ਧਾਤ। ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੇ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚ ਤੀਰ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਤੇਗ ਬੰਦ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗਾਤਰਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਾਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ? ਜੋ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੀਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਜਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਗਈ ਏ, ਇਹ ਜੋ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨੁਸ਼ਬਾਣ ਸੀ, ਦੁਆਪੁਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਾਰਕਿਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਵੇਖੋ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਣ ਛਾਰੀ, ਇਸ ਆਗੇ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋ ਵਿਕਾਰੀ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਦੀ, ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਦੀ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਦੁਧਾਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣ ਗਏ, ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਬੈਠਣਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖਾਕ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਡ ਹੈ। ਤਰਕਸ ਤੀਰ ਕਮਾਣ ਸਾਂਗ, ਤੇਗ ਬੰਦ ਗੁਣ ਦਾਤ, ਵਾਜਾ ਨੇਜਾ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ, ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ। ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਾਡੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ, ਸਾਡੀ ਪਾਤ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਚੜੀਏ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ, ਹੋਰ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ, ਸਭ ਖੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਮਨੋਰੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ, ਐਸੀਆਂ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਚੜੀਏ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ।
1: ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮ ਕੀ, ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਰ, ਹੁਕਮ ਸੋਈ ਤੁਦ ਭਾਵਸੀ, ਹੋਰ ਆਖਣ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰੇ, ਜਿਤ ਸੁੱਤ

0: मूल विकार पंज ने और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसे दी झोली च पाईया ने पंज बाणिया और पंजवी है आनंद। मंजिल है आनंद, पहुंचना है आनंद तक। आनंद सुख नहीं है, आनंद सुख दुख तो उच्ची अवस्था है। इतनी मैज कर दें, आनंद कोई सुख नहीं। सुख दे चक्कर च ना पैना। हर सुख परिवार तो मिल जाता है, पदार्थां तो मिल जाता है, धन तो मिल जाता है, और हर सुख दे पिछे दुख खड़ा है। आनंद सुख दुख तो उच्ची अवस्था है, जप नाल प्राप्त होती है। तो मैं वेदा जरूर कीता सी कि जप दी विधि ते जप दा ज्ञान जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च है, वो मैं थोड़े सामने जो है रखना है। गुरु नु जो मंजूर सी कल ते छोड़ दें, कल फिर थोड़े सामने इस विचार नु दोहरावांगे। आनंद भया मेरी माँ है, सतगुरु मैं पाया। गुरु मिल गया, आनंद मिल गया, सुख दुख तो उच्ची अवस्था मिलदी के मैं जप नाल। वास्तविक जप की है, किसे एक शब्द नु बार बार रटी जाना, रटी जाना, रटी जाना, ये जप है। विधि ढंग और इसकी अवस्था, इसकी रूपरेखा तुच्छ बुद्धि अनुसार जो कुछ दास ने पढ़े एक पाठी की तरह पढ़ के थानू सुना देंगा। जिन्हों का अनुभव होगा उन्होंने रस आ जाएगा, और जिड़े इस मार्ग के पांधी ने उन्होंने शायद कोई सोच समझ भी जो है मिले। एक पाठी की तरह पातशाह की बाणी दे जो कुछ लिखे है पढ़ के थोड़े सामने जो है रख देंगा। अनुभव गुरु ग्रंथ साहब का, ज्ञान गुरु नानक का, विचार सतगुरु दियां पाठी आप पढ़ के थानू जो है सरवण करा देंगे। सारिया का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बुल चुक दी शमा, वाहेगुरु जी का खालसा,
1: वाहेगुरु जी की फतेह।
2: इको ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूने सैभं गुरु प्रसाद। सन्मान योग गुरु रूप साध संग जीओ, फतेह कबूल करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार एक विचार दास शाम दे समय आप जी दे सामने रख रहे है। परिपूर्ण परमात्मा ने ब्रह्मंड दे जिस दे असी जी रहे हैं पंजां दी गिणती नूं प्रधान रखे है। कायनात सारी पंज तत्तां दी, और वो पंज तत्त गुरबाणी दसती है। अब ते जबाए पृथ्वी आकाशा ऐसी रहत रहो हरि पासा। पंज तत्तां करके सारा संसार बनया। पंच तत् कर तुद सब सृष्ट साजी, कोई छेवां करियो जे किछ कीता होवे। ये शरीर भी पंज तत् दा पुतला, शरीर भी पंज ने, और फिर इसे तरीके नाल इस शरीर नूं प्रभु ने ज्ञान इंद्रे भी पंज दिते ने, कर्म इंद्रे भी पंज दिते ने, रस भी पंज दिते ने, विकार भी पंज ने। इसे ही पंज तत् दे पुतले दी झोली दे च धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पंज शरीरक रहतां झोली दे च पाईयां, जिन्हों पंज ककार कहिंदे ने, ते पंज मानसिक रहता पाईया जिन्हों पंज बाणिया कहिंदे। मन दी रहत पंज बाणिया, तन दी रहत पंज ककार। ओ जिहड़ियां पंज बाणिया ने अध्यात्मक मंडल दियां पंज स्टेजां ने। पहुंचना किथे है? आनंद तक। चाहिदा की है? आनंद। लवज मैं दोहरा दिया, आनंद सुख नहीं है। सुख दुख तो जिहड़ी उच्ची अवस्था है उस नूं आनंद कहिंदे ने। सदीवी सुख इंज कह लो, सदीवी खेड़ा, सदीवी खुशी। और आम ए जगत दी दुख सुख दी अवस्था तो उच्ची अवस्था आनंद।

पौराणिक प्रसंगानु देखिए तो जीवन दादाता, पदार्थां दादाता विष्णु, मौत दे देने वाला शिव जी, ब्रह्मे ने संसार बनाया, उदा कोई मंदिर नहीं, बन गया संसार सो बन गया, जन्म हो गया सो हो गया, हुण ते लालसा जीवन दी ते भय मौत दा, तो सारे देश दे विष्णु दी पूजा, शिव जी दी पूजा हिंदू जगत दे। विष्णु नाल लक्ष्मी है, जीवन ते जीवन दिया सारिया लोड़ां दी पूर्ति, पर शिवजी दे गले विच ते फनियर नाग ने, मुर्दियां दी खोपड़ियां दी माला है, शमशान घाट दा शिवजी दा वसेवा है, मौत दा देवता शमशान नाल संबंधित है, जीवन दा देवता लक्ष्मी नाल पदार्थां नाल संबंधित है, एक प्रतीक है। लालसा परबल जीवन दी है, भय परबल मौत दा है, जीवन दे देवते दी पूजा इस वास्ते जीवन बने आ रहे बने आ रहे बने आ रहे, मौत दे देवते दी पूजा इस वास्ते कि कम से कम मौत साडे घर ना आवे, एक दी पूजा इस वास्ते तू साडे घर आ क्योंकि उस नाल लक्ष्मी है, एक दी पूजा इस वास्ते कम से कम तू साडा घर छोड़ दें क्योंकि तेरे गले विच सप ने, मुर्दियां दी खोपड़ी है और तेरा वसेबा शमशान है। बहुत सुंदर ये प्रतीक चुने है, मनुख दी कमजोरियां नू खूब समझे है ते नापिया गया है। लालसा जीवन दी है और भय केवल मौत दा है, मनुख कितना जीवना चाहता है, कितनी जीवन दी लालसा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा सुंदर चित्रण कीता है, जे जुग चारे आर जा होर दसोनी हो, जे किधरे उम्र चार जुगां दी हो जाए, लखों साल दी हो जाए, ते फिर होर दस गुणा वध हो जाए, होर दसोनी होए, सिर्फ जीवन ही इतना लंबा ना होवे, नवा खंडां विच जाणीए नाल चले सब कोए, नौ खंड पृथ्वी विच पूजा ते प्रतिष्ठा होवे, प्रतिभाशाली होवे, जाणिया जाए समझिया जाए पूजिया जाए, सत्कार लई सारे प्रतिष्ठित लोग नाल चरण ते सन्मान देन। महाराज ने मनुख दी इस मंग नो बड़े सोने ढंग नाल समझे ते बयान कीता है, नवा खंडां विच जाणिए नाल चले सब कोए, चंगा नाव रखाए के जस की रथ जगले, प्राणा दे होर भी प्यास है, सारे मैनू चंगा चंगा करके आखन महान आखन पूजन, पर जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के, जे नौ खंड पृथ्वी दे मनुखां दी निगाह दे थल्ले भी कोई आ जाए, लखां साल दी उसकी आयु हो जाए, जो परमात्मा दी निगाह दे थल्ले नहीं आया तब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दरअसल लंबे जीवन दी लालसा ते भय मौत दा बस इन्हां ही दोहां उलझना विच मनुख दा जीवन बतीत होंदा है, और बार बार बतीत होंदा है, बार बार जमदा है जीवन दी लालसा ते मरण दे भय विच, एक दिन मर जांदा है, खत्म हो जांदा है। आद काल तो मनुख दी तलाश रही है अमृत दी, अमृत मृत्यु तो रहे जिस विच मौत नहीं, कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसा जल, कोई ऐसी जड़ी बूटी, कोई ऐसी सौगात किधरों प्राप्त

ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਮੌਤ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਬਲ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਉਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਭ੍ਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਟ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਪ ਤਪ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁੰਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁੰਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੜਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਨੂੰ, ਜਦ ਗੇੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਪਿਆਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਜਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਅਧਿਆਤਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧੂੜ ਵੀ ਅਕਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਸਮ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ, ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਜਲ, ਕਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਅੱਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਲ ਨੂੰ ਛੋ ਜਾਣ ਤੋ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਲ ਕਿਧਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ, ਜਿਸਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋ ਜਾਣ ਤੋ ਉਹ ਜਲ
चरण अमृत है, चरण अमृत है, चरण अमृत। तो बहुत पुराने समय का चरणामृत दी प्रथा भारत देश प्रचलित से और अजय भी सनातन जगत देश है। गुरु घर देश भी यही प्रथा सी, चरण धोए रह रास कर चरणामृत सिखा पिलाया। भाई साहब भाई गुरुदास जी ऐसा बयान कर रहे हैं, सिखी का दायरा वधन लग गया तो चरणामृत देने वाले कुछ होर प्रतिष्ठित लोग लबड़े सन, तो धर्म गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 मंजिया बख्शिश कीतिया। मंजी नो छोटे तख्त नो परशियन विच मसनद कहिंदे ने, ते मसनद दा ही पंजाबी उच्चारण हो गया मसंद। 22 मसंदा दी प्रथा धन गुरु अमरदास जी महाराज ने चलाई। इन्हां विच 3 बीबियां सन, 19 पुरुष सन। वख वख इलाकियां विच इह सिखी दा प्रचार करके चरणामृत पिला के गुरु घर नाल जोड़ी गए और इस तरह सिखी दा वादा होंदा गया। मनुख दी कमजोरी सहजे सहजे इन्हां मसंदा दा कुछ जप तप घटिया, क्योंकि बाहरों पूजा प्रतिष्ठा वधी, अंदरों जप तप घटता गया। ये कोई विरला ही है कि जितनी पूजा प्रतिष्ठा वधे, धन संपदा वधे, उतना ही उसके हृदय विच धर्म वधे, जप तप वधे, बंदगी वधे, ताकि संतुलन कायम रहे। ऐसा अक्सर घट होता है। जैसे धन वधदा है धर्म घटता है, जैसे बाहर दे सुख वधदे ने अंदरूनी सुखा नाल सहजे सहजे मनुख संबंध तोड़दा है। मसंदा ने भी ऐसा ही किया। धन दे घर विच अंबार लग गए, पूजा प्रतिष्ठा 4 कुंटां च होण लग पई। सहजे सहजे गुरु दे सिख बनाण दी थां ते इन्हां दे अंदर ये लालसा जागी, अपने सिख बनाई है, अपने सिख बनाई है, अपनी सिखी दा वादा करिए। लिहाजा कार भेट जो मिलती सी गुरुद्वारे बनाण लई, सरोवर बनाण लई, धर्मशालावां बनाण लई, लंगर चलाण लई, उस कार भेट नूं भी ये पूरे दा पूरा खुद अपने कोल रखण लग पए, गुरु तक नहीं पहुंचाते सन। इन्हां विच कुछ कने थे गुरु होण दे दावे भी कर दिते, सहजे सहजे भ्रष्ट होंदे गए, लोभ दे मारे हुए वासना विच ग्रसे गए और वासना दे ग्रसे हुए परबल हंकार विच डुबदे गए। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंच गए, ए मसन जुलम ते दुराचार दी इंतहा तक पहुंच गए सन। लिहाजा इस प्रथा नूं धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खत्म कर दिता। आखिया नहीं, कल्ला मनुख चाहे रसक है, अनुभवी है, ज्ञानी है, कई दफा हो सकता उसका हाजमा कमजोर होवे और पूजा प्रतिष्ठा नूं हजम ना कर सके, बाहर दी धन संपदा नूं हजम ना कर सके। असी हुण भी देखते हैं जगत विच कोई मनुख मेहनत करके धन कमा के लेंदा है, लेकिन धन दी सही वरतों, धन दी हिफाजत और धन दा विस्तार, धन दी वरतों किसे किसे नूं जो है आउंदी है। अध्यात्मक आनंद थोड़ा बहुत प्राप्त करके जब ये मसन चोटी दे धनाद हो गए, हंकारी हो गए, दुराचारी हो गए, अत्यंत लोभी हो गए, तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नूं ये प्रथा खत्म करनी पई। चरणामृत दी थां ते खंडे बाटे दा अमृत और बाणी दा अमृत ये प्रचलित आपने कीता और ये अधिकार एक नूं नहीं पंजां नूं दित्ता। पंज आइंदा अमृत छकाया करनगे। केड़े पन जो गुरु नूं प्यारे ने ते जिन्हां दे अंदर गुरु दा प्यार है, रोम रोम विच गुरु दा प्यार है।
ऐसे पन जो गुरु नू प्यारे ने ते गुरु दा प्यार जिन्हां दे अंदर है ओ वारी वारी पंज बाणियां पढ़न। जपजी साहब, जाप साहब, सवैया, चौपाई ते आनंद साहब पंज अपनी दृष्टि नू बाटे वे दे जो पानी है उस दे च रखन ताके हिरदे नू जोड़ के पड़ी होई ये बाणी दृष्टि दे राही उस बाणी दा पानी विच प्रवेश करन ताकि वो पानी पानी ना रहे वो पानी अमृत बन जाए। हकीकत है हिरदे विच लोभ है अखां दे राही प्रगट होंदा है। हिरदे विच वासना है अखां दे राही प्रगट होंदा है। हिरदे विच प्रबल हंकार है अखां राही प्रगट होंदा है। पर हिरदे विच वसी हुई बाणी होवे तो ये बाणी दा अमृत अखां दे राही बाहर प्रगट होंदा है। और उस सख नूं अगर एक टेक पानी विच रखिया जाए तो बाणी दा वो अमृत अखां दे राही पानी विच प्रवेश कर जांदा है। इस तरह पंज प्यारे पंज बाणियां नूं पढ़ के अमृत नूं गुरु विधि अनुसार तैयार करदे ने। ये प्रथा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चलाई। विचे खंडा नाल फेरी जाना, खंडा शक्ति दा प्रतीक है। जिस शक्ति तो ही सारा संसार पैदा होया, खंडा प्रथमे साज के जिन सब संसार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज उत्पत्ति दा खेल दा चाहे बनाया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल, ये सब कुछ पसारा खंडे तो होया, शक्ति तो होया। खंडा शक्ति दा प्रतीक, उसे तो बाणी आई है, उसे तो संसार आया है, उसे तो अमृत आया है। इस तरह बाणी दे राही पानी विच शक्ति दा प्रवेश, परमात्मा दा प्रवेश, उस दे रस दा प्रवेश। पंज प्यारे फिर अगां चल के इस नू छकांदे ने जो अबलाशी ने, जिन्हां दे अंदर अमृत दी तड़प पैदा हुई है। ये इस तरह है जिवें किसी बच्चे ने स्कूल विच दाखला लेना है तो उसनू स्कूल दी यूनिफॉर्म पहननी पैंदी है, दाखला लेना पैंदा है, एडमिशन फीस भी देनी पैंदी है, दाखला फीस भी देना पैंदा है। शुरुआत विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फीस सीस दी मंगी सी, सिर दे। विसाखी वाले दिन खुशकिस्मती सहजे सहजे पंज तैयार हो गए ये फीस देन नूं। ये सीस हे गुरदेव जिस दिन थोड़े चरणा ते रखिया सी असी उस दिन दा ही समझ लिया सी थोड़ा है थोड़ा है थोड़ा है। इस तों बाद जद पंज प्यारियां ने ये प्रथा चलाई धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे हुक्म दे मुताबक तो इत्थे भी भाव ओही रखना है सीस गुरु दा है, तो इत्थे भी भाव ओही रखना है सीस गुरु दा है। इस वास्ते जब सीस गुरु दा है तो सीस गुरु वर्गा होवे, इस दे सोचनी परमात्मा दी, इहदा स्वरूप गुरु वर्गा। इस तरह गुरु घर दे चरणामृत दी थां ते खंडे बाटे दी अमृत दी जो है प्रथा चली और ये धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो है चलाई। लेकिन जदों आपने प्रथा तैयार की थी तो देखना भी चाहिया कि वाकई ये हुण सिंह अगे सिंह सजा सकनगे, अमृत छका सकनगे। तो जैसे एक उस्ताद बच्चियां नूं पढ़ाउण लई खुद पढ़दा है, पहले खुद पहाड़े पढ़दा है, नाल बच्चियां नूं पढ़ाई जांदा है, फिर ऐसा है बच्चियां नूं कहिंदा है हुण तुसीं सुनाओ मैं सुनना है। पहले आप वक्ता हुंदा है, बच्चे श्रोता हुंदे ने, फिर बच्चे वक्ता बनदे ने, उस्ताद श्रोता बनदा है। ये देखण लई कि वाकई बच्चा निपुण हो गया, छकाया पहले अमृतमई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अमृत,
और इस तरह पंच प्यारे तैयार की थे। फिर देखना चाहिए वाकई ये प्यार नाल भर गए ने, ये महान हो गए ने, और जो कार्य मैं चाहना इसनु ये कर सकनगे। तो आखिया हुण मैनू अमृत छकाओ, तुसी मैनू सीस भेट कीता सी, मैं सरबंस भेट करांगा, मैं सब कुछ भेट करांगा। मोह ग्रह में मन ते तन ते धन लो सिर है, सब ही इन ही को मेरे घर देच, मन करके तन करके धन करके जो कुछ भी है सब कुछ थोड़ा, सब कुछ थोड़ा। और जद पंजा ने अमृत छकाया है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दी मंग बड़े सुंदर बोल ने सर्वलोक ग्रंथ देच, सतगुर इना पंजा कोल अमृत दी दात मंगदे ने। पंजा नू साफ कहने ने, सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो भले, सिख पंचों में मेरो वासा, पूर्ण करो धरो जय आसा। इना पंजा विच मेरी झलक है, ये पंजा दा स्वरूप मेरा ही स्वरूप है, इना विच ते मेरे विच कोई भेद नहीं रहा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इना पंजा को अमृत दी दात मंगदे ने। अब अमृत छकाओ जैसे तुम लीने हो, जिस तरह ये अमृत लेने ने गुरु नानक पासों प्राप्त किया से, इस तरह मैं थोड़े कोलों प्राप्त करना है। और वाकई जद पंजा ने छकाया सतगुर प्रसन्न होए, हाँ तुसी संपन्न हो गए, वाकई तैयार हो गए, और तुसी सिखी दा सही प्रचार कर सकोगे। वाकई जो गुरु नू प्यारे ने ते गुरु दा प्यार जिन्हां दे रोम रोम दे चे, ओही अमृत छका सकदे ने, और ओही विधि पूर्वक गुरु नाल जो है जोड़ सकदे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी जिस ते बख्शिश है, प्यार नाल भरिया होया हिरदा है, वो गुरु दा प्यारा है। अमृत छक के उदी दृष्टि अमृतमयी हो जाती है, उसके बोल अमृतमयी हो जाते ने, उसका जीवन अमृतमयी हो जाता है, क्योंकि अमृत छकदे हां उसनों रहत बहत धारण करनी पैंदी है। उस रहत की जो व्याख्या है वो इस प्रकार है, रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब।

다른 걸 원생지 말하이다. 혹은 레헷 베아리 모지코 시크 베아라나 दरअसल सिख का स्वरूप ही ता बनता है जी उस को रहनी हो गए। रहनी दो तरह की, मानसिक ते शरीरक। मानसिक रहनी है बाणी दा पाठ, जपजी साहब, जाप साहब, सवैये चौपाई, आनंद साहब और जितनी बाणी पढ़ सके। मूल मंत्र दा जप एक ओंकार तो लेके गुरुप्रसाद तक वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र दा जप दो वक्त, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या जितना उसको समय। ये मानसिक रहत है। तन दुते पंच ककार ये शरीरक रहत है। मन करके सिख बने, तन करके ये सिख बने तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए। ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक, तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ए सिख मैनू प्यारा ने, क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी। धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख, तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे बिख। रहत नामे इस तरह के बोलने, ज्यो काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो। जिमें कोई खोते नु इशनान करा के उदे गल विच फुलां दी माला पावे और उदे शरीर दिते चंदन इत्यादिक लावे। ज्यो काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो, तैंकी कर ताकी शोभा नाही, हासी होए होत जग माही। अगर इस तरह करके कोई खोते नु बाजार विच ले आवे, लोकी उसनु वड्याण नहीं लगे बल्कि हसन गए उसते, भई लै खोते नु इशनान करा के चंदन ला के गले विच फुलां दी माला पवा के लैके आ गया। तैंकी कर ताकी शोभा नाही, हासी होए होत जग माही। ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है, अगां फरमान कर देने। तिम कुरतियन केस रखाए कहो कैसे ओ शोभा पाए। इसे तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने, मानो खोते नु इशनान कराया गया, फुलां दी माला पवाई गई है, चंदन आदक लाया गया, बस खोते ही रखोता है। सिर्फ सिर्फ केस ने, ना मानसिक रहत ना बाकी शरीरक रहत। भाई साहब भाई नंदलाल दा बड़ा सुंदर प्रमाण, निशाने सिखी ई पंज हरफ का, जिथे हृदय दी बनावट बनेगी बाणी नाल, मूल मंत्र दे जप नाल, गुरमंत्र दे जप नाल, उथे शरीर सिखी दा स्वरूप पेश करेगा। इना पंच ककारा नाल, कक्का के

फिर मेरे मांस दे टुकड़ियां नू जला देना। बचियां रहन जो हड्डियां उन्हां नू पी देना। फिर पवन राणी दे चरणां च बेनती करनी, जोदड़ी करनी मेरी राख नू ते हड्डियां दे जरियां नू उड़ा के लै जाए। आप कहिंदे ने अग्नि जराए ताहे पीसन पिसाए, ले उड़े पवन होए अनेक प्रकार ये। तो पवन उड़ा के ले जाए, आखिर पवन हर वक्त तिस खाक नू और हड्डियां दे चूरे नू अपने कोल रख नहीं सकती, किधरे न किधरे ते सुटेगी। तो भाई जी कहिंदे हां ये सुटे, पर किथे सुटे है? जत कथ सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। जिधर किधर किसे भी शहर देच, किसे भी कस्बे च, किसे भी थां ते सिख अमृत वेले उठ के सत्संग दी तरफ चल पे। पमन राणी नू कहना मेरी मांस दी खाक ते हड्डियां दे चूरे नू उस दे कदमां दे च विछावे, उस दे रस्ते दे च विछावे। जत कत सिख पग धरे गुरु पंथ प्राप्त, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। तहें पद पावकत चरण लिव लागी रहे, दया के दयाल मोहे पतत उधारिए। हे परिपूर्ण परमात्मा, इस तरीके नाल मैं पतत दा भी उधार हो जाएगा। दरअसल अमृत वेले गुरु दी दिशा और जान वाले मनुख दे कदम अत्यंत पावन ने, महान है। चाहो नाल उमंग नाल जो समय सत्संग दी तरफ चल पे है, जुड़ के कीर्तन सुन रहे है या बैठ के वाहिगुरु मंत्र दा जप कर रहे है, देवी देवते उस तों फिदा जांदे ने, कुर्बान जांदे ने, सदके जांदे ने। भाई गुरदास जी ने इस संबंध च जो एक पौड़ी दी रचना कीती है, बेशकीमत है और बेमिसाल है। आप कहिंदे ने चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई। सुरसरी गंगा मिथ ए कह रही है कि गंगा ब्रह्मे दे करमंडल दा जल है, विष्णु दे चरणां दा जल है, शंकर दियां जटावां दा जल है। ऐसा साडे देश दे प्रचलन है इस मिथ दा। करमंडल दा पानी विष्णु दे चरणां ते डोले है ब्रह्मे ने, ए जल आण के गिरे है शंकर दियां जटावां च और उस दे चों ए निकली गंगा दी धार। ठीक जैसे गंगोत्री बहुत उच्ची एक चोटी जद निकल दी है, धारा छोटियां छोटियां जी लग दिया ने, वाकई जैसे शंकर दियां जटावां और उना दे चों टपकदा होया ए बूंद बूंद गंगा दा जल। खैर इस मिथ नू जो रूप देता है भाई साहब भाई गुरदास जी ने, वो काबिले शुनीद है। चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई। 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। इस पृथ्वी देते 12 मास वगण वालियां नदियां भाई गुरदास जी की गिनती दे मुताबिक 999 ने, एक घट हजार जो 12 मास दरिया बगदे ने। भाई जी कहने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है, उस दे जल दी अपनी खूबी है। हर नदी दा जल अलग अलग है, हर थां दी वायु अलग अलग है, हर जगह रेत दे जर्रे अलग तासीर रखदे ने। यही कारण है कि जद कदी किसे दा कोई रोग औषधियां नाल ठीक ना होवे तो पुराने हकीम कह दिता करदे सन, पानी बदल ले, हवा बदल ले, टिकाणा बदल ले। और ऐसा देखण दे चाया वाकई टिकाणे दे